आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 और ठीक 50 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह की 6 बज रहे हैं, कुछ पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: पानी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में

भेज दिया है। दो फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में चौथा वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। मंगलकारी नाम है भगवान शिव का, आइए जयकार करते हुए भगवान का दर्शन करें और पूर्ण कर लें अपनी मनोकामनाएं।

जीवन दो दिन के मेले के समान होता है। आवागमन का यह चक्र किसी के आने की खबर देता है, किसी के जाने की। इस चक्र से मुक्ति का मार्ग है भगवान की भक्ति और परमार्थ।

एक इशारे के इंतजार में जिंदगी ठहर सी गई है। सल्ले अरा का वो इशारा सहारा ज़िस्त है।

मौसमी दत्ता और साथियों की आवाज़ों में ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संगीतमय श्री रामचरितमानस गान।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में

0: अभी आप सुन रहे थे संगीतमय श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है चिंतन।
1: ये विश्व अनंत है, इसका अनंत रूप परमात्मा या ब्रह्म है और दूसरा रूप जीव आत्मा या मनुष्य है। अनंत होने के कारण परमात्मा या ब्रह्म अजर और अमर है। उसका न कोई आदि है न कोई अंत। शास्त्रों में इसे नेति नेति कहा गया है, जो ऐसा भी नहीं पर वैसा भी नहीं। वो गुणातीत सभी में व्याप्त है और मनुष्य सीमाओं में बंधा होने के कारण जीवात्मा यानी जन्म मरण के बंधन में फंसा हुआ है। अतः कहा जा सकता है, संकीर्णता को दूर करने और स्वार्थ को छोड़ने से जीव आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। सब स्वार्थमयी कामनाओं को दूर करने में शिक्षा व ज्ञान की सहायता बहुत जरूरी है, क्योंकि इन कामनाओं की समाप्ति विद्या और ज्ञान के द्वारा ही संभव हो सकती है। जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्ममय हो जाता है, या यूं कहें कि वो ब्रह्म ही हो जाता है। वो यहीं इसी लोक में मुक्ति पा लेता है। अतः यहीं इसी जन्म में सत्य को जानना बहुत जरूरी है, परंतु इसे केवल बौद्धिक दृष्टि से सिद्धांत रूप में जानना काफी नहीं है। तब

0: और सदाचार के द्वारा इसका साक्षात्कार करना आवश्यक है। तप, क्षमा, दान, किसी की हानि न करना, सदा सत्य बोलना जीवन रूपी यज्ञ की दक्षिणा है। जीवन का हम महाव्रत यह है कि मनुष्य उदार विचार रखे, किसी के साथ अशिष्ट व्यवहार न करे, लोक मंगल की भावना की उपेक्षा न करे और किसी का भी अनादर न करे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कर्म। जीवन में कर्म का बड़ा महत्व है। बिना कर्म किए जीवन की गाड़ी चल नहीं सकती है। कर्म करने वाला व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है। कर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि कर्म वो ही श्रेष्ठ है जिसमें ज्ञान और बुद्धि का सन्निवेश हो। इस प्रकार के कर्म से श्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति होती है और यही आत्मा का लक्ष्य है। जगत और जीवन आनंद के समुद्र हैं। आनंद की तरंगों के बिखरे हुए कण प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी का जीवन आनंद, आशा और उत्साह का पुंज है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहने की कामना रखता है। परंतु जो ज्ञानी है वो जानता है कोई वस्तु न तो हमेशा रहती है और न पूर्णतः नष्ट होती है, न किसी का अचानक एकदम से आविर्भाव होता है, अतः मृत्यु भी जीवन का अंत नहीं है, ये एक परिवर्तन मात्र है। इसके बाद जीवन के विभिन्न तत्व नए रूप में प्रकट होते हैं, किंतु इस प्रक्रिया के दो रूप हैं, भौतिक और मानसिक। भौतिक रूप में तो जीवन के तत्वों के संगठन और विघटन की प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है और इसे कभी रोका नहीं जा सकता।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। काव्यधारा के अंतर्गत आइए सुनते हैं श्रीमती मंजू जौहरी से उनका पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।

0: करते हो, खाली सब आंगन घर द्वारे रह जाएंगे और बेटियां ना जन्म लेंगी बिगड़ेगा संतुलन, कि बेटियां ना जन्म लेंगी बिगड़ेगा संतुलन, प्रकृति के फीके ये नजारे रह जाएंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्यधारा के अंतर्गत श्रीमती मंजू जौहरी से उनका पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। अब समाचार होंगे।

0: नरेन्द्रमोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्णजयन्ती समारोहे मुख्य अतिथिरूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारत परं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टि

0: देहच प्रतीकः वर्तते। श्री मोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशे ह्यः मॉरिशस देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मॉरिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मॉरिशस वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षि अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडी नगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षि अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानां आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालना मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकम् आर्थिक सहकार्यञ्च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हामनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हामनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स की सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। स्वास्थ्य चर्चा में आइए सुनते हैं गर्मियों में गुणकारी सत्तू विषय पर जानकारी।
4: भोजन में सत्तू का एक उल्लेखनीय स्थान रहा है। अनेक काव्य ग्रंथों से भी पता चलता है कि प्राचीन काल में युद्ध एवं यात्रा के दौरान राजा और सेनापति सहित उनकी सेनाएं सत्तू खाकर रहती थी। आप अपनी पसंद के अनुसार नमकीन या मीठा दोनों तरह से सत्तू का सेवन कर सकते हैं। फिर आजकल तो जिंदगी बहुत तेज हो गई है, लोगों के पास समय की भारी कमी है। इस दृष्टि से सत्तू बहुत ही उपयुक्त देसी फास्ट फूड है। इसका सेवन नाश्ता भोजन और ठंडा पेय तीनों ही रूपों में तुरंत किया जा सकता है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे सत्तू की। चना मकई या जौ वगैरह को बालू में भूनने के बाद उसको आटा चक्की में पीसकर बनाए गए चून को सत्तू कहा जाता है। चने वाले सत्तू में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और मकई वाले सत्तू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। इन दोनों प्रकार के सत्तू को अकेले अकेले या दोनों को किसी भी अनुपात में मिलाकर सेवन आप कर सकते हैं। हमारे देश में अधिकतर लोग चने के सत्तू का सेवन करते हैं। आज तो विश्व के प्रमुख नगरों में जैसे लंदन न्यूयॉर्क मॉस्को पेरिस टोक्यो तेहरान आदि के बाजारों में चने का सत्तू बिकता नजर आने लगा है, जो सिर्फ भारत में निर्मित और पैक होता है। इतना तो आप जानते ही होंगे कि चने से शरीर को बहुत अधिक एनर्जी मिलती है। प्रति 100 ग्राम चने के सत्तू से 372 कैलोरी मिलती है। चने के सत्तू में विटामिन ए की प्रचुरता प्रति 100 ग्राम में 0.14 मिलीग्राम रहती है। इसलिए इसके सेवन से आंखों की ज्योति भी अधिक बढ़ती है। चने में फास्फोरस की मात्रा भी अधिक रहती है, इसलिए दिमागी कार्य करने वालों के लिए भी सत्तू का सेवन लाभकारी है। चना एक उत्तम बल प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है। एक उत्तम शीतल पेय होने के चलते गर्मी के मौसम में इसकी मांग काफी बढ़ जाती है। चने का सत्तू भरी खस्ता कचौरी भी लोग बड़े शौक से खाते हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। चने के सत्तू को गुणकारी और पौष्टिक माना जाता है। यदि चने के सत्तू में काला नमक, जीरा, सौंठ, धनिया इत्यादि मिला दिया जाए तो वो एसिडिटी, गैस्ट्रिक और कफ की शिकायत में लाभदायक तथा याददाश्त और आंखों की ज्योति बढ़ाने वाली एक उत्तम औषधि बन जाता है। हृदय रोगियों के लिए चने के सत्तू का सेवन लाभकारी माना गया है। चने के सत्तू में चौथाई भाग जौ का सत्तू मिलाकर समुचित मात्रा में शक्कर मिलाकर खाएं, गर्मी के मौसम में बेहद फायदेमंद है। जौ का सत्तू तासीर में ठंडा, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, कफ तथा पित्त नाशक तथा मोटे व्यक्तियों को पतला करने वाला है। ये पानी में घोलकर पीने पर ताकतवर, शरीर को सुडौलता देने वाला, मल को निकालने में सहायक तथा बल और संतुष्टि देने वाला होता है। ये कफ, पित्त, भूख, प्यास और नेत्र रोग नाशक है। चावल का सत्तू भूख को बढ़ाने वाला, पाचन में हल्का, ठंडा, मधुर, रुचिकारक तथा बल बढ़ाने वाला होता है। गर्मी के मौसम में पानी में चने का सत्तू मिलाकर पीने से शरीर को ठंडक प्राप्त होती है, इसलिए लू लगने का डर नहीं रहता है। चना कफ नाशक है। यही कारण है कि रात को सोते समय एक पाव दूध में दो बड़ा चम्मच चने का सत्तू मिलाकर पीने से श्वास नली में जमा कफ सुबह निकल जाता है और खांसी मिटती है। गुड़ मिलाकर चने के सत्तू का रोज सेवन करने से कुछ ही दिनों में बहुमूत्रता या बार बार पेशाब आने की समस्या दूर हो जाती है। चने के सत्तू का सेवन सभी प्रकार के पाचन संबंधी रोगों में गुणकारी पाया गया है। इतने सारे अद्वितीय गुणों से भरपूर सत्तू का सेवन कीजिए और स्वस्थ रहिए।
5: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे गर्मियों में गुणकारी सत्तू विषय पर जानकारी। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं खेती की बातें।
6: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं खेती में मेड़बंदी का महत्व। किसान भाइयों हम सभी खेती किसानी करते हैं और भैया हमारा जो देश है भारतवर्ष वो एक कृषि प्रधान देश है। किसान भाइयों मेड़बंदी खेती की भूमि के चारों ओर खेत के अंदर मिट्टी की मेड़ बनाकर की जाने वाली एक महत्वपूर्ण भूमि संरक्षण तकनीक है। किसान भाइयों इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा के पानी को रोकना, मिट्टी के कटाव को कम करना तथा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना है। किसान भाइयों जहां अधिकांश खेती आज भी भैया वर्षा पर आधारित है तो किसान भाइयों वर्षा होना बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही साथ हमें खेतों की मेड़बंदी करना भी उतना ही आवश्यक होता है। भाई मेड़बंदी अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो वह मेड़बंदी वर्षा जल के संरक्षण में सहायता करती है। जब बारिश होती है तो भैया पानी तेजी से बहकर खेत से बाहर निकल जाता है। यदि हम अपने खेत की मेड़बंदी कर लें चारों ओर से तो भैया जो वर्षा होती है उसका पानी हमारे खेत में ही समा जाता है। इससे भैया भूजल स्तर भी बढ़ता है और फसलों को लंबे समय तक नमी मिलती रहती है। किसान भाइयों दूसरे यदि हम बात करें मेड़बंदी से मिट्टी के कटाव में भी हमारे किसान भाइयों को लाभ मिलता है। यानी कि मेड़बंदी यदि हमारे खेत की है तो हमारे खेत की मिट्टी का कटाव नहीं होता है। तेज वर्षा या बहते पानी के कारण उपजाऊ मिट्टी बह जाती थी जिससे खेत की उत्पादकता कम हो जाती है। तो भाइयों यदि हमारे खेत की मेड़बंदी होगी तो भाई हमारा जो तेज पानी आएगा तो भैया मेड़ पर रुक जाएगा जिससे मिट्टी हमारी नहीं कटेगी और बहने से भी हमारे खेत की मिट्टी बच जाएगी, खेत की उर्वरता बनी रहती है और फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान भाइयों मेड़बंदी, जल भराव और बाढ़ जैसी समस्याओं को भी नियंत्रित

0: करती है, क्योंकि भैया खेत में पानी का संतुलित वितरण होने से फसलें स्वस्थ बनी रहती हैं और उनकी वृद्धि बेहतर होती रहती है। किसान भाइयों, विशेष रूप से ढाल वाली भूमियों में मेड़बंदी अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होती है। किसान भाइयों, मेड़बंदी यदि हम किसी खेत की करते हैं तो भाई उसमें जो है सिंचाई दक्षता भी बढ़ती है, खेत में उपलब्ध पानी अधिक समय तक ठहरने के कारण भैया हमें सिंचाइयों की आवश्यकता कम होती है। इससे भैया हमारे पानी की, श्रम की और भैया लागत की बचत होती है। किसान भाइयों, जल संकट वाले क्षेत्रों में ये तकनीक किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी है। भाइयों, जब हम मेड़बंदी अपने खेती कर देते हैं तो मेड़ों पर हमारे किसान भाई भैया फल फूल या पौधे या वृक्ष लगा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम वृक्ष लगाते हैं, चाहे फलदार लगाएं चाहे अन्य फूलदार लगाएं, तो भाई इससे जो है हमारे पर्यावरण संरक्षण में कहीं ना कहीं पर्यावरण है उसको सहायता मिलती है, क्योंकि भाई जो पौधे होते हैं हरे भरे वो भैया कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण से लेते हैं और भैया ऑक्सीजन गैस जो कि हमारे जीवनदायिनी गैस है वो छोड़ते हैं। किसान भाइयों, से जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। किसान भाइयों, मेड़बंदी का सामाजिक और आर्थिक महत्व भी है, क्योंकि भैया भूमि की उत्पादकता बढ़ती है, फसलों की पैदावार में सुधार होता है और किसानों की आय में वृद्धि होती है। कम लागत में अधिक लाभ मिलने के कारण ये तकनीक ग्रामीण क्षेत्रों में सतत कृषि विकास का प्रभावी साधन मानी जाती है। किसान भाइयों, मेड़बंदी एक सरल, सस्ती और प्रभावी कृषि तकनीक है, जो कि भैया जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, फसल उत्पादन वृद्धि तथा पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए भाइयों, हमें सभी को मेड़बंदी अपने खेतों की आवश्यक रूप से करनी चाहिए, करानी चाहिए और अपने कृषि से अधिक उत्पादन और कृषि को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए भैया ये बहुत ही जरूरी है। तो किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर अन्य विषयों के साथ अवश्य उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आज रात 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कार्यक्रम जिले की हलचल प्रातः 9:15 पर हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:31 पर सुनिएगा मनोरंजन और सूचना पर आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। प्रातः 9:25 पर धरती गाती है कार्यक्रम में सुनिएगा विनय कुमार निगम के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत। दोपहर 11:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1316वां भाग। दिन में 12:05 पर शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवाएंगे विजया गोडबोले का गाया राग शुद्ध सारंग। परिवार जगत के अंतर्गत दोपहर 1:15 पर कुछ माटी की कुछ कुम्हार की क्रम में प्रतिभागी होंगे सुश्री कृतिका कुंडलिया और श्री वंशीधर कुंडलिया। दिन में 1:45 पर लोकधारा में हम आपको सुनवाएंगे भगवती देवी पोखरियाल के गाए गढ़वाली लोकगीत। संध्या 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जाए

0: श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित क्रम होगा गपशप अड्डा। ये कार्यक्रम शाम 5:15 पर प्रसारित किया जाएगा। संध्या 6:05 पर कृषि जगत के अंतर्गत श्री पवन वीर सिंह से नरेश पाल सिंह की बातचीत का विषय रहेगा परंपरागत और आधुनिक कृषि का समावेश। विविधा में शाम 6:45 पर सुश्री रश्मि कुमारी की वार्ता का विषय वार्ता सुनवाई जाएगी जिसका विषय होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय महिलाओं का योगदान। संध्या 7:32 पर सुगम संगीत में सुनिएगा आदित्य कुमार शर्मा के गाए भजन। सवेरे 8:45 पर गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। इसके अलावा सुबह 10 बजे गीत तुम्हारे कार्यक्रम में, सवेरे 11 बजे चित्रपट संगीत के अंतर्गत, दोपहर 12:30 पर मिड डे मेलोडी में, दिन में 2:30 पर नई फिल्मों से कार्यक्रम में, शाम 6:55 पर छाया गीत के अंतर्गत, रात 8 बजे गीत संध्या कार्यक्रम में, रात 8:30 पर एक ही फिल्म से क्रम के तहत, रात 10 बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में और रात 10:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम में फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। ये थी कार्यक्रमों की जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
2: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
2: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
2: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक अवसंरचना सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा, निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए प्रत्येक परियोजना। और प्रदेश भर में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान, आज से घर घर जाकर दवा पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी ने कल प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है कि जब

0: किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की, जिसे 21 जून को दुनिया भर में मनाया गया।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की बनी मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। प्रदेश भर में कल प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं के साथ ही आम जनता ने सुना और सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर देश की मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अपनाने तथा स्थानीय कुम्हारों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने की अपील करके आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कल सिद्धार्थनगर में स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देशवासियों को राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा और ईवी चार्जिंग सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला स्तरीय महिला और पुरुष चिकित्सालयों तथा होटलों में फायर NOC की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस वे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस जिले में 548 करोड़ रुपए की लागत वाली 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्मार्टफोन और चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथरस में जल्दी ही प्रोसेसिंग सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ वहां के आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा।
2: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा, कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा में जन प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति तथा कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या दौरे के दूसरे दिन कल डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव अयोध्या 2026 में शामिल हुईं। कार्यक्रम में माँ बेटी संवाद के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास जैसे विषयों पर चर्चा की गई। अयोध्या के श्री राम मंदिर दान के मामले में कल पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों के घरों पर छापेमारी करके तलाशी ली। इस दौरान आरोपियों के परिजनों से पूछताछ भी की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। आज पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। कल से प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई। कल पहले दिन बूथ दिवस पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाई गई। वहीं आज से 3 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर ये दवा पिलाएंगी। अभियान के पहले दिन कल विभिन्न जिलों में जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बच्चों को दवा पिलाकर पोलियो से बचाव का संदेश दिया। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने जिला महिला अस्पताल से बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में वर्षों पहले पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके वायरस अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में सभी अभिभावक अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा अवश्य पिलाएं। इस मौके पर सदर सांसद श्री शुक्ल ने गोरखपुर के नवाचार मैटरनल इमरजेंसी असिस्टेंस फॉर टाइमली रेफरल एंड इंटेंसिव सर्विसेज मातृ सेवा का भी शुभारंभ किया। इस नवाचार के जरिए मातृ मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य है। बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण उमस भरी गर्मी के बीच आज सुबह प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह सुबह हल्की हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक अवसंरचना सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा, निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए प्रत्येक परियोजना। और प्रदेश भर में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान, आज से घर घर जाकर दवा पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस पर जानकारी दी जाएगी। जानकारी होगी तिथि विशेष पर, समाचार पत्रों की सुर्खियां कार्यक्रम में शामिल रहेंगी और फिल्मी गीतों का आनंद भी आप ले सकेंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे स्टेटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के बारे में। दरअसल सांख्यिकी गणित और व्यवहारिक विज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध मात्रात्मक आंकड़ों अर्थात डेटा के संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या से है। इसका मुख्य उद्देश्य बिखरी हुई जानकारियों से सार्थक निष्कर्ष निकालना और सटीक निर्णय लेने में सहायता करना होता है। इसमें सबसे पहले सर्वेक्षण, प्रयोग या साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी जुटाकर आंकड़ों का संग्रह किया जाता है। फिर प्राप्त किए गए आंकड़ों का सारणी या चार्ट में व्यवस्थीकरण किया जाता है। उसके बाद आंकड़ों को समझने योग्य बनाने के लिए ग्राफ या आरेखों द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है और उसके बाद माध्य, माध्यिका और बहुलक जैसी विभिन्न गणितीय विधियों द्वारा विश्लेषण होता है। इस विश्लेषण के आधार पर ही अंतिम परिणाम या भविष्यवाणी करना संभव हो पाता है। सांख्यिकी का उपयोग आज चिकित्सा जैसे दवाओं के प्रभाव का अध्ययन, व्यापार, अर्थशास्त्र और मौसम विज्ञान जैसे लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। ये जटिल जानकारियों को सरल बनाकर स्पष्ट तस्वीर पेश करता है जिससे आगे की योजनाएं बनाना आसान हो जाता है। आज भारत का 20वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। 2007 से हर साल 29 जून को मनाया जाने वाला ये दिन भारतीय सांख्यिकी के जनक माने जाने वाले प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित करने हेतु मनाया जाता है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म 29 जून सन 1893 को कलकत्ता में हुआ था। वे एक वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और सांख्यिकीविद थे। उन्होंने भारत में डेटा संग्रह और विश्लेषण में अग्रणी योगदान दिया। उन्होंने 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की और सांख्यिकी अनुसंधान और राष्ट्रीय योजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ISI को 1959 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी। इसे सांख्यिकी में डिग्री प्रदान करने का अधिकार भी दिया गया था जिसमें BStat, MStat और PhD शामिल हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के लिए इस वर्ष का विषय रखा गया है प्रशासनिक डेटा की क्षमता का अनलॉक करना। ये विषय सरकारी विभागों द्वारा संकलित आंकड़ों की गुणवत्ता और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने पर केंद्रित है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2026 का ये आधिकारिक मुख्य समारोह डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सामाजिक आर्थिक योजनाओं, नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास में आंकड़ों की भूमिका के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए इस समारोह का आयोजन किया जाता है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: इस संदेश के बाद पुनः स्वागत है दोस्तों आपका कार्यक्रम में। श्रोताओं, विभिन्न क्षेत्रों में पृथ्वी का तापमान और जलवायु अलग अलग प्रकार का होता है। तापमान और जलवायु के आधार पर पृथ्वी को मुख्य रूप से 5 ताप कटिबंधों यानी हीट जोन्स में बांटा गया है। सूर्य की किरणों के आधार पर इन क्षेत्रों को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। ये हैं उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। इन सभी कटिबंधों के मौसम, तापमान और जलवायु, साथ ही उनके प्रभाव भी अलग अलग तरह के होते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ उष्ण कटिबंध के बारे में। ये इसलिए क्योंकि प्रत्येक वर्ष 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी चुनौतियों, उनकी असाधारण जैव विविधता और सतत विकास में इन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा सन 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके की गई थी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा के आसपास का वो भाग है जो उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इस तरह भारत का दक्षिणी भाग भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण ये पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सर्दियों के बजाय मुख्य रूप से दो ऋतुएं होती हैं, शुष्क ऋतु और वर्षा ऋतु। यहाँ के ऊंचे तापमान और नमी के कारण दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन जैसे अमेजन वर्षावन और प्रचुर मात्रा में वन्य जीव पाए जाते हैं। दरअसल ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही आता है और यहाँ दुनिया की लगभग 80% जैव विविधता पाई जाती है। इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ की समस्याएं और चुनौतियाँ भी कम विकराल नहीं हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और अत्यधिक गरीबी जैसी बेहद गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गरीबी के उच्च स्तर के अनुरूप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में ज़्यादा लोग कुपोषण का शिकार होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में झुग्गी झोंपड़ी जैसी परिस्थितियों में रहने वाली शहरी आबादी का अनुपात विश्व के बाकी हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक है। तो श्रोताओं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और उनके अनूठी जैव विविधता के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करें। नैतिक रूप से प्राप्त उत्पादों का चयन करने से लेकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने तक अपने दैनिक जीवन में इन टिकाऊ प्रथाओं को स्थान भी दें।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी।

0: नजीब आबाद के संग।
1: दोस्तों अब समय हो चला है आज के दिन हो चुकी प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी का। आज सोमवार 29 जून है मौजूदा साल 2026 का 180वां दिन। श्रोता 29 जून 1704 ईस्वी को हरदोई जिले के बिलग्राम में जन्मे गुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी मुगलकालीन भारत के एक प्रमुख विद्वान इतिहासकार और अरबी फारसी तथा उर्दू भाषा के कवि थे। यमन के राजा हुसैन द्वितीय ने बिलग्रामी की काव्य प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें हस्सानुल हिंद यानी भारत का हस्सान की उपाधि प्रदान की थी। सांसारिक सुविधाओं से परहेज कर फकीरी जीवन जीने वाले बिलग्रामी की कृतियों में माहसिरुल किराम प्रमुख है। दोस्तों ख्याति प्राप्त बैरिस्टर और शिक्षाविद सर आशुतोष मुखर्जी कोलकाता यूनिवर्सिटी के उप कुलपति रहे। उन्होंने 1908 में कलकत्ता गणितीय सोसाइटी की स्थापना की और 1914 में वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के प्रथम अध्यक्ष भी रहे। आधुनिक बंगाल के निर्माता की पहचान रखने वाले आशुतोष मुखर्जी की चार संतानों में से एक थे भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी का जन्म आज ही के दिन सन 1864 को कलकत्ता में हुआ था। दोस्तों बंगला साहित्य के पुनर्जागरण के कवि और नाटककार माइकल मधुसूदन दत्त ने अपने स्कूल के दिनों में ही अंग्रेजी में महिलाओं की शिक्षा पर निबंध लिखकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। मधुसूदन प्राचीन भारतीय संस्कृति के बड़े प्रशंसक तथा रूढ़िवादी सोच के विरोधी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्राचीन प्रसंगों को नए रूप में व्याख्यायित किया। उनकी काव्यकृतियों में तिलोत्तमा मेघनाद वध वज्रांगना और वीरांगना प्रमुख है। 29 जून 1873 को माइकल मधुसूदन दत्त का हुगली में देहांत हो गया था। ब्रिटेन में प्रत्येक 3 साल के अंतराल पर आयोजित होने वाले हैंडल महोत्सव में 29 जून 1888 को लंदन के क्रिस्टल पैलेस में शास्त्रीय संगीत की पहली रिकॉर्डिंग की गई थी। ये विशाल प्रस्तुति लगभग 500 संगीतकारों के एक ऑर्केस्ट्रा 4000 से अधिक आवाजों के साथ सर ऑगस्ट मेंस के संचालन में 23,722 दर्शकों के समक्ष प्रदर्शित की गई थी। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चैन खींच कर रोका और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाकुल्ला खां चंद्रशेखर आज़ाद तथा 6 अन्य सहयोगियों की मदद से पूरी ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया था। 29 जून सन 1901 को बंगाल के भड़गा गांव में जन्मे शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को देश आज भी याद करता है। गुजराती भाषी होने पर भी जीवन भर हिंदी की सेवा में समर्पित रहे मेहता लज्जाराम शर्मा। हिंदी और गुजराती के अलावा संस्कृत मराठी और अंग्रेजी पर भी भरपूर पकड़ रखते थे। मेहता लज्जाराम पहले अध्यापक रहे, बाद में सर्वहित नामक पत्र के प्रकाशन के साथ हिंदी पत्रकारिता में प्रविष्ट हुए। एक प्रखर पत्रकार और साहित्यकार रहे मेहता लज्जाराम ने कुल 23 ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा करते हुए 29 जून 1931 को उनका देहांत हो गया। प्रसिद्ध विद्वान और सूफी अध्ययन के विशेषज्ञ निसार अहमद फारूकी का जन्म 29 जून 1934 को अमरोहा में हुआ था। अरबी फारसी उर्दू हिंदी अंग्रेजी और पंजाबी पर अच्छी पकड़ रखने वाले फारूकी की प्रमुख कृतियों में तलाश मीर और तलाश गालिब शामिल हैं। उन्होंने गालिब के पत्रों के आधार पर गालिब की आत्मकथा का संकलन किया तथा जिक्र मीर का उर्दू अनुवाद भी किया। निसार अहमद फारूकी ने अनेक साहित्यिक ग्रंथों का संपादन टीकांकन और अनुवाद भी किया था। दोस्तों कॉमिक भूमिकाओं में महारत रखने वाली अभिनेत्री के तौर पर मशहूर उपासना सिंह ने अभिनय की शुरुआत 7 साल की उम्र में जालंधर दूरदर्शन में बाल कलाकार के रूप में की थी। सन 1997 में प्रदर्शित जुदाई उनकी पहली फिल्म थी। हिंदी पंजाबी राजस्थानी और भोजपुरी सिनेमा में अपने अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाली उपासना को कॉमेडी नाइट विद कपिल में बुआ के किरदार से भी खूब शोहरत मिली। 1975 को पंजाब के छब्बेवाल में जन्मी उपासना का आज जन्मदिन है। दुनिया का पहला आईफोन जिसे आमतौर पर आईफोन 1 या आईफोन 2G नामों से जाना जाता है 29 जून 2007 को अमेरिका में लॉन्च किया गया था। हालांकि इस फोन के लॉन्च की घोषणा उस समय के एप्पल के CEO स्टीव जॉब्स द्वारा 9 जनवरी 2007 को ही कर दी गई थी। इसमें 3.5 इंच का डिस्प्ले, 2 मेगापिक्सल कैमरा और मल्टी टच इंटरफेस दिया गया था। इसने एक क्रांतिकारी डिवाइस के रूप में म्यूजिक प्लेयर, फोन और इंटरनेट को एक साथ मिला दिया था। श्रोताओं, मूर्तिकार और भित्तिचित्र कार के जी सुब्रमण्यम भारतीय आधुनिक कला के प्रणेताओं में से एक थे। के जी सुब्रमण्यम ने भित्तिचित्र, टेराकोटा और कई अन्य तरह के खिलौने बनाए। 70 के दशक में उन्होंने अनेक प्रकार के नए प्रयोग किए जिसमें कांच के पत्रक पर रिवर्स चित्रकला प्रमुख थी। उन्होंने बच्चों के लिए भी कई पुस्तकें लिखीं। पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किए जा चुके के जी सुब्रमण्यम का निधन 29 जून 2016 को हुआ था। दोस्तों, ये थी इतिहास के पन्नों में दर्ज आज की तारीख की प्रमुख घटनाएं और अब एक दृष्टि आज की सुर्खियों पर डाल लेते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी के नाम एक और कीर्तिमान दर्ज हो गया है। मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जॉर्डन के खिलाफ अंतिम पूल मैच में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। इस समाचार को विस्तार देते हुए दैनिक हिंदुस्तान ने सुर्खी लगाई है, मेसी ने विश्व कप मैच में रचा इतिहास। भगवान शिव के पवित्र धाम अमरनाथ गुफा की यात्रा का इंतजार श्रद्धालुओं के लिए अब खत्म होने वाला है। समुद्र तल से तकरीबन 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा में आज सोमवार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर साधु संतों के अलावा बाबा अमरनाथ और बाबा बुढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास के सदस्य पवित्र हिमलिंग की पूजा अर्चना करेंगे। आधिकारिक रूप से ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। इस आशय का समाचार दैनिक जागरण में मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, पश्चिम एशिया में एक दूसरे पर युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर भीषण हमले किए हैं। इस कार्रवाई से पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इस विस्फोटक स्थिति की खबर दैनिक अमर उजाला ने विस्तार से प्रकाशित की है। और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है अपने पत्रों के माध्यम से आप हमें अवगत करा सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 2467763। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

0: साथ साथ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 8 बज रहे हैं, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
2: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
3: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
4: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज़ जलडमरूमध से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
5: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
6: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
7: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
8: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच पहाड़ी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371717 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
9: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो। माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड्स सेशल्स नेशनल डे सेलिब्रेशंस एज गेस्ट ऑफ ऑनर, ऑल्सो होल्ड्स टॉक्स विद हिज मॉरिशियस काउंटरपार्ट नवीन चंद्र रामगुलाम। United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of the independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
11: An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से भी बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें ये एजाज दिया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक दस्ते ने शिरकत की। भारत के एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की है, जिससे भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। एक खसूसी इशारे के तौर पर INS तरकश और INS अक्षक को पोर्ट विक्टोरिया पर लंगरअंदाज किया गया है, जिससे सेशल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। वज़ीर आज़म मोदी ने इस तारीखी मौके पर सेशल्स के आवाम को भारत की नेक ख्वाहिशात पेश की। जनाब मोदी सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मनी की दावत पर हफ्ते के रोज सेशल्स पहुंचे थे। वजीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और मॉरिशस के वजीर आज़म नवीन चंद्र राम गुलाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और सेशल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है, जिसकी जड़ें मुश्तरक तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। भारतीय बहर हिंद खित्ते में एक अहम समंदरी पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का मकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जुनूब के तई भारत के अहद में खसूस

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। सवेरे के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे अपनापन फिल्म का गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जो दिल पे गुजरती है वो समझा नहीं सकते। हाय।

जितने दूर उतने पास। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। बोल थे शकील बनायूनी के और धुन सी रामचंद्र की थी।

0: चंदन का एहसास।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। ओ, जैसे UPI से।
2: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
5: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
6: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
5: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।

किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे अवतार फिल्म का गीत, बोल थे आनंद बख्शी के और धुन थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में आप सुन रहे थे राजकुमार फिल्म का गीत, बोल थे हसरत जयपुरी के और संगीत था शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं बैराग फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की है।

ओए सुनो रे सुनो एक बात सुनाओ, झूठ है या सच है ये तुम जानो, अरे झूठ है या

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 9:15 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में कार्यक्रम जिले की हलचल हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए हमीरपुर और इटावा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार का।
2: जनपद हमीरपुर की राड विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 21 जून के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के तहत आए और उन्होंने जनपद हमीरपुर की दोनों विधानसभाओं को 636.82 करोड़ की लागत की 75 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। साथ ही जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, मुख्यमंत्री मुद्रा उद्यमी विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, परिवार नियोजन, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के कुल 12 लाभार्थियों को मंच से डेमो चेक देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री से सम्मान और प्रमाण पत्र पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल गए। आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले बुंदेलखंड के लोग पानी और रोजगार की समस्या को लेकर पलायन करने को मजबूर थे, लेकिन अब नमामि गंगे मिशन जल शक्ति के चलते हर घर नल जल से जल मिल रहा है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक माह में कम से कम 4 बार रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नामी गिरामी कंपनियां प्रतिभाग कर बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रही हैं। बिना किसी जात मजहब को दरकिनार कर सभी को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर कार्य किया जा रहा है। जनपद हमीरपुर को मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई सौगात के तहत बेतवा नदी में 650 मीटर लंबा पीपा पुल बनाने का कार्य किया जाएगा। ग्रामीणों को जाम की झाम से निजात के साथ 30 किलोमीटर का अतिरिक्त

0: लोगों ने योग अभ्यास किया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक ने कहा कि योग भारत की प्राचीन एवं अमूल सांस्कृतिक धरोहर है। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने में प्रभावी माध्यम है। बुंदेलखंड के विकास और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों को सुविधापूर्ण माहौल उपलब्ध कराने के लिए 31 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से 2 भव्य व अत्याधुनिक छात्रावासों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। सुविधाओं से सुसज्जित छात्रावासों में रहने से बुंदेलखंड सहित अन्य जिलों के अध्ययनरत छात्रों को उच्च शिक्षा की राह सुगम और आसान होगी। जनपद हमीरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। वर्ष 2021 की अपेक्षा 2026 में लगभग 5% मतदाताओं की वृद्धि विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद हुई है। 2026 की मतदाता सूची में 34,495 नए मतदाता शामिल हुए हैं। वहीं 4,556 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम डिलीट भी किए गए हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसके शुक्ला ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष पुनरीक्षण डुप्लीकेट मतदाता सत्यापन के बाद अब जनपद हमीरपुर की नई मतदाता सूची में 7,28,518 मतदाता हैं, जिसमें 3,26,350 महिला मतदाता और 4,01,762 पुरुष मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जनपद हमीरपुर में 7 विकास खंडों की 330 ग्राम पंचायतों में कुल 524 मतदान केंद्र और 1214 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जनपद हमीरपुर का किसान पारंपरिक खेती के साथ कैश क्रॉप की तरफ तेजी से रुझान बढ़ा है और फायदा भी मिला है। जिला उद्यान अधिकारी सौभाग सिंह ने बताया कि किसानों को भीमा सुबर प्याज की खेती करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें निशुल्क प्याज का बीज दिया गया, जिससे किसानों ने प्याज की खेती करके नासिक प्याज के ऊपर निर्भर न रहते हुए अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं।
1: NHRDF द्वारा उपलब्ध उच्च प्रजातियां का निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें मुख्यतः एग्रीफाउंड लाइट रेड, भीमा सुपर, भीमा राज, भीमा शक्ति जैसी प्रजातियां किसान भाइयों को निःशुल्क दी जाती हैं, जिनका जमाव और उत्पादन दोनों ही बहुत अच्छा हुआ है।
2: हमीरपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का।
3: इटावा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ताओं के लिए DBA सभागार में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सभी बीमारियों के एक दर्जन से अधिक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम ने परीक्षण किया। मेडिकल कैंप का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला जज रजत सिंह जैन ने फीता काट कर किया। इटावा में 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावी छात्रों का सम्मान हुआ। सदर विधायक सरता भदौरिया की अध्यक्षता में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में आयोजित समारोह में 14 टॉपर्स को 21,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। अन्य मेधावियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोक भवन लखनऊ से लाइव प्रसारण को भी देखा गया। विधायक सरता भदौरिया ने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वही दहाड़ता है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने भी छात्रों को मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के सम्मान की सीख दी। इटावा में जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में एक जनपद एक नदी, डिजिटल लाइब्रेरी, जीरो पॉवर्टी अभियान समेत कई योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने सिरसा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए फिल्टर चैम्बर प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन में नए पात्रों को शौचालय से जोड़ने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सामुदायिक शौचालय बनाने को कहा। 117 डिजिटल लाइब्रेरी में प्रतियोगी पुस्तकें रखने और जीरो पॉवर्टी के चिन्हित परिवारों को राशन, हर घर नल का लाभ प्राथमिकता से देने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर इटावा में उद्यमी संवाद कार्यक्रम हुआ। सदर विधायक सरता भदौरिया की अध्यक्षता में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि 12 साल में भारत ने अभूतपूर्व विकास किया है। इटावा के अंगोछा, बेडशीट, खीर मोहन जैसे उत्पादों को भी नई पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि ODOP योजना में 2000 लोगों को टूल किट, विश्वकर्मा योजना में 5,805 को प्रशिक्षण और युवा उद्यमी अभियान में 1,937 युवाओं 74 करोड़ से अधिक ऋण मिला। जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ल ने भी युवाओं से नवाचार के साथ आगे आने की अपील की। कार्यक्रम में लाभार्थियों को ऋण चेक और टूल किट वितरित की गई। इटावा पहुंची महिला कल्याण मंत्री बीबी रानी मौर्य ने केंद्र की 12 राज्य और 9 साल के सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, अपराधी जेल में है, महिला सुरक्षा प्राथमिकता है, सड़क, बिजली, पुल, हॉस्पिटल बन रहे हैं, इटावा में यमुना और सिरसा नदी में जाने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए जिला पंचायत राज विभाग ने बड़ी पहल की है। डीपीआरओ रोहित कुमार ने बताया कि यमुना किनारे के 10 गांव में फिल्टर चैम्बर बना दिए गए हैं। 10 ग्राम पंचायतों में 16 फिल्टर चैम्बर बनाए जा रहे हैं, जिनमें 12 तैयार हो चुके हैं। सिरसा नदी का जीर्णोद्धार

0: भार भी शुरू कर दिया गया है। इस पहल से यमुना और सिरसा नदी को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा और गांव का गंदा पानी नदियों में जाने से रोका गया है।
1: हमारे 10 गांव थे जिनका गंदा पानी जो यमुना नदी में जा रहा था, तो जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में उनमें हमने फिल्टर चैम्बर बनाए गए, 10 गांव जो हमारे थे कवर किए गए, अब उनमें जो है पानी साफ तरीके से लगभग जा रहा है।
0: जनपद इटावा में 285 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 21 राजकीय, 54 सहायता प्राप्त और 210 वित्त विहीन विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में 1,29,000 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जनपद में 5 माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी है। इटावा पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,31,97,000 रुपए कीमत के मादक पदार्थ नष्ट किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में 7 केसों से जुड़ा 1,772 किलो गांजा चरस डोडा कानपुर देहात के अधिकृत प्लांट में जलाया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हुई। इटावा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराया। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने यह कार्रवाई की। NDPS एक्ट के तहत विभिन्न थानों पर पंजीकृत 7 अभियोगों से संबंधित कुल 1,772 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहुंचे ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने नुमाइश पंडाल में पहुंचकर योग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, देश की जनता को स्वस्थ रखने के लिए यह प्रारंभ किया है, निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग से 15 छात्रों की मौत के बाद इटावा प्रशासन सतर्क हो गया। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारी संगठनों और कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कोचिंग मॉल और प्लाजा में फायर सेफ्टी मानकों का 100% पालन हो, शॉर्ट सर्किट रोकने को अच्छी वायरिंग MCB लगाएं। SSP ने बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विनय कुमार निगम के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत।

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती।
0: किसान भाई सुनेंगे हर माह के अंतिम मंगलवार को शाम 6:05 पर
1: बासमती धान से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं के बारे में।
0: स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से जानकारी लेने के लिए हमारे फोन नंबर है
1: 0134123015
0: और हमारा मोबाइल नंबर है 9457082888।
1: बासमती धान की गुणवत्ता युक्त जानकारी लेने के लिए सुनते रहिए
0: हर माह के अंतिम मंगलवार को बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित
1: सजीव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो बासमती।
2: किसान कमान बासमती, देश की शान बासमती,
3: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
5: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
4: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विनय कुमार निगम के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं विनय कुमार निगम के स्वर में ये रुहेलखंडी लोकगीत।

0: विनय कुमार निगम के स्वर में आप सुन रहे थे ये रुहेलखंडी लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है आपके अनुरोध पत्रों और व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। सभी सुनने वालों को ताहिर महमूद का नमस्कार और इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी।
1: जी हाँ, मैं हूँ राजवीर सिंह। आप सभी श्रोताओं को मेरी ओर से भी प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। तो ताहिर भाई, हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपनी पसंद का गीत अपनी फरमाइश के माध्यम से सुनना चाहते हैं, तो वो हमें व्हाट्सएप पर फरमाइश भेज सकते हैं। सबसे ऊपर अपना नाम और पता और गीत की फरमाइश लिख करके आप भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर।
0: हाँ, हमारे व्हाट्सएप नंबर है 94570-78288 94570-78288।
1: या तो फिर लिख भेजिए अपनी फरमाइश हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो अभी ताहिर भाई ने आपको बताया है। और कार्यक्रम का पहला गीत जो हमारे श्रोताओं ने सुनना चाहा है, वो गीत हमने लिया है फिल्म
0: बहुरानी से। आवाज है महेंद्र कपूर की, गीत साहिल लुधियानवी ने लिखा है और सी रामचंद्र की धुन है। आपकी फरमाइश के पत्र हम गीत के बाद
1: शामिल करेंगे।

0: तो ताहिर भाई, अभी हमारे श्रोताओं ने सुना फिल्म बहुरानी का ये गीत जिसे आवाज़ दी महेंद्र कपूर ने। साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत और धुन तैयार की थी सी रामचंद्र ने। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता जो रहे हैं वो हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश कर भेजी थी
1: निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली से कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद दानिश और इकराम अली प्रेमी ने।
0: और ये फरमाइश हमारे पास आई थी शास्त्री नगर बीट शहर से किसान सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया सबकाल, साईराज सबकाल और विशाल सबकाल की ओर से।
1: हलवाईयान कस्बा शेरकोट से आप थे मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू साजिदा और चांदनी रानी।
0: पश्चिम सिंह भूम चाईबासा झारखंड से फरमाइश की थी शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप ने।
1: ये पत्र हमारे पास आया था दाऊद सराय सहारनपुर से। अनुरोध करने वाले श्रोता थे अनवर साबरी, शन्नो साबरी, इरम और अमान साबरी।
0: तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख।
1: मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य और सोनी ने फरमाइश की थी दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से।
0: गांव जाखोद राजस्थान से फरमाइश की थी शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक ने।
1: मोहल्ला अफगानान शेरकोट बिजनौर से आप थे नदीम बाकी, कलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, नाजिमा बी, अलमीर और जन्नत।
0: पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत।
1: जसपुर उत्तराखंड से फरमाइश करते थे रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, समरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर।
0: नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, अब्दुल रहमान, सैयद खलील, मुबीन भाई, एम डी यासीन शेख, चांद फारूक फूलवाले, मूसा करीम, शेख सलीम, आप सभी लोगों की फरमाइश पर ये गीत अभी आपने सुना। और अब अगला गीत
1: सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को काला पानी फिल्म से।
0: जी,
1: आवाज़ है आशा भोसले की, मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और सचिन देव बर्मन का संगीत है।

0: काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, आशा भोसले के स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और धुन थी सचिन देव बर्मन की, और पसंद आप सब श्रोताओं की थी।
1: कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, और धमदा ग्राम सुखरी कला से फरमाइश की थी अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल ने।
0: ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से फरमाइश की थी राशिद अंसारी, परवीन जहां अंसारी, निषाद आयशा और मोहम्मद अफान ने।
1: बटिंडा रोड मंडी डबवाली से फरमाइश की थी राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग। और अगला मैसेज कहां से आया है?
0: ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड से ये पत्र है। जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका और रोमिका यादव का
1: ये मैसेज है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां की ओर से।
0: ग्राम जहानाबाद नजीबाबाद जिला बिजनौर से फरमाइश की थी मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जैद, अक्सा रानी, इंशारीबा अनाबिया और आयरा ने।
1: गांव और पोस्ट राहुल नंगली से एवरग्रीन क्लब ए आई आर नजीबाबाद बिजनौर से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं मदन गिरी, आसिफ चौधरी, प्रकाश चंद, रक्षित अंसारी, मुकेश कश्यप, अमित धीमान, आचार्य सत्यवीर सिंह, मेहजाब। और हाँ, एक मैसेज भी इसमें लिखते हैं ताहिर भाई, सासा संदेश इन्होंने लिखा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तान हमारा।
0: जी, बहुत
1: सुंदर
0: अच्छा।
1: संदेश आपका।
0: बिल्कुल, ये पत्र मेरे पास है पोस्ट बौरी खुर्द तालुका जाफराबाद जिला जालना से। अनुरोध करने वाले श्रोता हैं श्री

0: कर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, साक्षी ताई राजे जाधव, जगुताई राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सोहम देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख और सानवी देशमुख।
1: मजनू कटिल्ला से फरमाइश की थी कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने।
0: ये पत्र गांव नथाना पंजाब से है। अनुरोध करते हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, गगन सोनी, जासमीन और रेखा।
1: और ये अगला व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास हमें मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम ध्यानपुर से। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं साबिर अली। केवल साबिर अली की ओर से मैसेज हमारे पास आया है
0: जी। सादुल शहर से आप हैं ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान।
1: श्री गणेश अविकाट श्री रामपुर से फरमाइश की थी डी अशोक कुंभार, अविका, जीविका, सानू कुंभार और अर्चना कुंभार ने। कोयते वस्ती पुनावाले से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और साइना साइशा सोनवने ने।
0: वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से इस गीत को पसंद करते थे जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी।
1: और यह मैसेज हमारे पास आया था पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह की ओर से।

0: अभी हमारे श्रोताओं ने सुना फिल्म लोफर का ये गीत, आवाज़ आशा भोसले की थी, आनंद बख्शी का गीत और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे जो श्रोता हैं जिन्होंने हमें फरमाइश कर भेजी थी वो हैं ग्राम नंगलाउबन नजीबाबाद जनपद बिजनौर से ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, छोटी, शिवी, क्रीधा, ओम प्रकाश, बलवंत, पूनम और परिवार के अन्य सदस्य।
1: मेन बाजार नेट और उत्तर प्रदेश से एम जुल्फकार राही, एम मुमताज़ राही, एम जुनैद राही, अलसबा गुल, गुलफिशा रानी, मोहम्मद अयान फरीदी और मोहम्मद कैफ फरीदी ने भी इस गीत को पसंद किया था।
0: और ये संदेश हमारे पास आया था मोहल्ला नारे हिंद नजीबाबाद जनपद बिजनौर से गीता रानी वर्मा, अनिता वर्मा, अमित वर्मा, नैना वर्मा, मेघा वर्मा, सुरेंद्र वर्मा और वीरेंद्र वर्मा की ओर से।
1: सुरेवाड़ी औरंगाबाद से फरमाइश करने वाले श्रोता थे प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहन बोरगांवकर, अंशुमन और उनके परिवार के सदस्य।
0: सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से फरमाइश हमें कर भेजी थी रमेश चंद्र चौहान, मोनिका चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी ने।
1: श्री गंगानगर से अनुरोध था बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा और नरेश कुमार शर्मा का।
0: ग्राम नजीमपुर तहसील नजीबाबाद जनपद बिजनौर से फरमाइश हमें कर भेजी थी योगेश कुमार और कुमारी उमेश ने।
1: और ये पत्र था गांव कुम्हार हेड़ा जिला सहारनपुर से, फरमाइश करते थे सैयद मसरूर, अजहर हसन, इब्राहिम, नाजिया और आफिया।
0: सप्तरंग श्रोता संघ कुम्भार गली श्री रामपुर से फरमाइश की थी अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले और ऋषिकेश दले ने। अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने ने।

0: फिल्म परवरिश में भी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को। मजरूह सुल्तानपुरी का ये गीत था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: और इस गीत को पसंद करते थे कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्यों में मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका और वंश बत्ता।
0: ग्राम धनसनी जनपद बिजनौर से इसी गीत को सुनना चाहा था मुनेश कुमार प्रजापति, दिनेश कुमार प्रजापति, महेंद्र कुमार प्रजापति, मुकेश, राजू और राजकुमार प्रजापति ने।
1: मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से आप थे बैनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह।
0: कलनौर से फरमाइश की थी नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा ने।
1: लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा और दतरेंगी से आप थे भागवत वर्मा।
0: जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से इसी गीत के लिए फरमाइश हमें कर भेजी थी फरमान मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने।
1: अनारकली बाजार जगराओं से इस गीत को पसंद करते थे सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्य और भाई सुच्चा पाठक।
0: वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा।
1: यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से फरमाइश करने वाले श्रोता दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार।
0: कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका, वंश बत्ता और हार्दिक और समस्त बत्ता परिवार।
1: महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और राम निवास अग्रवाल।
0: दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म सैमसन में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया चित्रगुप्त ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी गांव डाकघर निजामाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर ने।
1: रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से ये पत्र हमारे पास आया था। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार का इस गीत की फरमाइश के लिए।
0: जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से फरमाइश की थी बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान ने।
1: मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, अनीतापुरी, ममतापुरी, मेघापुरी, पूजापुरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लायसा कपूर, रामा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीशपुरी, सतीशपुरी, राकेशपुरी, विनोदपुरी, पालीपुरी, डीसीपुरी, अरुणपुरी, नेहापुरी, एकतापुरी, शम्मीपुरी, बोधीपुरी, सुनीलपुरी, वीकेपुरी, आरएसपुरी और उनके परिवार के अन्य सभी सदस्यों ने।
0: लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता रहे विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू।
1: कंडला बंदर कच्छ से इस गीत को पसंद किया था जगदीश जौहरी, पूजा जौहरी और जनिश ने। गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और अहमदाबाद से कंचन सोनार और उनके दोस्तों ने।
0: रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब ने।
1: इंदिरा विहार रायगढ़ से आप थे

0: अकरम नूरजहाँ, डब्लू नूरजहाँ, सईद नूरजहाँ, वसीम नूरजहाँ और वलीउल्लाह नूरजहाँ।
1: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता रहे लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी।
0: ये पत्र था राजनांदगांव से, अनुरोध था याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा का।
1: फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा ने।
0: जेल रोड रायगढ़ से आप थे रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और अदीबा तिवारी।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोखड़े, नंदा बोखड़े, हनुमान बोखड़े और उत्तम जमदाड़े।
0: आदर्श नगर मलोट से फरमाइश की थी राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने।
1: गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था।
0: रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से ये पत्र था खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना, परी खर्चे, ललित नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी का।
1: जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से फरमाइश की थी मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मोसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप ने।

0: इस गीत को सुनना चाहा था मालवा रेडियो श्रोता संघ परमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, अतुल वर्मा, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने।
1: और राजवीर जी, इस गीत को हमने लिया था धर्मात्मा फिल्म से, आवाज़ थी किशोर कुमार की, शब्द रचना इंदिवर की और संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की थी।
0: जी, और इसी गीत के लिए ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता जो थे वो थे, जिन्होंने हमें मैसेज किया था, पांडरकड़वा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे।
1: परिमहल कासगंज से पत्र आया था आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और असलम सैफी का, शुक्रिया के साथ।
0: अच्छा, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने भी इसी गीत की फरमाइश कर भेजी थी।
1: गोला बाजार बक्सर से फरमाइश करते थे श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित।
0: वारसी क्लब सिंधौली बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और करुल अमरादाबाद से अयूब खान।
1: कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से आप थे ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय।
0: मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगेजापुर से फरमाइश की थी मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी ने।
1: दुबिहा नेवादा गाजीपुर से आप थे प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और उनके परिवार के सदस्य। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय।
0: राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वन्ना कुमार और बिट्टू कुमार।
1: पांडरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे ने भी इसी गीत को पसंद किया था।
0: गांव खारियाड़ा ठाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया ने भी इसी गीत की फरमाइश हमें कर भेजी थी।
1: बल्लार शाह से आप थे सुर जजी लौंडे, प्राची लौंडे और एक लव्य लौंडे।
0: चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार।
1: मॉडल टाउन करनाल से फरमाइश करते थे सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी और सुनीता शर्मा।
0: लाल कुर्ती रुड़की कैंट से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा।

0: चा चा चा। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीतकार थे गोपाल दास नीरज और धुन इकबाल कुरैशी की थी।
1: और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता थे जिन्होंने मैं फरमाइश कर भेजी थी, वो हैं छत्रपति सांभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।
0: जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज ने इस गीत को पसंद किया था।
1: फर्रुखाबाद साहिबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से इस गीत की फरमाइश कर भेजी थी सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू लल्ला, बाबू शिवा, शिवानी, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक ने।
0: शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से अनुरोध करते थे आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, आदिब चौधरी और कादिर चौधरी।
1: झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मैंग भाटिया।
0: सरगुजा मैन पाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और अदीबा थापा ने भी इसी गीत के लिए अपनी पसंद का इजहार इस खत के द्वारा किया था।
1: मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली और साथ में नगमा नाज मंसूरी ने भी इसी गीत की फरमाइश हमें कर भेजी थी।
0: बिहारी कॉलोनी लोनी से ये पत्र आया था। अनुरोध करने वाले श्रोता थे परवीन डोम, शरफुद्दीन डोम, वली डोम और डब्लू डोम।
1: पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु ताशु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद।
0: जेल रोड मथुरा से आप थे वसीम, आसमा, बेलदार, अक्रम, आसमा और उनके परिवार के सदस्य।
1: मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई। चंडीगढ़ सिटी से शेफाली, शेफी,

0: डेविस, बिमला और सतीश अनेजा।
1: लेवा खेल मोहल्ला चांदुर बिस्वा से फरमाइश करने वाले श्रोता थे नारायण भाऊ विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो उषा, सोरना खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी।
0: फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से जुनेद मुजावर, साहिबा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर। गोविंदपुरा अहमदनगर से इन्होंने हमें ये मैसेज भेजा था।
1: दौलतबाग मुरादाबाद से ये पत्र था जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी का।
0: और ये अगला मैसेज हमारे पास जो आया है वो है सादुल शहर राजस्थान से राजकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ की ओर से।
1: अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्य और भाई सुच्चा पाठक।
0: मोताला महाराष्ट्र से फरमाइश की थी विजय सुरलकर और रतनमाला ने।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार थे हिंदीवर और धुन थी कल्याण जी आनंद जी की। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मन्ना डे के युगल स्वर में तलाक फिल्म का गीत। शब्द रचना है प्रदीप की और सी रामचंद्र की धुन है। पसंद आप सब श्रोताओं की।
1: इन दोनों ही गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश कुछ इस प्रकार है। हनुमान

आशा भोसले और मन्ना डे के गाए फिल्म तलाक किसी गीत के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे ताहिर महमूद को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम लेकर अब स्टूडियो में मौजूद हैं राजवीर
1: जी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म हम किसी से कम नहीं से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की।

0: हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और सोनू निगम को। आनंद बख्शी का ये गीत था और संगीत अनु मलिक का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, अगले गीत से पहले सुनिए ये जरूरी संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। अखियों से गोली मारे, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने वाले हैं। आवाजें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की, साथ में है संजीवनी समीर का लिखा एक गीत है और धुन है आनंद मिलंद की।

आंखियों से गोली मारे। इस फिल्म में भी आपने सुना सोनू निगम, अलका याग्निक और संजीवनी को। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया आनंद मिलंद ने। और लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म हीरो नंबर वन से। आवाजें हैं उदित नारायण और पूर्णिमा की, शब्द रचना समीर की है और संगीत अनु मलिक का।

हीरो नंबर वन। इस फिल्म में भी आपने सुना उदित नारायण और पूर्णिमा को। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से। और लीजिए, अब पेश है फिल्म अफलातून से ललित सेन और श्वेता शेट्टी की आवाज़ों में ये गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया दिलीप सेन और समीर सेन ने।

ललित सेन और श्वेता शेट्टी को भी आप सुन रहे थे फिल्म अफलातून में। और अब कार्यक्रम का ये अंतिम गीत जिसको हमने लिया है फिल्म दूल्हे राजा से। आवाज़ें हैं सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की, समीर का लिखा एक गीत है और धुन है आनंद मिलंद की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय पूर्वाह्न के 11:30 हो चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जसल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
3: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
2: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
3: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों।

0: गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की।
0: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
0: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
1: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
0: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधना?
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी? इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा, देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे, ठीक?
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा
1: सजा बेटे सजा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सजा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यार। है सोचा बेटा, सोचा सोचा, शाबाश सजा बेटा, है ना? चुप्पा तो सोएगा, सोचा सो गया। इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये?
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: अरे मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा उघेरा होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर तो।
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ
2: चलो
0: चलो, चलो आगे चलकर देखते हैं। चलो।
4: ये देखो ये पेड़।
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो।
1: अच्छा
0: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ?
1: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया।
0: अरे दिखा दो
1: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता मुझे सबके नाम थोड़े मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
1: देखो ना माँ ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मा उसे छोड़ दो। देखो अम्मा इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा।
2: हाँ बिल्कुल
0: सचमुच, इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है। अरे सुन कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
1: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे।
0: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
2: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: ओ जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
2: क्या हुआ?
0: अरे चुप्पा, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। हैं,
2: तू समझ गई है?
1: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझी को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
2: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
2: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
2: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ,

0: पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोल ना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चलो
0: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन

0: उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
1: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
0: किसी ने कहा,
2: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
0: किसी ने कहा,
3: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
0: किसी ने कहा,
4: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
0: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
5: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
0: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
1: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय दोपहर के 12 बजने को हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

पब्लिक स्पीक, यह कार्यक्रम रात 9:30 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत के अंतर्गत शाम 7:32 पर आप सुनेंगे आदित्य कुमार शर्मा के गाए भजन। विविधा के अंतर्गत शाम 6:45 पर सुनिएगा रश्मि कुमारी की वार्ता, जिसका विषय रहेगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय महिलाओं का योगदान।

शाम 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे परंपरागत और आधुनिक कृषि का समावेश विषय पर पवनवीर सिंह से नरेश पाल सिंह की बातचीत। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर।

आज शाम 5 बजे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की ऋण योजनाओं और मदरसों और अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना पर।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत आज अपराह्न 1:45 पर आप सुन सकते हैं भगवती देवी पोखरियाल के गाए गढ़वाली लोकगीत।

दिन में 1:15 पर कार्यक्रम परिवार जगत के अंतर्गत परिचर्चा का विषय होगा, कुछ माटी की कुछ कुम्हार की। प्रतिभागी होंगी कृतिका कुंडलिया और बंशीधर कुंडलिया। इसका संचालन करेंगी ज्योति पाल।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 12:05 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे विजया गोडबोले का गाया राग शुद्ध सारंग, जो कि विलंबित एक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध होगा।

फिल्म संगीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम मिड डे मेलोडी के अंतर्गत, दिन में 2:30 पर कार्यक्रम नई फिल्मों से के अंतर्गत, छायागीत कार्यक्रम में शाम 6:55 पर, रात 8 कार्यक्रम गीत संध्या के अंतर्गत, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में रात 8:30 पर, रात 10 आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत, और रात 10:30 पर श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 अर्थात 954 kHz पर। इस समय दोपहर के 12:05 हो रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए विजया गोडबोले का गायन। आप पेश कर रहे हैं राग शुद्ध सारंग, विलंबित एक ताल और द्रुत 3 में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विजया गोडबोले का गायन। आप पेश कर रही थी राग शुद्ध सारंग। विलंबित एक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध था। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय दोपहर के 12:30 हो रहे हैं और श्रोताओं, ये समय है आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मिड डे मेलोडी का। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में। और ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, राजवीर। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो प्यार के अनोखे एहसास को बयां करता है। कहते हैं कि मोहब्बत वो आग है जो जलाती नहीं बल्कि दिल को एक अजीब सा सुकून और ठंडक देती है। इसी जज्बात को बयां करती ये चंद पंक्तियां। तेरी चाहत की छाँव में हर लम्हा बिताना है, तेरी चाहत की छाँव में हर लम्हा बिताना है, इस दिल को बस तेरी धड़कन का दीवाना बनाना है। जलते हैं लोग न जाने क्यों इस मोहब्बत से, हमें तो इस ठंडी आग में ही अपनी जिंदगी को सजाना है। तो चलिए श्रोताओं, आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राम और श्याम का ये गीत। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। शकील बदायूनी का ये गीत है और संगीत है नौशाद का।

शतों प्यार की ठंडी आग में जलने के बाद जब दिल पहली बार खुलकर किसी के लिए धड़कता है तो पूरी कायनात सुहानी लगने लगती है। जब पहली बार दिल चुपके से इकरार करता है कि नजरें मिलीं और दिल खो गया, कि नजरें मिलीं और दिल खो गया, न जाने कब कैसे ये क्या हो गया। हम तो संभल कर चल रहे थे राहों में, पर न जाने कब उनसे बे इंतहा प्यार हो गया। लता मंगेशकर की खनकती आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का धड़कता हुआ संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे बोल। गीत है फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से।

0: मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म में भी आपने सुना लता मंगेशकर को। मजरूह के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, मोहब्बत की राह में आगे बढ़ते हुए कभी कभी ऐसा समय भी आता है जहां पूरा जहां ही जन्नत लगने लगता है। जब हर तरफ हुस्न और नूर का पहरा हो तो दिल की महफिल कुछ इस तरह सस्ती है। जमीन पर उतर आई है जैसे परियों की महफिल, जमीन पर उतर आई हो जैसे परियों की महफिल, हर एक नज़ारा अब तो चुरा रहा है ये दिल। नूर ऐसा बिखरा है आज इस फिजा में कि हर चेहरा यहाँ चांद है, हर जर्रा सितारा। तो आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आबरू से। GL रावल का संगीत है और गीत है GL रावत का और संगीत है सोनी कोमी का।

श्रोताओं, कश्मीर की ठंडी वादियों से गुजरने के बाद चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक की ओर। श्रोताओं, कहते हैं कि आँखें दिल का आईना होती हैं, जो बात जुबां नहीं कह पाती वो आँखें कह जाती हैं, और जब कोई अपनी तीखी नज़रों से आपके दिल की चोरी कर ले तो कुछ ऐसा ख्याल आता है, चुपके से जो दिल में उतर जाते हैं वो आँखों के रास्ते रूह में समा जाते हैं। ढूंढती है नज़र बस उसी एक चेहरे को, जो ख्वाब बनकर रातों की नींद उड़ा जाते हैं। श्रोताओं, जॉय मुखर्जी और शर्मिला टैगोर की मुख्य भूमिका वाली फिल्म दिल और मोहब्बत का ये गीत बहुत ही चुलबुला है। वर्मा मलिक के लिखे बोल, ओपी नैयर साहब का चिरपरिचित थिरकता हुआ संगीत और महेंद्र कपूर की बुलंद आवाज़। आइए सुनते हैं ये बेहद लोकप्रिय और मज़ेदार गीत।

दिल और मोहब्बत, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर को। वर्मा मलिक का ये गीत था और संगीत ओपी नैयर का। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आज के हमारे आखिरी नगमे का। कहते हैं जब हुस्न अपनी जुल्फें खोलकर महफिल में कदम रखता है तो घटाएं भी पानी भरने लगती हैं और आसमान के बादल भी शर्मा जाते हैं। इसी मदहोश कर देने वाले अंदाज पर पेश है आज का ये आखिरी नगमा। तेरी जुल्फों के साए में शाम करना चाहता हूँ मैं, अपनी हर खुशी तेरे नाम करना चाहता हूँ। यूं जो तुम अपनी जुल्फें बिखराती चली आई हो, इन काली घटाओं को मैं दिल से सलाम करना चाहता हूँ।

मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म एक कली मुस्काई के इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं पर संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दिन का 1 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हुर्मुज जलडमरु मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन स्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today visited and offered prayers at the Navashakti Vinayagar Temple in Victoria, Seychelles, on the third day of his visit to the African country. He also met the members of the Indian diaspora there. Later, the Prime Minister paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park. He has since departed for India after concluding his successful three-day visit to Seychelles. Yesterday, Prime Minister Modi attended the National Day celebrations of Seychelles, marking the 50th anniversary of independence of the country. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. The Prime Minister was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. He also addressed the National Assembly of Seychelles, where he emphasized that Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive and where international institutions reflect contemporary realities. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and to State and Union Territory Police. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The government has introduced the Improvement Notice Mechanism under the Legal Metrology Act 2009 through the Jan Vishwas Amendment of Provisions Act 2026. Under the new mechanism, businesses committing specified first-time procedural or regulatory non-compliances will be given an opportunity to rectify the deficiency before penal proceedings are initiated. The Ministry of Consumer Affairs said the reform aims to promote ease of doing business by encouraging voluntary compliance, reducing unnecessary litigation and supporting a more trust-based regulatory framework while maintaining strong consumer protection. The Ministry added that the mechanism applies to manufacturers, importers, packers, dealers, repairers, traders, MSMEs and other regulated entities. The Supreme Court today refused an urgent hearing on a PIL seeking a court-monitored probe and forensic audit into alleged financial irregularities in donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. The bench of Justices M.M. Sundresh and Sheel Nagu questioned the urgency and directed that the plea be listed after the court reopens following the summer vacation. A Delhi court today extended till July the 11th the judicial custody of 10 accused in the NEETUG 2026 paper leak case. Being investigated by the Central Bureau of Investigation, CBI, the accused were produced before the Rouse Avenue court through video conferencing on the expiry of their earlier judicial custody. The CBI has so far arrested 13 accused in the case and is investigating an alleged network involved in procuring and circulating NEETUG question papers. Congress President Mallikarjun Kharge today took oath as a member of the Rajya Sabha at the Parliament House in New Delhi. Vice President and Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan administered the oath to Mr. Kharge, who got re-elected to the upper house from Karnataka. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms to voters in the National Capital Territory of Delhi will begin tomorrow. Chief Electoral Officer of Delhi, Ashok Kumar, announced this while briefing the media in New Delhi today. He said booth-level officers will visit every household from tomorrow to the 29th of next month to distribute the enumeration forms and collect the duly filled applications from eligible electors. In Assam, fears of a major flood have intensified in Dhemaji district following reports of a temporary blockage in the upstream course of the Gai Nadi in the hills of Arunachal Pradesh. The obstruction is believed to have been caused by a massive landslide triggered by days of heavy rainfall in the region. The Dhemaji district administration has issued an urgent public advisory and warned that the blockage could trigger a sudden flash flood. In the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in the first knockout match at Los Angeles in the United States. And with that, we end this news bulletin.
1: होने वाले हैं अब आप सुनेंगे इलाकाई खबरें। ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत के बरखेड़ा और बीसलपुर असेंबली हलकों में 569 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने 2500 बेघर खानदानों में शहरियत और लीज तकसीम की। जलसायाम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि हुकूमत का अज़्म गरीबों, नौजवानों और ख़वातीन का तहफ़ है। मरकजी वजीर ममलकत और पीलीभीत के MP जितिन प्रसाद भी इस तकरीब में मौजूद थे।
2: हमारी प्रतिबद्धता गरीब के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता युवा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है। हमारी प्रतिबद्धता किसी गुंडा माफिया के प्रति नहीं हो सकती है और हम उसको कोई संरक्षण भी न देंगे न देने देंगे।
1: पीलीभीत के बाद वजीर आला मुरादाबाद जाएंगे, जहां वो मुरादाबाद डिवीजन में महकमा तामीरात आम्मा के पुराने कामों का जायजा लेने और नए कामों के लिए एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल करने के लिए एक मीटिंग करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की मीटिंग की सदारत की और कई प्रोजेक्टों बशमूल एक्सप्रेस वे, सनती इंफ्रास्ट्रक्चर, देही रोजी रोटी, तवानाई और EV चार्जिंग की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर और मेयारी तरीके से मुकम्मल किया जाना चाहिए। वजीर आला ने तमाम सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों, तिब्बी इदारों, जिलाई सतह के मर्दाना और ख्वातीन अस्पतालों और होटलों के फायर NOC स्टेटस की फौरी तस्दीक की हिदायत दी। वजीर आला ने एक्सप्रेस वे समेत दीगर मनसूबों के लिए जमीन के हुसूल के अमल को तेज करने की भी हिदायत दी। उन्होंने नए एक्सप्रेस वे के साथ सनती इलाकों की तरक्की के लिए मुनासिब जमीन की बरवक्त दस्तियाबी को यकीनी बनाने पर खुसूसी जोर दिया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस जिले में 548 करोड़ रुपए के 143 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुस्तहकीन में घर की चाबियां, स्मार्टफोन और चेक तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि हाथरस में जल्द ही एक प्रोसेसिंग सेंटर मुकम्मल हो जाएगा, जिससे वहां के आलू काश्तकारों को फायदा पहुंचेगा।
2: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
1: इसके बाद वजीर आला ने आगरा में अवामी नुमाइंदों और आला ओहदेदारों के साथ तरक्याती कामों और अमन व अमान की पेशरफ्त के सिलसिले में जायजा मीटिंग की। वजीर आला ने ओहदेदारों को तमाम ज़ेरुल्तवा प्रोजेक्टों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। अयोध्या में श्रीराम मंदिर अतिया केस के तमाम 8 मुलजमीन को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस तमाम 8 की रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में मुबैना गबन और माली बेजाबदगियों से मुतालिक दायर दरख्वास्त की आज समाअत हुई। अर्जी में CBI की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया गया था। कल से रियासत भर में पल्स पोलियो मुहिम का आगाज हुआ। पहले दिन बूथ डे पर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। आज से 3 जुलाई तक महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगी। मुहिम के पहले रोज मुख्तलिफ अजला में अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। रियासत में देही तरक्की महकमे ने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा की जगह पर VBG रामजी यानी तरक्की याफ्ता भारत रोजगार और रोजी रोटी गारंटी मिशन देही स्कीम के मुअसर निफाज की तैयारी मुकम्मल कर ली है। यह स्कीम यकम जुलाई 2026 से पूरे मुल्क में नाफिज हो जाएगी। इस सिलसिले में 2 जुलाई को रियासतगीर अवामी कॉन्फ्रेंस लॉन्च इवेंट प्रोग्राम होगा, जिसके तहत मुजव्वजा कामों और तरक्की याफ्ता देही पंचायत स्कीम की नुमाइश की जाएगी। रियासत में कुल 10,000 से काम 2 जुलाई को शुरू किए जाएंगे। दारुल हुकूमत लखनऊ और आसपास के इलाकों में आज सुबह मौसम में तब्दीली देखी गई और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के मशरकी डिवीज़न में کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر۔ ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں۔ دن کے 1:15 ہو رہے ہیں۔ لیجیے پرستوت ہے کاریکرم پریوار جگت۔

श्रोताओं नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और सुन रहे होंगे अपना पसंदीदा प्रोग्राम परिवार जगत। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी साथी ज्योति। हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं स्वास्थ्य की और ढेरों जानकारी भी साझा करते हैं, साथ ही साथ कराते हैं गीत संगीत से मनोरंजन भी। तो आइए देर ना करते हुए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। श्रोताओं हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। और वहीं पर अगर हम किसी भी रोग से ग्रस्त हैं तो दवाइयों और डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर अपना जीवन यूं ही व्यर्थ करते रहते हैं। श्रोताओं हम स्वस्थ रहें इसके लिए बहुत जरूरी है कुछ सावधानी बरतना, जैसे प्रत्येक मौसम में उसी के अनुकूल अपना खान पान और पहनावा रखें, जिससे बहुत हद तक हम मौसम में होने वाली दिक्कतों से बच सकते हैं। श्रोताओं गर्मी और बरसात का मौसम स्वास्थ्य के लिए अधिक देखभाल का होता है। इस मौसम में हमें स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जैसे गर्मियों में हम बाहर का भोजन बिल्कुल ना करें, बासी भोजन ना खाएं, तली भुनी चीजें अधिक ना खाएं, अधिक मिर्च मसाले और गरिष्ठ भोजन भी ना करें, अधिक से अधिक पानी पिए, तरबूज खरबूज खीरा ककड़ी आदि का सेवन अधिक करें और साथ ही साथ हरी सब्जियां भी खाएं, सूती कपड़े पहने। और इन सब बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम इस मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे गर्मियों में भी और हर मौसम में हम ऐसी कामना करते हैं। और अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: चंदन का एहसास।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
4: तो लेन देन
3: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
4: ओ,
3: जैसे यूपीआई से।
4: अच्छा,
3: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
4: वो क्या है मम्मी जी?
3: तुम्हारी मुंह दिखाई भी यूपीआई से मिलेगी।
4: आम भी ना मम्मी जी।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: संदेशों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम परिवार जगत में। श्रोताओं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम

0: सकते हैं। श्रोताओं, ये हमारी संस्कृति तो नहीं है, इसमें अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ी भूमिका मोबाइल की है तो वो भी गलत नहीं होगा। आज मोबाइल ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। कभी घरों में शाम होते ही हंसी गूंजती थी, दादी की कहानियाँ, माँ की डांट में छिपा प्यार, पिता के अनुभव और बच्चों की शरारतें, यही एक घर की पहचान होती थी। लेकिन आज एक ही छत पर रहने ही वाले लोग अलग अलग स्क्रीन की दुनिया में जैसे खो गए हैं। तकनीक ने दूरियों को तो कम किया है, लेकिन कई बार दिल के बीच की दूरियां बढ़ा दी हैं। आज का युग तकनीक का युग है और मोबाइल हमारी दैनिक जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सुबह आँख खुलने से लेकर रात में सोने तक मोबाइल हमारे ही पास है। शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, मनोरंजन और संचार, हर क्षेत्र में मोबाइल ने जीवन को सरल और तेज बनाया है। लेकिन इस सुविधा की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है रिश्तों को खोकर। मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग बच्चों और युवाओं को अत्यधिक प्रभावित कर रहा है, जिससे बुजुर्गों की स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि उनके पोते पोती या उनके बच्चों को उनके पास बैठने का समय ही नहीं है। श्रोताओं, आवश्यकता है सही संतुलन की। हमें समझना होगा कि मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर हम तुरंत उसे चार्ज पर लगा देते हैं, लेकिन यदि रिश्तों की गर्माहट कम होने लगे तो उसे केवल समय, संवाद और अपनापन ही जीवंत कर सकता है। तो श्रोताओं, रिश्तों को बनाए रखें थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी सावधानी से। और अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण रिश्ते पर आधारित हमारा आज का सेगमेंट, कुछ माटी की कुछ कुम्हार की, जिसमें हम दो पीढ़ी को आमंत्रित करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड डॉटर्स की, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये आज के मोबाइल युग में भी कितना एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दादाजी वंशीधर कुंडलिया जी को और पोती कृतिका कुंडलिया को। आइए सुनते हैं हमारे ये विशेष कार्यक्रम, कुछ माटी की कुछ कुम्हार की। कुछ माटी की खुशबू है, कुछ नए सपनों की उड़ान, यही तो है हर पीढ़ी की अपनी अपनी पहचान। दादा दादी की झुर्रियों में जीवन का अनुभव छिपा है, पोती की आंखों में आने वाले कल का सपना बसा है। समय बदलता है, सोच बदलती है, पर रिश्तों की नींव नहीं बदलनी चाहिए। नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे हमारे सेगमेंट कुछ माटी की कुछ कुम्हार की, जिसमें हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दादाजी वंशीधर कुंडलिया जी को और उनकी प्यारी सी पोती कृतिका कुंडलिया को। आज हम उनसे जानेंगे कि एक बहुत बड़े गैप के बाद भी उनकी आपस में बॉन्डिंग कैसी है, वे अपनी सोच के साथ किस तरह से आपस में तालमेल बिठाते हैं। तो हम दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सबसे पहले दादाजी से यानी वंशीधर कुंडलिया जी से उनके बारे में जानना चाहेंगे।
1: बंदरगाह के ऊपर से रिटायरमेंट, यहाँ नजीमाबाद हिमालयन कॉलोनी में मेरा निवास है, अब कई सालों से यहीं पर हम रहते हैं।
2: नमस्कार, मेरा नाम कृतिका कुंडलिया है और मैं अभी अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरी उम्र अभी 20 साल है और अभी मैं अपने दादाजी के यहाँ आई हूँ छुट्टियों में।
0: और सबसे पहले मैं दादाजी से सवाल करना चाहूंगी, आपकी एज लगभग 70-80 के आसपास होगी, तो आज के समय में और आपके समय में आप कितना अंतर देखते?
1: पहले कोई भी हो रिश्ता है, भाई बहन, कोई भी चाचा चाची या कोई भी रिश्ता हो तो उनमें प्रेम संबंध ज्यादा था
0: जी।
1: लेकिन आज जो है वो प्रेम और संबंध नहीं है जो पहले समय में था, वो धीरे धीरे रिश्तों में खटास आ रही है जो कि बदलनी पड़ेगी, जो मिठास लानी पड़ेगी।
0: मैं आपसे अगला सवाल यही करने जा रही थी कि आजकल के रिश्तों में कहीं ना कहीं महत्व कम हो गया है। जैसे पहले के रिश्ते हुआ करते थे, बच्चे बहुत बहुत समय एक दूसरे के पास जाते थे, दादा नानी के यहाँ घर में एक एक दो दो महीने, मतलब उन्हें क्रेज रहता था छुट्टियों का कि छुट्टियां हुई और हम नानी के घर जाएंगे, दादी के घर जाएंगे, तो उन्हें ये। बट आज के समय में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो गया है, क्या आप ऐसा मानते हैं?
1: इस चीज को हम मानते हैं
0: जी,
1: कि पहले से जो है प्रेम भाव था वो कम हुआ है।
0: तो दादाजी आप इसमें किसकी कमी मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें रिश्तों को कम करने में?
1: रिश्तों को कम करने में है कि जो पहले आदमी

0: एक साथ काफी दिनों तक रहता था। आज जो है बच्चा जो है वो पहले ही बच्चे माँ बाप से दादी दादाओं से अलग हो जाता है, उसको वो प्रेम भाव नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए।
1: जी
0: इसीलिए ये मतलब विसंगति आई है। ये है कि टेक्नोलॉजी से ज्ञान तो होता है, हर चीज का ज्ञान है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते इसे, तो जो कि उसका दुरुपयोग भी करते हैं।
1: तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम इस गैप को कैसे दूर कर सकते हैं, इसमें हमारी क्या भूमिका है कि हम बच्चों को थोड़ा सा रिश्तों के बारे में सिखाएं, उन्हें बताएं।
0: सबसे बड़ी चीज है कि
1: जी
0: आजकल जो है छोटे में ही बच्चे दूर हो जाते हैं। अगर बच्चे पहले ये था कि बच्चे काफी दिनों तक जो है माँ बाप दादी दादा के साथ रहते थे, आज
1: हाँ
0: वो बात नहीं है,
1: जी
0: जिससे कि प्रेम भाव
1: कम होता जा
0: कम
1: रहा है।
0: होता जा रहा है। रिश्ते सही रहेंगे तो हर चीज का आदमी को उन्नति
1: जी
0: होगी।
1: क्या आपको लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, यानी आपके पोते पोती, जो नाती हैं, देवते हैं, तो आपकी बात नहीं मानते वो?
0: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है,
1: जी
0: बात मानते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ बात मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जो है कुछ बच्चे जो है जिनको मतलब सही रास्ता नहीं दिखाया जाता, जिनको
1: अच्छा
0: सही रास्ता नहीं दिखाया जाता वो
1: हाँ
0: ऐसे करते हैं, नहीं तो बच्चे सारी बातों को मानते हैं।
1: आज के समय में बहुत सारी शिकायतें सुनी है कि हमारे बच्चे तो सुनते ही नहीं है, हमारे बच्चे तो हमारी बात ही नहीं मानते। तो जब आपकी मैंने बात सुनी कि नहीं, बच्चे बात सुनते हैं, मानते हैं, तो इसका मतलब मुझे ये लगा कि परिवार के संस्कारों की बात होती है ना? जो परिवार अपने बच्चों को जैसा संस्कार देता है, बच्चा उसी तरह का बनता है।
0: हाँ ये तो बात सही है कि
1: जी
0: संस्कार देने की भी जो है संस्कार बहुत जरूरी है। अगर मान लिया बच्चों को संस्कार नहीं मिलेगा, सही रास्ते पे नहीं चलेंगे।
1: बिल्कुल, तो हमारे बड़ों का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। ठीक है, टेक्नोलॉजी में हैं बच्चे, बट हमारी
0: हाँ
1: बात क्यों नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे।
0: हाँ वो जरूर सुनेंगे अगर उनको सही कोई भी अपने बड़ा जो है उसको संस्कार सही देगा तो बच्चे कदापि भी खराब नहीं हो सकते और उस सही बात को सही मानेंगे।
1: बहुत अच्छी बात दादाजी आपने हमें बताई। अच्छा, एक सवाल हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि आप आज की पीढ़ी से क्या सीखना चाहेंगे?
0: जो भी कई बच्चे ऐसे होते हैं कि नई नई टेक्निक में जा रहे हैं सीख रहे हैं, उसका ज्ञान भी हमको जो है उनसे सीखना चाहिए।
1: ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है, हम इसमें बहुत पीछे हैं। ये बच्चे तो पैदा ही इस तकनीकी युग में हुए हैं, तो वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, और कहीं ना कहीं हमें इनसे बहुत कुछ सीखने की
0: सीखना
1: जरूरत है।
0: चाहिए।
1: अब हम कृतिका के पास आते हैं। कृतिका ने दादाजी की सारी बातें सुनी, समझी, और कृतिका को लग रहा है कि सही बात है, ये हम टेक्नोलॉजी में तो हैं, बट हमें कहीं ना कहीं दादाजी किसके अपने परिवार के संस्कारों के साथ रहना चाहिए, दादाजी की मम्मी पापा की बात हमें माननी चाहिए, है ना कृतिका?
2: जी
1: कृतिका, आपको लगता है कि आपकी बात बड़े लोग आसानी से नहीं मानते, क्या ऐसा है?
2: हाँ, ऐसा कई बार होता है कि हम दादी दादी को, नानी नानी को कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, अपनी बात
1: हाँ
2: रखना चाहते हैं, पर वो समझ नहीं पाते।
1: हाँ
2: बट उसी समय हमें ये भी समझना पड़ता है कि हम किस तरीके से अपनी बात रखते हैं उनके सामने।
1: बिल्कुल
2: हम अपनी बात थोड़ी सी तोड़ मड़ोड़ कर रखते हैं तो वो समझ भी जाते हैं।
1: हाँ
2: शायद वो आज की शब्दावली नहीं समझ पाते, शायद वो हमारे जो थॉट्स चेंज्ड हैं, इतना ओपन माइंड है तो वो नहीं समझ पाते। तो हम उसे थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के बता देते हैं तो समझ जाते हैं।
1: समझ जाते हैं वो। आप समझते हैं कि एक जेनरेशन गैप है, तो वो इतने बड़े गैप में थोड़ी सोच का अंतर तो होता ही है, बट हम उनको उनकी लैंग्वेज में बताएं तो वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं, है
2: जी
1: ना?
2: बिल्कुल।
1: अच्छा, आप क्या मानते हैं कि सोशल मीडिया ने रिश्तों को कम किया है या ज्यादा, मानते हो ऐसा?
2: जी ये मैं मानती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया है हमारे पास,
1: हाँ
2: लेकिन तब भी मेरी जो कॉल जाती है दादाजी पे दादी पे तो
1: हाँ
2: महीने में 2-4 बार ही जाती है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं रहती मैं एक्टिव। वहीं पर जो हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हम अभी रहते हैं उन पे हम रील्स भेजते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो मुझे लगता है जैसे हम रिश्तेदारों से थोड़े दूर होते जा रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो हमारे दूर दूर के रिश्तेदार भी हैं उनके साथ भी कनेक्ट रहते हैं,
1: सोशल मीडिया के
2: हम
1: थ्रू।
2: कनेक्ट सबके साथ हैं, पर जैसे पहले होता था कि वो मिलते थे, वो इतना ज़्यादा मतलब उन्हें नंबर याद रहते थे, वो कॉल करते थे, बट ऐसा अब नहीं है।
1: हाँ, तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं, लेकिन रिश्तों को कहीं ना कहीं मजबूत तो इसने किया ही है। पढ़ाई के लिए हमें बहुत दूर जाना है, बट यह कि हम वीडियो कॉल करके अपने लोगों से जुड़े रहते हैं, है? वो जो एहसास होता है हमें मिलता रहता है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हमारे रिश्तों को मजबूती तो देता ही है।
2: जी बिल्कुल।
1: क्या आपको लगता है कि दादा दादी की सलाह आज भी आपके लिए उतनी ही उपयोगी है।
2: जब भी हम किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, जब हमें गूगल भी नहीं बता पाता आंसर्स, तो हम दादा दादी के पास, नाना नानी के पास ऐसे ही जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक चीज है जो हमारे अंदर नहीं है। हमारी जनरेशन में पेशेंस नहीं है, हम वो बहुत ज्यादा लैक करते हैं, हम बैठकर नहीं सोचना चाहते, हमें जल्दी आंसर चाहिए होते हैं। तो वहीं पर दादा दादी चाहे डांट के बिठाएं, बिठा के पहले समझाते हैं, फिर वो उन सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग है उनका। वो ऐसे ऐसे आंसर्स लेके आते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं पाते। वो पेशेंस, वो सलाह जो है, वो आज भी उतनी ही अच्छी और इम्पोर्टेंट है जो पहली होती।
1: आप अगर अपने दादाजी, दादी जी या नाना नानी की कोई आदत को अपनाना चाहें, तो कौन सी अच्छी आदत आपको लगती है जो आप उनकी अपनाना चाहेंगे?
2: जो इस जनरेशन की, मतलब दादा दादी की, अच्छी जनरेशन की जो आदत लगती है मुझे, वो ये लगती है उनका मैनेजमेंट। वो अपने दिमाग में ही सब याद रखते हैं। मेरी दादी जो हैं, उनको अपनी चारपाई पर बैठी रहती हैं, लेकिन उनको किचन में कौन से डब्बे में क्या चीज़ कहाँ पर रखी है, साथ में स्टोर में क्या चीज़ कहाँ रखी है, उन्हें सब याद है। लेकिन हमें उसके लिए एक मैनेजमेंट वो बनाना पड़ता है। हम कॉलेज जाकर BBA इन सब में मैनेजमेंट सीखते हैं, बट वो अपने घरों में चलाते हैं, से बहुत ही अच्छे तरीके से चलाते हैं। तो ये एक बहुत ही वो लगता है मुझे, जो मुझे उस जनरेशन से सीखना चाहिए।
1: जी दादाजी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस जनरेशन से आप क्या सीखना चाहेंगे, कौन सी इनकी ऐसी आदत है जो आप उसको अपनाना चाहेंगे?
0: आजकल के बच्चे जो है नई नई तकनीक से परिचित हैं, और पहले समय में ये तकनीकी कई चीजें हैं नहीं थी। आज जो है नई नई तकनीकें आ रही हैं, जिससे कि बच्चों का विकास हो रहा है, उससे जो है वो हम लोगों को भी इस चीज को बताते हैं कि ये जो है इसी तरीके से विकास हो रहा है, तो इससे उनसे हमें काफी ज्ञान मिलता है।
1: दादाजी की बात हमने सुनी और पोती की बात हमने सुनी, है ना। अब हम आप दोनों से पूछना चाहेंगे कि दोनों एक ही उम्र के होते क्या करते?
2: शायद मैं दादाजी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करती
1: और दादाजी क्या करते?
0: एक दूसरे का तालमेल सही रहता है,
1: सोच एक सी रहती है,
0: एक सोच रहती है
1: जी।
0: उस सोच में जो है विकास भी होता है, हर चीज की तकनीक मिल जाती है
1: जी,
0: तो उसमें कोई किसी प्रकार की झंझट नहीं रहती।
1: अच्छा, परिवार में जेनरेशन गैप को कम करने के लिए हम आप दोनों से पूछना चाहेंगे कि एक फैमिली में हम लोग रहते हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे, है ना, तो उसमें जेनरेशन गैप रहता है भाई, दादा दादी और पोते पोती में हो गया, मम्मी पापा में भी हो गया, तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप दादाजी पहले आप बताएं।
0: एक तो आजकल का जो समाज है
1: जी,
0: वो बिखरा हुआ है। समाज जो है एक साथ रहता था, उसमें तालमेल होती थी। आज हर बच्चे जो भी हो रहे हैं उनके विचार ही अलग हैं, तो इसलिए कोई तालमेल जो है कम, पहले से कम हो गया है। इस तरीके से ये है कि हम लोगों को जो है एक साथ, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे काफी दूर हो जाते हैं परिवार से।
1: हाँ।
0: जब एक जगह पे एक परिवार रहता है तो एक दूसरे की परेशानी को और हर चीज को देखता है
1: जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें एक दूसरे की परेशानी को, मान लीजिए बच्चे हैं, हमें बच्चों की बात को मानना चाहिए, अगर हमें ये नहीं सोचना चाहिए नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं दादा हूँ, तो मैं जो कहूँगा वो सही है,
0: ऐसा कुछ नहीं है,
1: ऐसा नहीं है,
0: ऐसा नहीं है। जब बच्चे अगर सही सलाह देते हैं तो उसको बड़े को भी
1: मानना चाहिए, तभी वो हमारा मान सम्मान करेंगे जी। कृतिका, आप क्या कहना चाहेंगे इस क्वेश्चन में?
2: मेरा ये सोच है इसमें कि जैसे हमारे जो दादा दादी हैं, उनके साथ हम बैठे, हम ज्यादा बैठते नहीं है उनके साथ, तो हम उन्हें बैठ के अपना वो सिखाया। जैसे दादी, उन्होंने भी नया फोन ले लिया है, स्मार्टफोन, तो मुझसे पूछती रहती हैं, बताइए कैसे चलता है, ये कैसे चलता है, रील्स चलानी, तो हम उन्हें सिखा सकते हैं। और उनके पास जो कहानियां हैं, जो उनके पास भंडार है अपने एक्सपीरियंसेस का हो, अपनी पूरी लाइफ का हो, सीखे हो, तो वो हमारे पास नहीं है। तो वो हमें जब बैठ के सिखाते हैं वो सब, उसके बारे में बताते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है, अच्छा आपने ये भी करा है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हमारी दादी और दादाजी भी कभी जवान थे या बच्चे थे, हमें वो वैसे ही दिखे।
1: प्यार और सम्मान देने से जनरेशन गैप कम होता है
2: जी, मुझे लगता है प्यार और सम्मान जो है वो दो कड़ियां हैं जो इन दो जनरेशन्स को ऐसे जोड़ के रख रही हैं।
1: बिल्कुल,
2: बड़े हैं वो जब बच्चों को प्यार करते हैं तो इस जनरेशन को लगता है हाँ ये तो इतना दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, तो सुनते हैं उनकी बातें, समझते हैं, कोशिश करते हैं. जब बच्चे अपने सम्मान पूर्वक अपनी बातें रखते हैं बड़ों के सामने, तो भले ही एक बार को दादी दादाजी को नहीं समझ आ रही होंगी, पर वो देखते हैं हाँ बच्चा इज्जत पूर्वक और सम्मान से ऐसे रख कर रहा है, तो वो सुनते हैं. जब वो सुनते हैं तो समझ भी जाते हैं.
1: बिल्कुल. अच्छा, आपके अनुसार पुरानी सोच और नई सोच का सही संतुलन क्या है?
2: ये जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उनकी थोड़ी कहानियां सुनकर, उनकी बातें सुनकर, और हम गेम्स खेल सकते हैं उनके साथ. ये बहुत अच्छा वो है कि हम उन्हें ऑनलाइन गेम्स नहीं बट उनके गेम्स खेले. जैसे वो कुछ पत्थरों से खिलाते हैं, उनके समय के गेम्स होते हैं, वो बताते हैं कि हम ऐसे पेड़ों पर लटक लटक के चीजें तोड़ते थे, आम वाम तोड़ते थे. तो उनकी बताई हुई जगहों पर जाकर उनसे बात कर सबसे, मुझे लगता है दोनों जनरेशन्स का जो सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट होगा वो होगा बात करना.
1: बात करना, एक दूसरे को समय देना, एक दूसरे के साथ बैठना, उनकी सुनना और अपनी कहना, है ना. और उनके साथ हम संतुलन बना सकते हैं उनको नई टेक्नोलॉजी सिखाकर, नई नई चीजें सिखाकर, उनकी कहानियां सुनकर हम फैमिली में संतुलन बना सकते हैं, है ना कृतिका
2: जी.
1: अब आप दोनों की बात हमने सुनी, आप दोनों के विचार बहुत अच्छे थे, लेकिन आप पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं. हमारा एक रैपिड फायर राउंड होगा जिसमें कृतिका बताएगी दादाजी के बारे में और दादाजी बताएंगे कृतिका के बारे में, तब पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं. तो कृतिका, आप हमें सबसे पहले बताएं कि दादाजी को कौन सी पुरानी फिल्म पसंद है.
2: दादाजी फिल्म्स नहीं देखते, दादाजी गाने चला के रखते हैं.
1: अच्छा, रेडियो पर?
2: रेडियो हर दिन सुबह दादाजी सुनते हैं.
1: पुराने गाने
2: जी, आकाशवाणी शुरू हो जाता है सुबह सुबह दादाजी का.
1: अच्छा,
2: तो वो चलता है पर फिल्म्स नहीं देखते दादाजी.
1: बहुत पुराने गाने पसंद है.
2: हाँ जी.
1: और दादाजी को हीरो कौन सा पसंद है?
2: ये तो मुझे नहीं पता. धर्मेंद्र कौन सा हीरो पसंद है?
0: अमिताभ बच्चन.
2: फिल्म भी आपको अमिताभ बच्चन की पसंद होगी फिर.
1: फिल्म बताए, फिल्म कौन सी पसंद है?
0: तो मैं देखता ही नहीं हूँ.
1: अच्छा, फिल्म देखते. गाना बताए कौन सा पसंद है, गाना या भजन कोई पसंद हो जो अक्सर गुनगुनाते रहते हो दादाजी?
0: कि भजन तो ईश्वर के भजन तो कोई भी हो अच्छा ही है.
1: अच्छा कृतिका, आप हमें बताएं कि दादाजी अपना पूरा दिन टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, किस तरह का रूटीन है उनका?
2: दादाजी के यहाँ जब हम आते हैं तो हम तो पहले परेशान हो जाते हैं.
1: अच्छा.
2: क्योंकि दादाजी सुबह 4 बजे चिल्लाते हैं कि 10 बज गए हैं, ये बच्चे क्यों सो रहे हैं.
1: अच्छा.
2: तो दादाजी सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे ऐसे उठ जाते हैं. फिर दादाजी अपना झाड़ू लेके हर किसी को उठाते हैं.
1: अच्छा.
2: और दादाजी फिर झाड़ू लगाना शुरू करते हैं. और
1: दादाजी को सफाई करना बहुत पसंद है.
2: बहुत पसंद है,
1: घर साफ सुथरा रहे.
2: हाँ जी.
1: हाँ,
2: वो सबको डांटते रहते हैं, घर साफ करो घर साफ करो.
1: बहुत अच्छी बात है.
2: तो यही है दादाजी का. फिर दादाजी खाना खाते हैं और
1: इस तरह से अपना टाइम. हाँ. और आप कितना टाइम देते हो दादाजी को?
2: जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो मैं चलते फिरते दादाजी, मतलब हम पास में ही रहते हैं, एक ही कम, मतलब ऐसे एक ही
1: बातें शेयर करते हैं.
2: तो शेयर करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं,
1: खाना
2: चलते. हाँ जी, सब खाना पीना सब एक साथ करते हैं. बाकी जब हम खाने के लिए टेबल पे बैठ रहे हैं तब भी हम बातें करते हैं. और मैं दादाजी को अपनी तरीके की चीजें सिखाती हूँ कि दादाजी यो बोलिए या ये करिए.
1: अच्छा.
2: तो जो इंस्टाग्राम पे चल रहा होता है या कुछ चल रहा होता है तो मैं वो दादाजी को सिखाती रहती हूँ.
1: तो दादाजी आपकी बात मान लेते हैं?
2: हाँ जी, कभी कभी मान लेते हैं, कभी डांट देते हैं, चुप हो जाओ बैठ जाओ.
1: और आप बताइए मुझे कि दादाजी को खाना को क्या पसंद है, सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, मीठा या नमकीन, और क्या चीज?
2: दादाजी को सबसे ज्यादा मीठा पसंद है पर कोई उन्हें खाने नहीं देता क्योंकि उन्हें शुगर है. तो हमने मतलब नेचुरल मीठा प्रेफर करते हैं कि वही खाएं, पर उन्हें मीठा बहुत पसंद है.
1: चुपके चुपके
2: वो चोरी चोरी चुपके चुपके खाते रहते
1: थोड़ा
2: हैं
1: बहुत.
2: हाँ जी.
1: अच्छा, कपड़े किस तरह के पहनने पसंद है दादाजी को, कलर कौन सा पसंद है?
2: दादाजी को लाइट कलर्स पसंद है, ज्यादा डार्क कलर्स नहीं पहनते. और पैंट शर्ट में रहते हैं.
1: अच्छा. और उनकी हॉबी क्या क्या है?
2: हम बिल्कुल खुल के बोले तो दादाजी को कभी हमें लगता है डांटना हॉबी है.
1: तो डांटेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे.
2: हाँ जी. उसके अलावा दादाजी को अपना सामान संभालना बहुत पसंद है, ये मुझे लगता है कि उनकी हॉबी है.
1: ये चीज हमें बड़ों से सीखनी चाहिए कि अपनी अपनी छोटी छोटी चीजें भी बहुत संभाल कर रखें और वो हमारे आगे चलकर काम आती हैं, है ना, ये छोटी छोटी. अब हम दादाजी से पूछना चाहेंगे, क्या कृतिका को गाने पसंद है या फिल्म पसंद है, और पसंद है तो कौन सी?
0: उसे जो है गाने भी पसंद है.
1: अच्छा. कृतिका गाने गाती है?
0: कभी कभी गुनगुनाती है.
1: अच्छा, अभी कृतिका से सुनेंगे हम, कौन सा गाना गुनगुनाती है ये? अच्छा बताएं कि उसको खाना कौन सा पसंद है, क्या खाती है वो?
0: खाना तो नॉर्मल जो है सभी चीज खा लेती है।
1: अच्छा, या फिर पिज्जा, मैगी और जंक फूड ये?
0: ऐसा हमने मना कर रखा।
1: अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल के बच्चे और पिज्जा मैगी ना खाए ऐसे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। खाती होगी चुरा चुरा के, थोड़ा बहुत चोरी चोरी
0: खाना खाते।
1: लेकिन दादाजी चाहते हैं कि सादा खाना खाए। और कपड़े वपड़े कैसे पहनती है, आपकी पसंद के कपड़े पहनती है या जो भी मन किया?
0: हमारी पसंद के कपड़े।
1: अच्छा, ये आज्ञाकारी पोती है आपकी है। और आप बताएं कि कृतिका की हॉबीज क्या क्या है, उसको क्या पसंद है? रीडिंग करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, पढ़ाई करना?
0: सिंगिंग भी इसे पसंद है।
1: अच्छा,
0: पढ़ाई करना भी पसंद है।
1: अच्छा,
0: उसको इसी चीज में सभी।
1: तो दादाजी के हिसाब से पोती ऑलराउंडर है उनकी, है ना? सब कुछ पसंद है। कृतिका, बहुत दादाजी ने आपकी बहुत तारीफ की है कि सिंगिंग पसंद है, तो आप हमें क्या कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे?
2: जो भी फरमाइश हो, बट मैं जैसे इंग्लिश ही गाने गाती हूँ।
1: हाँ, जो तुम्हें पसंद हो, कोई भी प्यारा सा जो आपको बहुत पसंद है वो हमें गाना सुनाएं।
2: एक शेप ऑफ यू गाना है, तो उसका क्लासिकल वर्जन टाइप है, वो वही आ रहा है मेरे दिमाग में अभी।
1: हाँ, बिल्कुल सुनाओ।
2: तो वो है

0: Follow my good sunny side. Come and now follow my lead. Come and now follow my lead.
1: वाओ कृतिका, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आवाज और बहुत सुंदर आपने हमें सॉन्ग सुनाया. मैं तो बिल्कुल खो गई थी, मैं अपना सेगमेंट ही भूल गई थी कि ये कुछ माटी की कुछ कुमार की है या फिर हम एक सिंगिंग कंपटीशन में बैठे हैं. बहुत सुंदर. और चलिए, आप दोनों से हमने ढेर सारी बातें की. हमें पता चला कि दादाजी ने बहुत अच्छे संस्कार अपनी पोती को दे रखे हैं और इसी संस्कार के तहत वो बहुत अच्छे से अपना आगे बढ़ रही है और इसी तरह से आगे बढ़ती रहे. हमारी बहुत सारी ढेर सारी विशेज हैं कृतिका के लिए. तो श्रोताओं, नई पीढ़ी अगर उड़ना सीख रही है तो पुरानी पीढ़ी को उसे जड़े देना जानती है. जब अनुभव और उत्साह एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब पीढ़ियों के बीच ही दूरियां मिट जाती हैं. आइए ना सिर्फ एक दूसरे को सुने बल्कि एक दूसरे को समझे भी, क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर कहानी तब बनती है जब उसमें कुछ माटी की महक हो और कुछ कुमार की नई सोच. तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि दादा पोती की सोच, उनके बीच तालमेल आपको पसंद आया होगा. और आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतना समय दिया, हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. श्रोताओं, मोबाइल हमें दुनिया से जोड़ सकता है लेकिन अपनों से जुड़े रहने के लिए समय, संवेदनाएं और सच्चा संवाद ही सबसे बड़ा माध्यम है. ये हमने महसूस किया दादा पोती के इस अनमोल रिश्ते में. सचमुच बहुत सच्चा और बहुत ही प्यारा रिश्ता, बस जरूरत है उसे महसूस करने की. आपने सुना अनमोल रिश्तों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम कुछ माटी की कुछ कुम्हार की. आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा. और श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां हमसे कह रही हैं कि हम आपसे विदा लें अगले कार्यक्रम तक के लिए. आप हमें पत्र लिखें और हमें बताएं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा. अपनी शिकायतें और सुझाव आप भेजें हमें इस पते पर. कार्यक्रम परिवार जगत, द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763. और इसी के साथ अपनी साथी ज्योति को कार्यक्रम सम्पन्न करने की दीजिए अनुमति. श्रोताओं नमस्कार.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिवार जगत। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:45 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम लोक धारा के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए भगवती देवी पोखरियाल के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती।
0: किसान भाई सुनेंगे हर माह के अंतिम मंगलवार को शाम 6:05 पर
1: बासमती धान से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं के बारे में।
0: स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से जानकारी लेने के लिए हमारे फोन नंबर हैं
1: 0134123015
0: और हमारा मोबाइल नंबर है 9457072888।
1: बासमती धान की गुणवत्ता युक्त जानकारी लेने के लिए सुनते रहिए
0: हर माह के अंतिम मंगलवार को बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित
1: सजीव फोन इन कार्यक्रम
2: हेलो बासमती।

लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। लीजिए सुनिए भगवती देवी पोखरियाल का गाया ये गढ़वाली लोकगीत।

में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के

0: आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के

0: करने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा से जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं, ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी।

0: लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
2: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। नई फिल्मों से कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हृदय से स्वागत। और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, राजवीर। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाजों में फिल्म धुरंधर से। इरशाद कामिल का लिखा यह गीत है और संगीत है शाश्वत सचदेव का।

अरिजीत सिंह और अरमान खान को अभी आपने सुना फिल्म धुरंधर में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया शाश्वत सचदेवा ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। सिकंदर ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाज़ अरिजीत सिंह की है, समीर का लिखा एक गीत है और धुन है प्रीतम की।

0: अभी आपने सुना अरिजीत सिंह को फिल्म सिकंदर में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया प्रीतम ने। श्रोताओं, अगले गीत से पहले सुनिए ये जरूरी संदेश।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। लीजिए अब सुनिए फिल्म मुंजिया का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं अरिजीत सिंह ने। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा यह गीत है और धुन है सचिन जिगर की।

अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म मुंजिया का ये गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया सचिन जिगर ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म बैड न्यूज से। गीत लिखा है करण औजला ने और यह प्रूफ के संगीत निर्देशन में अपनी आवाज़ दी है करण औजला ने ही।

बैड न्यूज़। इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे करण औजला को, और कार्यक्रम नई फिल्मों से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। चलिए अब आपको सुनवाते हैं नीति मोहन विशाल मिश्रा, शहनाज और साथियों की आवाज़ों में फिल्म गदर 2 का ये गीत, जिसे लिखा है सईद कादरी ने और संगीत दिया है मिथुन ने।

फिल्म गदर 2 में भी आप सुन रहे थे नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज और साथियों को। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने वाले हैं। जोनिथा गांधी के लिखे इस गीत को प्रीतम के संगीत निर्देशन में अपनी आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इस फिल्म में भी आपने सुना अरिजीत सिंह और जोनिथा गांधी को। और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म जवान से। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को अनिरुद्ध रविचंद्र के संगीत निर्देशन में अपनी आवाज़ दी है दीप्ति सुरेश ने।

दीप्ति सुरेश के गाए फिल्म जवान के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 3 बज रहे हैं। हमारी इस सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न हो रहे हैं। अगली प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। हमारी संध्याकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के 15 नए सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की ऋण योजनाएं NMDFC मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसों अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के बारे में। पहले बात करते हैं अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की ऋण योजनाएं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम यानी NMDFC की स्थापना वर्ष 1994 में भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत की गई। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी और जैन को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार शिक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। देश के आर्थिक विकास में राष्ट्रीय विकास एवं वित्त निगमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों युवाओं महिलाओं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लोगों को स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इन निगमों द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिससे लाभार्थी अपना व्यवसाय शुरू कर सके या उनका विस्तार कर सके। प्रमुख ऋण योजनाओं में स्वरोजगार ऋण योजना शिक्षा ऋण योजना महिला सशक्तिकरण ऋण योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्योग ऋण योजना तथा कौशल विकास से जुड़े ऋण शामिल हैं। इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना रोजगार के अवसर बढ़ाना गरीबी कम करना और देश के समावेशी विकास को गति देना है। पात्र लाभार्थी अपने राज्य के संबंधित विकास एवं वित्त निगम जिला उद्योग केंद्र या अधिक

बैंकों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजनाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करें स्वरोजगार ऋण योजना की। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत दुकान, डेयरी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कृषि आधारित कार्य आदि के लिए ऋण दिया जाता है। दूसरी योजना है शिक्षा ऋण योजना। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थी को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि आर्थिक तंगी के कारण उनकी पढ़ाई न रुके। इसके बाद आइए बात करते हैं महिला समृद्धि या महिला सशक्तिकरण ऋण योजना की। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए आसान शर्तों पर ऋण दिया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग ऋण योजना की अगर बात करें तो इसमें छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, सेवा क्षेत्र और अन्य लघु व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कौशल विकास ऋण योजना युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रशिक्षण के बाद रोजगार या स्वरोजगार शुरू करने के लिए इस योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अंत में बात करते हैं कृषि एवं समृद्ध गतिविधि ऋण योजना की। किसानों और ग्रामीण उद्यमों को डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी तथा कृषि से जुड़े अन्य कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है। योजनाओं के लाभों की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है, आसान किश्तों में भुगतान होता है, स्वरोजगार और रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है, महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलता है। इन ऋण योजनाओं का उद्देश्य समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। ये योजनाएं रोजगार सृजन और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बाद आइए अब बात करते हैं मदरसों या अल्पसंख्यकों की शिक्षा प्रदान करने की योजना। शिक्षा श्रोताओं हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों और मदरसों के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं ताकि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। इनमें सबसे प्रमुख है मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा योजना। इस योजना के अंतर्गत मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण और आवश्यक शैक्षणिक संसाधनों की भी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 11 से लेकर उच्च शिक्षा तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। वहीं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत करने वाले मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करती है। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का स्तर बढ़ाना, स्कूल छोड़ने की दर कम करना, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना और अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है। इन योजनाओं का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा, आर्थिक सहायता और समान अवसर प्रदान करना है ताकि वे भी देश के विकास में अपना सक्रिय योगदान दे सकें।

इसी के साथ कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे सुबह रात्रि 10:30 पर। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 10:00। गीत संध्या कार्यक्रम रात्रि 8:00 और एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 8:30 पर। छाया गीत सुनिएगा शाम 6:55 पर। विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर रश्मि कुमारी से वार्ता का विषय होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय महिलाओं का योगदान। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर सुनिएगा पवन वीर सिंह से नरेश पाल सिंह की बातचीत, विषय होगा परंपरागत और आधुनिक कृषि का समावेश। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा मत्स्य पालन के तालाबों का प्रबंधन। युवाणी कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर में यानी 5:15 पर क्रम होगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स, पैसा वसूल, कहानी के उस पार, रहस्य सीरीज का भाग 5 और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम।

लीजिए अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत खेल दर्पण कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात्रि 10 बजे। ये कार्यक्रम हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुति होगी आकाशवाणी देहरादून की। पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे कल रात्रि 10:30 पर। आर्काइव से सुनिएगा नाटक, नाटक का शीर्षक होगा बंदी। ये नाटक हम आपको सुनवाएंगे कल रात्रि 9:30 पर। गीत संध्या कार्यक्रम में फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप कल रात्रि 8 बजे और एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 8:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में कल शाम 7:32 पर सुनेगा तलत अजीज की गाई गजलें। छाया गीत कल शाम 6:55 पर। विविधा कार्यक्रम में कल शाम 6:45 पर सुनेगा मनीषा वर्मा से वार्ता, विषय होगा लोक स्वास्थ्य में पोषण की भूमिका। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर सुनेगा कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला। युवाणी कार्यक्रम में कल शाम 5:15 पर क्रम होगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज दिल से दिल तक, और साथ ही आप सुनेंगे रहस्य सीरीज का भाग 6 और आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में कल शाम 5 बजे अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधारी और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना विषय पर। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सुनेंगे कल दोपहर 2:30 पर तिग्मांशु धूलिया के बने कुछ गीत। लोकधारा कार्यक्रम में कल दोपहर 1:45 पर सुनेगा कुमारी मीना से जौनसारी लोकगीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज और कल के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो हेलो दोस्तों, विश यू अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट अक्षी त्यागी।
1: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें आज की शाम आपके साथ अक्षी के साथ बनी रहूंगी मैं आपकी रेडियो पार्टनर और सखी सहेली वंशिका सोती।
0: वंशिका, आज मंडे है ना? और आज होने वाला भी है धमाल।
1: वो क्यों?
0: अरे बाबा, मंडे है मंडे, और है हमारा मंडे स्पेशल सेगमेंट
1: गपशप अड्डा। और दोस्तों, आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में, सेगमेंट में आप हमसे जुड़ते हैं अपने कॉल्स के जरिए। तो कॉल करने के लिए जल्दी से हमारा पता मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, जो है 9457078288 पर,
0: और बन जाइए हमारे कार्यक्रम का हिस्सा।
1: और अक्षय, जब तक हमारे दोस्त हमारे कार्यक्रम से सेगमेंट के जरिए जुड़ते हैं, तब तक अपने एक और सेगमेंट से जोड़ लेते हैं ना दोस्तों को।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो हमारा भैया जरूरी सवाल है।
1: जी हाँ, बूझो तो जाने का सवाल।
0: जी
1: तो अक्षय, बताओ सवाल क्या है आज?
0: तो दोस्तों, हमारा आज का आपसे सवाल रहेगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी?
1: और इसका सही जवाब आपको लिख भेजना है दोस्तों हमारे फेसबुक अकाउंट के कमेंट सेक्शन, और हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद। और अब चलते हैं हमारे कुछ खास है आज सेगमेंट की ओर। तो दोस्तों, हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक सही योजना होती है, और हर सही योजना की नींव होती है सटीक आंकड़े।
0: इन्हीं आंकड़ों के महत्व को समझा

0: मनाने के लिए हर वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है।
1: दोस्तों, सांख्यिकी हमें बताती है कि देश की शिक्षा, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रोजगार और अर्थव्यवस्था किस दिशा में बढ़ रही है।
0: दोस्तों, हर साल ये दिन एक थीम के साथ मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है
1: अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं से प्रोड्यूस डाटा के उपयोग पर जोर देता है।
0: फ्रेंड्स, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इस दिन विशेष कार्यक्रमों और संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता है।
1: संख्याएं जब सच कहती हैं, तभी विकास की राह बनती है। आंकड़ों की हर एक कहानी देश की नई उड़ान लिखती है।
0: तो आइए साथियों, इस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर हम ये संकल्प लें कि सही जानकारी, विश्वसनीय आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित सोच को अपनाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं।
1: और दोस्तों, अब इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं हमारे अगले सेगमेंट कहानी के उस पार के साथ, जिसमें आज की कहानी रहेगी कानों में कंगन एपिसोड 1, और जिसे प्रेजेंट किया है हमारी साथी अक्षी त्यागी ने।
0: लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा सा धमाल हो जाए, क्यों ना थोड़ा सी डोज दे दी जाए हमारे दोस्तों को बूस्टर की।
1: बिल्कुल,
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
4: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
1: अरे भाई, कहाँ से आ रहा है? स्टेशन के बाहर तो ऐसा खड़ा है जैसे बड़ी कहीं दूर गर्मी की छुट्टी मना के आ रहा है लगता है।
5: अबे यार, क्या गर्मियों की छुट्टी, एक तो मैं यार वैसे इतना कंगाल हूँ, ऊपर से ना यार ये देख, स्टेशन पे ये जो भीख मांग रहे हैं यार, ये मिल जाते हैं
1: तो क्या हो गया? ये तो भाई देख, कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ही ना। अब भाई तेरी इच्छा है, देना चाहता है दे दे, कुछ नहीं देना चाहता मत दे।
5: अब यार यही तो दिक्कत है, कुछ मिले ना मिले मगर ये बद्दुआ जरूर दे के जाते हैं।
3: जी हाँ, मजा आ गया।

तो सो कुछ कहानियां केवल पढ़ी नहीं जाती, वो मन के किसी शांत कोने में उतरकर हमेशा के लिए बस जाती है। ऐसी ही एक अनुपम कहानी लेकर हम हाजिर हैं आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षी त्यागी और आप सुन रहे हैं सेगमेंट कहानी के उस पार। दोस्तों, इस सेगमेंट में हम हिंदी साहित्य की अमूल्य कहानियों को अपने शब्दों में आपके सामने जीवंत करते हैं और आज सुप्रसिद्ध साहित्यकार राधिका रमण प्रसाद जी की मार्मिक कहानी कानों में कंगन, जो शब्दों, भावनाओं और स्मृतियों की इस अनोखी यात्रा पर चलते हैं, जिसमें आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एपिसोड नंबर 1, मासूमियत के कंगन। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना? अरे, कानों में कंगना? सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं, वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जग द्वायु उन्हें छूती नहीं। ये सरल सुंदर सौरभमय जीवन है, जब जीवित रही तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वो पहली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविट कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे, किसे एकटक देखती थी? कौन जाने, अपनी लीला भूमि की स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है? इसे जोती थी, मैं क्या बता सकूं? जो हो उसकी उस बंगी में आकांक्षा अवश्य थी।

0: नरेंद्र के हृदय में जन्म लेता एक ऐसा भाव जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देने वाला था। लेकिन क्या ये प्रेम था या नियति का आरंभ? अगले एपिसोड में जानेंगे योगेश्वर का ये निर्णय जिसने नरेंद्र और किरण दोनों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों सुनना मत भूलिए कल शाम 5:15 बजे कहानी के उस पार।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोटपोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
3: और भाई ये क्या कर रहा है तू? इतनी दोपहर में इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है, क्या देख रहा है ऐसे नोट को ऊपर करके?
4: अरे यार कुछ नहीं, बस ये एक 500 का नोट था, ये देख रहा हूँ कि ये असली है या नकली।
3: क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? अगर असली होता तो कोई छोड़ के जाता क्या? नकली होगा, जाने दे।
4: अरे यार फिर भी देख लेता हूँ, क्या पता असली हो।
3: चल भाई देख ले, कर ले अपनी इच्छा पूरी, लखपति बन जाएगा ना तू तो 500 का नोट चेक करके।
4: अबे चल, तू तो ऐसी बोलता रहेगा। ओ भाई यू तो असली है।
3: असली है?
4: हाँ
3: रख ले अपने पास रख ले।
4: यार वैसे एक बार और अच्छे से चेक कर लेता हूँ।
3: कर ले, ऊपर करके तो तुझे जरूर दिख जाएगा। बस यही तो बात है, 500 का नोट और एक्सरे की रिपोर्ट। बंदा भले उसके विषय में कुछ भी ना जानता हो, पर हाथ में आते ऊंचा करके देखता जरूर है।
1: जी हाँ मजा आ गया।
0: तो दोस्तों इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट क्रैश कोर्स पैसा वसूल की ओर, जिसमें आज हम जानेंगे 5G 4G से कैसे अलग है हमारी रेडियो साथी वंशिका के माध्यम से।

दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा अगला सेगमेंट, क्रैश कोर्स पैसा वसूल। जी हाँ, जिसमें आज हम बात करेंगे 5G 4G से कैसे अलग है। दोस्तों, ये सवाल आपका ही नहीं, हर उस शख्स का था जिसने जब भी 5G के बारे में सुना, क्योंकि सबसे पहले तो फोन को चलाना सीखना ही बड़ी बात थी, फिर ऊपर से ये सोचना कि कैसे नेटवर्क बेसिस पर उसकी स्पीड काम करती है। और भाई, अब आ गए हैं 5G। 5G यानी कि वायरलेस नेटवर्क की फिफ्थ जेनरेशन है। ये 4G नेटवर्क से कई गुना तेज, लेस डिले वाला है, जिससे भारी डेटा फाइल्स को भी पल भर में, यानी कि कुछ मिनट्स में ही नहीं बल्कि विद इन फ्यू सेकेंड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात की जाए इसकी कुछ खासियत की, एवरेज स्पीड 4G की लगभग 10 से 100 Mbps तक, और 5G स्पीड की बात की जाए तो 1 Gbps से 3 Gbps, और Gbps की जो हम बात कर रहे हैं ये है गीगाबाइट्स पर सेकेंड। साथ ही बात करते हैं लेटेंसी, 4G 30 to 50 milliseconds और 5G की 1 millisecond, यानी कि क्लिक करते ही काम हो जाता है। इन शॉर्ट, क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। ये ऑनलाइन गेमिंग और रोबोटिक्स जैसे रियल टाइम कामों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इतना ही नहीं, मेन बात तो ये है कि 5G नेटवर्क एक छोटे से एरिया में बहुत सारी डिवाइसेस को बिना नेटवर्क धीमा हुए जोड़कर रखता है, जबकि 4G नेटवर्क में बहुत सारे कनेक्शंस होने पर डिवाइस स्पीड कम हो जाती है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं इसके कुछ खास यूजेस। सबसे पहले तो ये स्मार्ट सिटीज के डेवलपमेंट में पूरा योगदान देता है। अलग अलग सेंसर्स को आपस में जोड़कर रखता है, और टेक्निकल ट्रैफिक लाइट्स, साथ ही सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। साथ ही ये टेली मेडिसिन जैसी तकनीक, जिसमें दूर बैठा पेशेंट भी अपने डॉक्टर से वीडियो कॉल्स, फोन कॉल्स या मैसेजिंग के जरिए मेडिकल कंसल्टेशन यानी कि चिकित्सा परामर्श कर सकता है, उसमें भी ये मददगार है। एंटरटेनमेंट और एडुकेशन की बात करें तो AR, ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसमें आपके सेंसर्स मोबाइल को सेंस कर लेते हैं आपके आसपास के माहौल को, और आप सोचते हैं जो बात आप थोड़ी देर पहले सोच रहे थे या किसी से फोन पर डिस्कस कर रहे थे, उसी से रिलेटेड कंटेंट या रील आपके

0: स्क्रीन पर कैसे आ जाती है? तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी की वजह से ही है दोस्तों। स्टूडेंट्स को एनाटॉमी यानी कि वास्तविक शरीर रचना को 3D में समझने में मदद मिलती है। साथ ही आप AR और VR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी दोनों का ही अनुभव बिना अटके कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ गए ना अब कि ये 5G नेटवर्क 4G से कैसे अलग है। और हाँ दोस्तों एक खास बात और, ये 5G नेटवर्क के लिए कोई खास या अलग फोन होना जरूरी नहीं है। अगर आपका फोन 4G है लेकिन साथ में वो 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है तो उसमें 5G नेटवर्क जबरदस्त चलेगा। तो आज के क्रैश कोर्स पैसा वसूल में बस इतना ही।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
0: वेलकम बैक दोस्तों। तो बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे हमारे और कुछ खास सेगमेंट्स के साथ। जो अब नेक्स्ट सेगमेंट है वो है रहस्य सीरीज सीजन 2 भूल भुलैया एपिसोड 5, जिसका आलेख और प्रस्तुति सहयोग है मोहम्मद आदिल सैफी की।
2: हाय, मेरा नाम आदिल है, आदिल साथी, और आप सभी लिसनर्स का स्वागत है हमारे रहस्य सीरीज के सीजन 2 में। इस कहानी का नाम है भूल भुलैया और यह है रहस्य सीरीज की 5वीं कड़ी यानी एपिसोड नंबर 5।

और आइए अब जान लेते हैं अब तक की कहानी। राजस्थान के पोखरान में मौजूद हवेली में कुंवर राजवर्धन के अमेरिका से लौटने की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करवा रहे थे उनके पिता राजा गोवर्धन सिंह, लेकिन उनको मन ही मन एक चिंता या कह सकते हैं एक डर सताया जा रहा था। राजा साहब खौफ में थे क्योंकि उन्हें लगातार किसी चीज के होने का आभास हो रहा था। रात के अंधेरे में किसी के सिसकने और चीजों के घसीटने की आवाजों से राजा साहब परेशान थे। इसी सब के बीच वो तारीख आ चुकी थी जिसका सबको इंतजार था, क्योंकि राजा साहब का बेटा कुंवर राजवर्धन अमेरिका से अपनी पढ़ाई करने के बाद इंडिया वापस लौट रहा था। 12 अगस्त सन 2008। उस रात को पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। VIPs और पॉलिटिशियंस भी उस पार्टी में शामिल होते हैं। रात के ठीक 10:12 पर हवेली की बिजली अचानक से कहीं चली जाती है। फिर कुछ देर बाद बिजली वापस आती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो मंजर उन्होंने वहां देखा, कुंवर राजवर्धन और 4 बड़े VIPs वहां से गायब हो जाते हैं। सभी लोग जो वहां पर मौजूद थे वो घबरा जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी पार्टी में और इतने हैवी पुलिस प्रेजेंस के बावजूद भी अचानक वहां से लोग गायब कहां हो सकते हैं। ना तो कोई गाड़ी बाहर गई, ना अंदर आई, फिर कहां गायब हो गए। पूरी हवेली छान मारी गई, लेकिन किसी का भी कोई नामोनिशान नहीं मिला। कई दिन बीत जाते हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। फिर उस सब के बाद हवेली में भटकती आत्मा का जिक्र होने लगता है और एक कहानी सामने निकल कर आती है, जो कि 400 साल पुरानी राजकुमारी के राज के बारे में थी। पुलिस को पता चलता है कि उस हवेली में एक आत्मा है जो भी राजकुमारी की है, लेकिन पुलिस के लिए यह सब भूत प्रेत की बातों को हजम करना मुश्किल था। फिर उसके कई दिन और बीतते हैं और तारीख आती है 18 अगस्त सन 2008। पुलिस की तहकीकात जब हर तरफ से नाकामयाब साबित हो रही थी, तो उनका ध्यान हवेली के उस हिस्से की तरफ गया जहां जाने की सख्त मनाही थी। हवेली के पश्चिम छोर पर एक बहुत पुराना और भारी लकड़ी का दरवाजा था।

दरवाजे पर पिछले कई सौ सालों से ताले जड़े थे। चौखट पर गहरा लाल सिंदूर पुता हुआ था और बुरी आत्माओं को बांधने के लिए काले धागे में कौड़ियां लटकी हुई थी। हवेली में यह अफवाह थी कि 400 साल पहले एक राजकुमारी ने इसी कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी और तब से यह कमरा शापित है। बड़े बुजुर्गों के रोने और मिन्नतें करने के बावजूद भी पुलिस ने किसी की नहीं सुनी और हथौड़ों से उन भारी तालों को तोड़ दिया। दरवाजा एक खौफनाक तरीके से खुला और अंदर जाते ही उनको अंधेरा मिला, चाले, धूल, और वो कमरा बहुत बुरी कंडीशन में था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, लेकिन पुलिस को वहां कोई भटकती आत्मा नहीं दिखे, बल्कि एक ऐसा सच मिला जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। कमरे के कोने में एक पुराना संदूक पुलिस को दिखा। जब उस संदूक को खोला गया तो उसके अंदर से हवेली का एक पुराना और एक गुप्त नक्शा निकला। उस नक्शे ने हवेली का सबसे खौफनाक राज खोल दिया। हवेली के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना मौजूद था और एक पूरी भूलभुलैया बनी हुई थी, जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हवेली के नीचे मौजूद है। पुलिस समझ गई थी कि गायब हुए पांच लोग हवेली से बाहर गए ही नहीं थे, बल्कि वो जमीन के नीचे दफन थे। पुलिस की एक टीम हथियारों के साथ उस गुप्त रास्ते के तहखाने में उतरती है। नीचे पहुंचते ही उन्हें जमीन पर ताजे खून के निशान मिलते हैं। वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता कि वहां क्या हो रहा होता है, क्योंकि अंधेरे में मौत का खूनी खेल शुरू हो चुका था, जहां हर कदम पर जान का खतरा था। अब आपके मन में काफी सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है उस कमरे में और उस बुलबुलैया में कि पुलिस इतना घबरा रही थी, और राजा साहब का बेटा और बाकी पांचों वीआईपीस क्या वहां पर मौजूद थे, क्या होता है कहानी में आगे, ये सब हम जानेंगे रहस्य सीरीज के आगे आने वाले एपिसोड्स में। सो हमारे युवानी प्रोग्राम को सुनना ना भूलें।

0: तो फ्रेंड्स, ये तो सुना आपने अभी रहस्य सीरीज का एपिसोड नंबर 5। और अक्षय, हमारे फ्रेंड्स हम बहुत दिल से वेट कर रहे हैं, पता किस चीज़ का?
1: हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि आज है संडे, जिसका मैंने पहले
0: संडे?
1: ही सॉरी सॉरी मंडे।
0: लो, तुम तो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई
1: हाँ
0: हो, है
1: भाई,
0: ना?
1: मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मंडे है और बहुत दिनों बाद हमारे दोस्तों से मिलने का मौका मुझे मिला है।
0: तो इस मौके को जल्दी से आपके पास लेकर आते हैं और शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट गपशप
1: गपशप अड्डा।
0: अड्डा।

0: हेलो 9457078288।
1: कौन बोल रहा है?
2: ये है गपशप अड्डा।
1: ये है गपशप अड्डा।
3: हेलो।
4: हाँ हेलो फ्रेंड।
3: हाँ जी, हमारे कौन से साथी हमसे पहली बार कॉल में जुड़े हैं आज?
4: जी सबसे पहले आपको प्यार भरा आदाब।
3: आपको भी।
4: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खैम से मोहम्मद दानिश सिद्दीकी बोल रहा हूँ।
3: जी दानिश जी, कैसे हैं आप?
4: बहुत अच्छे मैम, आपके केंद्र से प्रोग्राम सुन लेते हैं जब जब वक्त मिलता है।
3: चलिए बहुत अच्छी बात,
4: प्रोग्राम लगते हैं।
3: अच्छी बात है, आप ही के लिए देखिए प्रोग्राम्स होते हैं तो हमारे श्रोता जब सुनते हैं और अपना फीडबैक देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
4: जी
3: तो आज आपकी पहली कॉल लग गई है ना प्रोग्राम में, तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
4: फिल्म का नाम है ढाई अक्षर प्रेम के और गीत के बोल में दो लफ्जों में लिख दी, कुछ टाइप के बोले सुनवा देना, कुछ सुनने वालों के नाम है मैम।
3: हाँ जरूर बोलिए।
4: जैसे साथ में बड़े भाई साहब तौफीक अहमद सिद्दीकी साहब, आतिक अहमद सिद्दीकी और मोहम्मद कामिल हैं, और ये है मुकेश भाई, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा, अजीत कसाना, और बस यही लोग सुनना चाहते हैं।
3: चलिए दानिश जी, आपकी इस फरमाइश को पूरा करते हैं और आइए आप और हम मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का एक गीत।

0: हेलो
1: हेलो, गुड
0: जी।
1: इवनिंग।
0: गुड इवनिंग सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपका नाम। आपका नाम?
1: जी मैम, मेरा नाम है अनूप कुमार।
0: हेलो। मुझे
1: लगता
0: लगता
1: है
0: है
1: मुझे
0: वंशिका कि हमारे जो साथी
1: कुछ
0: हमारे साथ जुड़े थे उनकी कॉल कट हो चुकी है।
1: हाँ, मेरे को भी यही लग रहा है। मे भी कुछ प्रॉब्लम नेटवर्क में हुई है और
0: जी
1: अचानक से कॉल कट हो गई है।
0: तो कोई नहीं, हम अपने कार्यक्रम को जारी रखेंगे, लेकिन इस गीत के बाद क्यों ना हम आज अपनी फरमाइश का ये गीत अपने दोस्तों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल।

0: जी नमस्ते,
1: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
0: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
1: जी सिसोदिया जी, जैसा आपका हमारे कार्यक्रम में कॉल लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
0: बहुत ही अच्छा लग रहा है, नजीबाबाद कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर सुन रहा हूँ मैं।
1: अच्छा, तो आप हमारे डेली लिसनर हैं?
0: हाँ जी बिल्कुल, रेगुलर लिस्टनर हैं हम, कॉल लगा के बात भी करते हैं।
1: जी, बहुत
0: और
1: अच्छा
0: आप
1: लगा, बहुत अच्छा लगा
0: मोबाइल
1: ये
0: ऐप से
1: जान के सर कि आप हमारे डेली लिसनर हैं। तो फिर आप बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: फिल्म का नाम है हीरो नंबर वन और गाने के बोले सोना कितना सोना है।
1: तो आइए सर, फिर सुनते हैं आपके साथ हम भी ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, कौन बात कर रहे हैं?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: जी केसरी जी, तो कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है दीदी, और आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। तो भोपाल में, मध्य प्रदेश में कैसी गर्मी हो रही है?
1: गर्मी दीदी अब तो नॉर्मल हो गई है बिल्कुल, फिलहाल में बारिश हो गई है 2 4 रोजों से
0: अच्छा,
1: हल्की हल्की। तो
0: बहुत अच्छी बात है। आपके एरिया में बारिश हो रही है, अभी हम लोगों के साइड नहीं हुई है, तो हम वेट कर रहे हैं कब होगी।
1: बस होने ही वाली है दीदी, बस अब मानसून तो आ गए हैं, अब एक आध हफ्ता और लगेगा ज्यादा से ज्यादा आपके
0: जी
1: इधर भी।
0: बिल्कुल। तो आज आपकी कॉल लगी है, तो ये बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: प्रेम प्रतिज्ञा मूवी से है वो, प्यार कभी कम नहीं करना चाहे सितम कर लेना।
0: बिल्कुल, आपको इस गीत को हम जरूर सुनवाएंगे।
1: और कहना चाहेंगे दीदी
0: जी
1: प्रस्तुति आपकी बहुत लाजवाब लग रही है, और 2 4 मित्रों को याद करना चाहेंगे।
0: जी जरूर कीजिए।
1: राम बाबू शर्मा जी हैं, गजराज लोधी जी, मांगीलाल चंदेल जी, भगवान सिंह परमार, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता देवनाथ जी और रमेश प्रजापति जी हैं।
0: चलिए, तो केसरी जी आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं और सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: तो अक्षी, मुझे लगता है अभी हमें कॉल्स को थोड़ा होल्ड पे रखना चाहिए, है ना? क्योंकि हमारा
1: हाँ बिल्कुल, हमारा
0: एक
1: बोझू तो जाने का जो सवाल है वो अभी बाकी है।
0: बिल्कुल, तो हमारा आज का जो 200 सवाल था वो था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? और इसका सही जवाब है देविका रानी।
1: और अब देखते हैं वंशिका कि हमें सही जवाब भेजने वाले कौन कौन हमारे साथ ही शामिल है। हीरामणि वर्मा, जॉन डिक्रिस्टो, फागुन यादव, विजय सोरालकर, जयपाल यादव, रामशरण विश्वकर्मा, निसार सलमानी, मिसबा शमसी, भागवत चौबे लाडला जी, ताज अंसारी, पंजाब राम टेके, मोहम्मद यासिन अंजान, बीपी गौतम। और भी बहुत सारे हमारे साथी इस जवाब के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय कम है और हमें हमारे कॉलर्स जो हैं वो वेट में हैं।
0: बिल्कुल, तो देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन जुड़ रहे हैं हमारे साथ।
1: हेलो
2: हेलो, लजीब आवाज।
1: जी, नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छा हूँ। और मेरा फोन लग गया हेलो लजीब आवाज में, तो मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ।
1: तो ये तो और भी अच्छी बात है कि आपका कॉल लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। तो सर, जैसे शाम हो चुकी है और हमारा कार्यक्रम चल ही रहा है, तो इस शाम आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
2: जी जी बिल्कुल। फिल्म मैं पहले अपना पता बता दूं
1: जी
2: आपको।
1: बिल्कुल, आपका नाम?
2: जी मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ। खजुराहो आपने सुना हो तातगर,
1: जी
2: खजुराहो के पास में है हमारा गांव मनकारी, और छतरपुर जिले में है, मध्य प्रदेश में है।
1: जी सर, तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये जान करके कि आप मध्य प्रदेश से हैं और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
2: जी जी जी जी
1: जी सर, तो फिर कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे सर आप?
2: जी बिल्कुल। फिल्म का नाम है बीबी हो तो ऐसी,
1: जी बहुत
2: और
1: बढ़िया।

0: और गीत के बोल है कि सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। आज के समय पे जो है बहू बेटियों में जो है सासों में बहुत हिंकत आनी होती है।
1: जी जी जी सर, तो डेडिकेट करना चाहते हैं आप किसी को?
0: जी जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको डेडिकेट रहेगा।
1: अच्छा
0: जी। और हमारे मांगीलाल चंदेल जी हैं, दिनकर सिंह जी हैं और कानपुर से पूनम सिंह जी हैं।
1: जी सर, सर समय की थोड़ी सी हमारे पास कमी है, तो चले चलते हैं फिर आपका गीत सुन लिया जाए।

0: तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं हमें आप जरूर बताइए अपने खत के जरिए। खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियां आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर आप सुन सकते हैं। तो जल्दी से दोस्तों आप सभी कॉमेंट्स लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे सभी प्रोग्राम्स आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। इसी के साथ मुझे अक्षी त्यागी
0: और मुझे वंशिका सोती को दीजिएगा कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों के लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स CCI के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया नरेश पाल सिंह की राम राम। किसान भाइयों, क्या हाल चाल हैं आपके? भैया देखिए, आपके हाल चाल बढ़िया होंगे। आप अपना काम धाम जो समय से निपटाते हैं, और हमारे किसान भाई दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, चाहे किसान भाई पशुपालन के साथ अपनी मेहनत करें, या भैया खेत में मेहनत करें, या भाई जो हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो दूसरे व्यवसाय में लगे हैं, चाहे वो मुर्गी पालन है या मत्स्य पालन है, सुकर पालन है, या भाई जो हमारी मधुमक्खियों का जो है मौन पालन है, तो किसान भाई भोर में बसर में उठकर अपने काम में लग जाते हैं और अपने अपने परिवार के साथ जो है परोक्ष रूप से नित्य प्रति अपनी खेती बाड़ी से जुड़े कार्यक्रम में लगे रहते हैं और काम धाम निपटाते हैं सही पे। और किसान भाई को अन्नदाता इसीलिए कहा गया है कि भाई किसान दिन भर खेत में मेहनत करता है, अन्न उपजाता है, दाल उपजाता है, खाद्यान्न उपजाता है, और दूध का उत्पादन भी किसान भाई करते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाई को अन्नदाता कहा जाता है। और भाई अन्नदाता किसान भाइयों के लिए जो हमारी सरकार है, वो भी किसान भाइयों को काफ़ी सम्मान दे रही है, और भाई किसान भाइयों के लिए अनेक कल्याणकारी योजना भी हमारी सरकार जो है चला रही है। और देखिए कितना अच्छा नाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि रखा है एक योजना का, जिसमें किसान भाइयों को जो है एक वर्ष में 6,000 रुपये आप दिए जाते हैं। और भाई इस प्रकार से हमारे किसान भाई अपना समय पर जो जब उनके पास पैसा नहीं रहता है, खाद बीज और ज़रूरत की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और भाई कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं कि भाई जो और व्यवसाय में लगे रहते हैं, और एक व्यवसाय होता है मत्स्य पालन का। तो भैया मत्स्य पालक इस समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, और वो ये कि भैया जो उनके तालाब हैं वो उनका प्रबंधन ऐसे करें कि भाई उनकी मछली आगे स्वस्थ होकर विकास कर सकें, और भाई हमारे जो मत्स्य पालक भाई हैं उनको अधिक लाभ हो। तो भैया जो तालाब होते हैं उनका प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, और मछली जो है इस गर्मी के कारण जो पानी होता है उसकी कमी हो जाती है, और मछली जो है ऐसे कम पानी में जब ज़्यादा मछली हो जाती है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियां जो हैं मरना शुरू करती हैं। तो भाई सर्वप्रथम जो पुराना पानी है हम उसकी जांच कर लें कि वो कैसा है, उसका तापमान कितना है, तो उसमें भाई उसका रंग भी देख लें। जब खरपतवार वगैरह उसमें उग आते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियाँ उसमें बढ़ नहीं पाती। तो मछलियों का जो पानी है हम ये देख रहे हैं कि भैया वो साफ़ रहना चाहिए, और पानी में जब पुराना पानी हो जाए उसमें नया पानी हम मिलाते हैं, ठंडा पानी मिलाते हैं, तो भाई उसमें पोटेशियम परमैंगनेट जिसको हम कहते हैं KMnO4 दवाई, वो भी मिला देते हैं। इससे मछलियों को भी कोई नुकसान नहीं होता और जो हमारा पानी है उसकी अशुद्धियाँ भी कम हो जाती हैं। और भैया साथ में मछली के आहार के लिए आटे की गोलियां और सरसों की खली और जो स्वच्छ जल है उसकी व्यवस्था करें, और कोई परेशानी मछलियों को ना हो इसके लिए भी आप देखें कि पानी की गहराई कम से कम 5-6 फीट रखनी चाहिए हमें। 5-6 फीट से कम की गहराई पानी की यदि हम रखते हैं तो हमारी मछलियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि ताज़ा पानी अपनी मछलियों को मिलता रहे इसके लिए एरेटर की हम व्यवस्था करें। एरेटर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, और भाई पानी का जो पीएच मान है जिससे हम पानी की अम्लीयता नापते हैं, तो पीएच मान जो है 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। और इसके लिए हमारे किसान भाई क्या काम करते हैं, इसके लिए करते हैं चूने का प्रयोग। तो भाई चूने का प्रयोग करके हम अपना जो ज़्यादा हमारा अम्लीय पानी होता है उसको हम थोड़ा सा ऊपर ला सकते हैं, उसकी मात्रा जैसे 6.5 या उससे नीचे अम्लता है तो भैया उसे 8.5 तक या 7.5 तक ला सकते हैं। और जो हमारी मछलियां होती हैं जैसे रोहू है, कतला है, मृगल है और ग्रास कार्प है, इनको ही पालना फ़ायदेमंद होता है। और जो दूसरी छोटी मछलियां हैं या एक तरह से जैसे हमारे खेत में खरपतवार हमारी फसलों के बीच में उगाते हैं, तो ऐसे अवांछित मछलियां भी हमारी जो तालाब होते हैं उसमें कहीं बाहर से या दूसरी जगह से आ जाती हैं किसी भी दूसरे साधन के रूप में, तो भैया ऐसी मछलियों का सफाया भी हमें करना चाहिए या उनका खात्मा, उनके नियंत्रण की बात भी हमें करनी चाहिए। और ऐसी मछलियों का जो छोटी मछलियां होती हैं, नियंत्रण हमारी जो पालने वाली रोहू कतला मृगल और ग्रास कार्प मछली होती हैं, ये भी उनको खाकर नष्ट कर देती हैं। तो किसान भाई इस समय ये ध्यान रखें बस कि हमारी जो मछलियां हैं वो ज़्यादा पानी के तापमान से प्रभावित न हों। और भाई उसमें जल में हमारे जो तालाब है उसमें खरपतवारों का नियंत्रण हो। और मछली के लिए यदि हमारे किसान भाई इसकी जाल इसमें घुमाते रहें, जाल घुमाने से मछलियों की जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है। तो किसान भाई अपने तालाब में जो मछली का जाल होता है जिसमें मछलियां फंसती नहीं है, बस बड़ा जाल होता है जो मछली के व्यायाम के होता है, तो वो बड़ा जाल घुमाते रहें, उसमें मछलियां आर पार निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारी मछलियां अच्छी विकास करती हैं और हमारे किसान भाइयों को लाभ होता है। तो किसान भाइयों, ये थी थोड़ी सी चर्चा मत्स्य पालन के तालाबों का प्रबंधन पर। और तालाब यदि हम नए खुदवाते हैं तो नए तालाब को खुदवाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ की मिट्टी जो है तालाब युक्त होनी चाहिए, यानी कि पानी उसमें संचित हो जाए, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। और दूसरा इस बात का ध्यान रखें कि उन तालाबों को भी हम चूने से, जब सूखा मिट्टी होती है, सूखी मिट्टी होती है, तो उसको हम चूने से भी उपचारित करते हैं और कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं। उसके बाद उसमें पानी भर के और हम अपनी मछलियों के जो बीज होते हैं तो उनको लाकर हम छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि जो तालाब होते हैं उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में हो, पानी का तापक्रम ठीक हो, उसमें घास फूस न हो और कूड़ा करकट न हो, और मछलियों का जो है व्यायाम के लिए आप उसमें जाल चलाते रहें, और मछलियों के आहार की व्यवस्था का आप विशेष ध्यान रखें। तो ये छोटी छोटी बात है मत्स्य पालक भाइयों के लिए। और भाई अब चर्चा को यहाँ पर किसान भाइयों देते हैं थोड़ा सा विराम और सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती।
1: किसान भाई सुनेंगे हर माह के अंतिम मंगलवार को शाम 6:05 पर
2: बासमती धान से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं के बारे में।
1: स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से जानकारी लेने के लिए हमारे फोन नंबर है
2: 0134123015
1: और हमारा मोबाइल नंबर है 9457072888।
2: बासमती धान की गुणवत्ता युक्त जानकारी लेने के लिए सुनते रहिए
1: हर माह के अंतिम मंगलवार को बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित
2: सजीव फोन इन कार्यक्रम
3: हेलो बासमती।

किसान भाइयों ने सुने जरूरी संदेश, और संदेश के बाद भैया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। और मैं हूं आज आपका दोस्त, आपका भाई नरेश पाल सिंह। और भैया देखिए, इस समय अभी आपने संदेश सुने और उसमें बासमती धान का जिक्र आया, तो इस समय हमारे किसान भाई जो धान की पौध उखाड़ रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं, और धान की रोपाई करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और भाई धान के साथ साथ किसान भाई गन्ने की फसल उगा रहे हैं, मक्का की उगा रहे हैं, चारे की उगा रहे हैं, और सर्दियों में जो है हमारी परंपरागत खेती के अनुरूप किसान भाई गेहूं की फसल उगाते हैं। तो भाई देखिए, परंपरागत खेती हमारी तो चलती आ रही है, और परंपरागत खेती के साथ साथ यदि हम आधुनिक कृषि यानी कि वैज्ञानिक कृषि का उसमें समावेश कर लें तो बहुत ही अच्छी बात रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं परंपरागत खेती हमें छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि परंपरागत खेती के बहुत से पहलू ऐसे होते हैं जिसमें अगर हमने वो क्रियाएं छोड़ दी तो हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी, हमारी फसलों की गुणवत्ता खराब हो जाएगी, और उसके जो उत्पाद हैं उनकी भी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमारी मिट्टी की सेहत बनी रहे, मनुष्य का स्वास्थ्य बना रहे, और हमारे पर्यावरण की रक्षा हो, और हमें जो कृषि का उत्पाद मिले उसकी भी गुणवत्ता देखते ही बने। तो भैया ऐसा एक तरीका होता है परंपरागत और आधुनिक कृषि का समावेश। तो भैया आइए आज एक किसान से हम ऐसी ही बात आपको सुनवा रहे हैं। ऐसी बातचीत में आपको हम जानकारी देंगे कि परंपरागत और आधुनिक कृषि का हम समावेश किस प्रकार कर सकते हैं और इसके क्या दूरगामी परिणाम हैं, क्या फायदे हैं। तो आइए बात करते हैं श्री पवन सिंह से और जानते हैं कि

0: परंपरागत और आधुनिक खेती का उन्होंने किस प्रकार से समावेशन कर रखा है।
1: किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे कृषक से जिन्होंने अपनी खेती का श्रेणीकरण कर रखा है, यानी कि तरह तरह की खेती वो कर रहे हैं। परंपरागत खेती, आधुनिक खेती, वैज्ञानिक खेती और जैविक खेती वो अपना रहे हैं और इसके अंतर्गत उन्होंने तरह तरह की फसलें और बागवानी लगा रखी है। और जैसा कि आज का उनसे हमारा बातचीत का विषय है परंपरागत और आधुनिक खेती का मिश्रण, तो सबसे पहले मैं पवन जी से उनका परिचय स्वयं ही जानना चाहूंगा। आपका शुभ नाम?
2: मेरा नाम पवन सिंह है, आलमसराय का रहने वाला हूँ।
1: जी जी, तो पवन सिंह जी, आप ग्राम सराय आलम ब्लॉक और तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर के अंतर्गत आते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कितनी एज के हैं, यानी कि आपकी आयु क्या है?
2: मैं लगभग 50 प्लस एज है मेरी
1: जी। कितने प्रक्षेत्र पर आप खेती करते हैं?
2: लगभग हम लोग 35 या 36 एकड़ के आसपास हम लोग खेती कर रहे हैं।
1: जी जी जी, तो आपका ये परंपरागत या जो आपका खेती का व्यवसाय है पैतृक व्यवसाय?
2: मेरा पैतृक व्यवसाय है, लेकिन मैंने इसमें कुछ थोड़ा सा आधुनिकीकरण करने की कोशिश की है
1: जी।
2: कुछ अपने मन से कुछ नई चीजें बिहार से लेके आए, कुछ अपने आपको एजुकेट किया है, तो उस हिसाब से कुछ अपने खेतों को बांटा हुआ मैंने।
1: अच्छा, आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की?
2: मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ, मैंने मैनेजमेंट से MBA किया हुआ है मैंने
1: जी।
2: और लगभग 15 या 16 साल मैंने जॉब करने के बाद 10 साल पहले मैं अपनी नौकरी छोड़ के आ गया था और अपनी खेती के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर अपनी खेती कर रहा हूँ।
1: तो किस प्रकार की खेती आप कर रहे हैं?
2: यहाँ पर हम लोगों ने, जैसे आप कह रहे थे, डिस्कस हो रहा था आपके साथ, परंपरागत खेती कर रहा हूँ, कुछ आधुनिक खेती कर रहा हूँ। और लगभग मैंने 16 एकड़ में मैंने एक बगीचा तैयार किया है आम और अमरूद का, जिसमें कुछ नाशपाती के पेड़ भी लेके गए हैं। एक लगभग 4 एकड़ के करीब हम एक नया बगीचा तैयार कर रहे हैं जिसमें बेल के पेड़ हैं, लगभग 50-55 पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, कुछ नींबू के पेड़ हैं, उसमें मैंने मिक्स पेड़ लगाए हुए हैं फलों के।
1: जैसा कि मैं अभी देख रहा था कि आप एक अपने इस बगीचे में जो नींबू का है, आम का है और मिश्रित नाशपाती वगैरह का बगीचा है, आप इसमें अभी कुछ जैविक टाइप का स्प्रे कर रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसी उसकी गंध आ रही थी जैसे कि उसमें गोमूत्र मिला हुआ है।
2: हाँ, उसमें क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया कि एक हिस्सा मैंने ऐसे रखा हुआ है जहाँ पर मैं केमिकल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यूरिया, डाया या किसी तरह का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं कर रहे हम लोग।
1: जी जी,
2: तो उसमें हम लोगों ने जीवामृत का यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ साथ नीम का ऑयल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं
1: जी।
2: तो इसी से रिलेटेड जो भी हम लोगों को मिलता है उस तरह का हम लोग यूज़ कर रहे हैं।
1: अच्छा, तो मैं आपसे अब जानना चाहूँगा कि जो जीवामृत है ये क्या चीज होती है, हमारे किसान भाइयों को बताएं और इसका क्या लाभ होता है?
2: जीवामृत हम लोग तैयार करते हैं देसी जो गाय होती है जिसकी ठाट होती है कमर पर, उसके गोबर से, उसके मूत्र से हम लोग मेन चीज तो यही होती है उनका यूज करते हैं। उसके साथ जीवामृत में हम लोगों को कुछ नेचुरल और चीज चाहिए होती है, हमें बेसन यूज करते हैं हम लोग, गुड़ का यूज करते हैं हम लोग, खेत की जो की मिट्टी होती है जहाँ पर हम लोगों ने कभी केमिकल का यूज ना किया हो उसकी कुछ मिट्टी उसमें हम लोग यूज करते हैं, तो उसको हम लोग प्रोसेस करने के बाद हम लोग इस पे छिड़काव करते हैं। इसमें लगभग 8 या 10 दिन लगते हैं हम लोगों को जीवामृत तैयार होने में।
1: अच्छा,
2: गर्मियों में
1: वो कैसे, क्या क्या चीज इसमें मिलाते हैं, किस चीज से तैयार किया जाता है?
2: इसमें हम लोग पानी होता है लगभग 15 लीटर के आसपास, हम गौमूत्र होता है 15 केजी के करीब, हमारा गोबर होता है उसका
1: जी,
2: और लगभग 2.5 किलो मेरा बेसन होता है और 2.5 किलो के गुड़ होता है। इसके साथ जाने के बाद ये लगभग 500 लीटर मुझे जीवामृत मिल जाता है।
1: अच्छा अच्छा, तो कितने दिन में तैयार हो जाता है?
2: ये लगभग हम लोगों का 7 से 8 दिन में, गर्मियों में तैयार होता है, जाड़ों में थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है।
1: अच्छा, ये पौधे की खुराक होता है या कीटनाशी वगैरह के रूप में भी काम करता है?
2: कीटनाशी के लिए तो अलग से तैयार करना होता है, लेकिन ये खुराक होता है। इसके साथ साथ ये जब जमीन पे जाता है तो कुछ केचुए वगैरह पैदा होते हैं जो यहाँ पर अपना काम करते हैं।
1: जी जी
2: हाँ।
1: अच्छा, ये जैविक खेती जो आपने अपनाई है कुछ हिस्से में, तो जैविक खेती की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: जैविक खेती वैसे तो हम पिछले कुछ समय से देख रहे थे, जिस तरह की हम लोग बीमारियां देख रहे हैं और जिस तरह से हम जमीन को देख रहे हैं कि जिस तेजी से खराब हो रही है, तो अब ये पुश्तैनी जमीन है तो ये बचाना मेरा काम है। मेरे दादा परदादाओं से मुझे मिली है, तो ये मेरा काम हो जाता है कि मैं अपनी खेती को, अपनी जमीन को बचा के रखूं। तो बस ये है कि इस जमीन को बचाना है। और एक सुभाष पालेकर, एक बड़े खेती कृषि में बड़ा नाम है, उनसे प्रेरित हुए हैं, उनसे थोड़ा सा सीख के आए हैं हम लोग
1: जी।
2: तो बस यही है।
1: अच्छा, आप

0: वैसे कौन कौन सी फसलों की खेती करते हैं?
1: वैसे तो मैं जब मैं आया तो मैं हम लोगों ने परंपरागत खेती से ही स्टार्ट किया था। जैसे हमारा गन्ने का बेल्ट है
0: जी
1: तो एक हिस्सा मैं गन्ने का लेके चलता हूँ, धान लेके चलते हैं हम लोग, गेहूँ लेके चलते हैं। ये तो मेन हमारी क्रॉप हो जाती है।
0: जी जी
1: उसके साथ साथ अभी पिछले अभी कुछ टाइम से हम लोग कुछ और नई चीजें लेके जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया काला गेहूँ हम लोग पैदा कर रहे हैं
0: जी
1: जो ऑर्गेनिक होता है एक तरह से, उसमें कुछ भी खाद वगैरह लेके नहीं जाते हम लोग। और इसके साथ साथ एक इस बार फिर पहली बार हम लोग कोदो, एक मोटा अनाज होता है
0: कोदो।
1: कोदो कोदो
0: जी जी
1: कोदो कोदो और कुटनी, ये मोटा अनाज है, इनको इनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो
0: अच्छा,
1: देखते हैं कहाँ तक हम लोग सफल होते हैं इसमें।
0: तो कोदो और कुटकी जो आपने बताया मोटे अनाज के अंदर आती हैं, और आपने अभी हमें बताया है कि आपने दिखाया भी था कि इसका जो है आपने पौध तैयार की है, जिस प्रकार से हम धान की पौध तैयार करते हैं, आपका जो है ये हमने देखा कि अंकुरित भी हो गया है कोदो और कुटकी। तो इसकी खेती का कहीं आपने एक्सपेरिमेंट लिया या कोई प्रशिक्षण लिया?
1: प्रशिक्षण तो नहीं, हाँ प्रशिक्षण लिया है मैंने। जैसे मैंने बताया सुभाष पालेकर साहब से, जो अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने उनसे लिए थे, ट्रेनिंग ली थी।
0: जी
1: लेकिन हाँ पर्सनली मैं इसको नहीं देखा इसका बीज भी, बल्कि मुझे बड़ा मुश्किल हुआ। मैंने रायबरेली से मंगाया था इसका बीज भी,
0: जी
1: जो मेरे मित्र हैं जो उस दर की तरफ काम कर रहे हैं उनसे मंगाया, तो पहली बार है, देखते हैं सफल तो होना ही है।
0: जी जी
1: हाँ हाँ
0: अच्छा, इस वर्ष धान की पौध लगा रहे हैं?
1: लगा रहे हैं,
0: लगा रहे हैं। कौन कौन सी प्रजाति का धान
1: बस
0: है?
1: एक ही तरह का प्रजाति का लगाता हूँ मैं, सरबती का मैं बीज लगाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ सरबती लगाता हूँ
0: शब्द
1: मैं।
0: लगाते
1: हाँ
0: हो,
1: हाँ
0: तो वो परंपरागत रूप से आप
1: वो
0: कर रहे हो।
1: परंपरागत रूप से, लेकिन उसमें भी केमिकल, मतलब उसमें भी फर्टिलाइजर नाव के बराबर ही जाता है, बहुत ही नाव के बराबर ही
0: हाँ,
1: जाता है,
0: यानी कि कम यूज करते हैं।
1: बहुत ही कम यूज करते हैं।
0: अच्छा, इसके अलावा जैसे आपका मैं देख रहा हूँ गन्ना की खेती है, तो गन्ने में कौन कौन सी प्रजाति आपने लगा रखी है?
1: गन्ने में तो मिक्स है, क्योंकि 038 जब से गया है तब से हम लोग कुछ गन्ने के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 038 भी है मेरे पास,
0: जी
1: मेरे पास 97.09 है मेरे पास, और 35 गन्ना है, तो कई सारे गन्ने हैं मेरे पास। 97.09 हो गया, 5.09 हो गया।
0: जी जी जी
1: हाँ
0: अच्छा, 35 गन्ना।
1: हाँ 35 भी है, 14 है।
0: अच्छा, जैसे

0: दूरी वो 4.5 फीट के आसपास हम लोग लेके गए हैं।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: लाइन से लाइन,
0: लाइन से लाइन की जो दूरी है 4.5 फीट के पर हम लोग लेके गए
1: जी।
0: तो बस और बाकी का तो वही है।
1: बुआई के समय आप गन्ने में क्या इस्तेमाल करते हैं? बुआई के समय
0: तो हम लोग, मैंने जैसे बताया कि हमें सर्वाइवल भी होना चाहिए, तो सारे खेती में अपनी 35 के 35 नहीं लेके जा सकता जीरो उस पर, तो उसमें हम लोग डीएपी यूज करते हैं, हम लोग यूरिया भी यूज कर रहे हैं उसमें
1: जी,
0: और कुछ गोबर का खाद भी यूज करते हैं
1: जी, जी।
0: नीम की खरी यूज कर रहे हैं आजकल क्योंकि दिक्कत हो रही है फंगस के लिए, हम लोग नीला थोथा यूज कर रहे हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: तो फंगस इस समय आ रहा है या नहीं?
0: उससे पहले हम लोगों ने फंगस का एक तरह से उपचारित कर रखा है सारा गन्ना, हम लोगों ने जैसे मैंने बताया नीले थोते से मैंने ऑलमोस्ट सारे गन्ने में लेके चला गया हूँ मैं उसको।
1: जी जी जी जी। तो किसान भाई जान रहे हैं कि पवन सिंह इनके क्या अनुभव हैं खेती में, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बाहर नौकरी करके उच्च शिक्षा प्राप्त करके और कुछ नया करने की सोच रहे हैं, और प्रत्येक युवा को ऐसा होना चाहिए कि भाई वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि खेती से विमुख होना चाहिए और अपनी जो है खेती को आगे बढ़ाना चाहिए, और ये भी स्वरोजगार की दृष्टि से एक बहुत बड़ा इसमें कदम है। तो पवन सिंह जी, जैसे लोग पॉली हाउस बनाते हैं, तो आपने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया कि पॉली हाउस भी आपको बनाना चाहिए?
0: हाँ, मैं जाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैंने एक अपने लिए टाइम लाइन सेट की हुई है
1: जी।
0: तो अभी लगेगा मुझे, अभी दो तीन साल लगेंगे पॉली हाउस पर जाने के लिए
1: जी,
0: क्योंकि मैं जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस हो रही थी, ऑफ कैमरा भी हम लोग बात कर रहे थे, तो अभी जाएंगे, टाइम लगेगा, अभी लगभग 2 साल हम टाइम लेंगे। इसके साथ साथ मशरूम की खेती की तरफ हम जाने की हमारी प्लानिंग है
1: जी जी। तो मशरूम की खेती में कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है?
0: मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात है कि मेरी वाइफ भी मेरे साथ काम करती है, जबकि वो भी कुछ उन्होंने एमएससी की हुई है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो ऑडिटर है, कंसल्टेंट है, उसके बावजूद वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। वही अभी पिछले कुछ समय पहले मशरूम का एक ट्रेनिंग लेके आई है, दूसरी ट्रेनिंग के लिए भी वो अभी उन्होंने अपना आपको एनरोल किया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी वो नेक्स्ट मंथ वो वाली ट्रेनिंग भी लेके आएंगी
1: जी। अच्छा, ये देख रहा हूँ मैं कि आपने जो है कुछ कुकरबिटेसी और फ्रास बीन, लोबिया जैसी ये फसलें भी लगाई हुई हैं। इसके अलावा आप दलहन की खेती भी करते हैं?
0: दलहन की खेती के दलहन तिलहन दोनों का ही मैं करता हूँ। जैसे अभी मैं एक चीज मैं बताने भूल गया
1: जी,
0: हम लोग सरसों लगाते हैं, सरसों करते हैं, जो कुछ सरसों हम अपने पका लेते हैं, कुछ हम उसको एज ए ग्रीन मैन्योर की तरह यूज कर लेते हैं, उसको जोत देते हैं
1: जी, जी, जी।
0: और अभी मैंने अभी उड़द लगा रहा हूँ मैं, देसी उड़द, मैंने वो भी मैंने बाहर से ही मंगाया है जिसका बीज नहीं मिलता, वो लगा रहा हूँ। एक मैंने कुछ बीज मैंने उसका मंगाया है जो आपका तिल होता है, सफेद तिल है, उसका भी मैं कर रहा हूँ
1: जी, जी, जी।
0: हाँ, और मैं चना तो रेगुलर मैं हर बार लगाता ही हूँ, एक मैंने

0: दलहनी फसल लेनी चाहिए या सब्जी वाली फसल लेनी चाहिए, तो इससे हमारी जो मिट्टी है उसमें खरपतवार का यानी कि नियंत्रण रहेगा। खरपतवार के साथ साथ कुछ कवक जनित रोग हैं उसका नियंत्रण रहेगा, कुछ कीटना जो कीट हानिकारक हैं जो कि एक ही फसल में अंडे देते रहते हैं और उनका जो फसल में जो जीवन चक्र है उनका एक ही फसल में वो आराम से पूरा होता है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही किसान भाइयों को बड़ा लाभ होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐसा किसान भाइयों का कीटनाशी, कवकनाशी और जो शाकनाशी हैं, हर्बिसाइड्स हैं, इनके ऊपर चला जाता है। तो ये आप बहुत ही अच्छी खेती कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे आप गोमूत्र की बात कर रहे थे, तो आपने अपने घर पे कुछ गाय भी पाल रखी हैं?
1: हाँ, मैंने मेरे पास कुछ गाय हैं, बल्कि खास बात ये, मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा,
0: जी
1: जो मैंने गाय पाली हैं वो मैंने खरीदी नहीं है। पिछले कुछ टाइम में जब वो सड़कों पे घूमती थी उनमें से ही मैंने कुछ तीन गाय, तीन या चार गाय मैंने बांध ली थी।
0: जी जी
1: उन्हीं को हम लोग उन्हीं का गौमूत्र, उनका गोबर यूज करते हैं, उनकी सेवा की हम लोगों ने, तो वो वही है हमारा।
0: अच्छा, जो जैसा गाय ने आपने आवारा पशु पकड़ के बांध लिए और उनकी आपने सेवा की, तो क्या जो गाय आपने पकड़ी वो गाभिन भी हो गई?
1: हाँ, कुछ समय जब हम लोगों ने उनको उनको उनके मन मुताबिक हमने उनको खाना दिया, तो उसके बाद वो गैबन भी हुई है। अब तो वो रेगुलर वो नॉर्मल हो गई है
0: जी
1: और वो हर दर साल वो ब्याती हैं।
0: देखिए किसान भाइयों, कितनी अच्छी बात बताई पवन जी ने, और आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं कि जो आवारा पशु घूम रहे थे उनमें से पवन जी ने चार गाय पकड़ के बांध ली और उनकी जो है भरपूर उन्हें पोषण दिया, उन्हें चारा और दाना दिया और वे जो है अपने सामान्य जीवन जी रही हैं और एक अच्छा दूध उत्पादन उनके घर हो रहा है और उससे वो गोमूत्र और जो उसका गाय का गोबर है उसके माध्यम से अपने खेतों में वो जीवामृत जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और जैविक खेती को एक नए आयाम दे रहे हैं। तो पवन जी, मैं अब अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किसान भाइयों को जो है कुछ मार्गदर्शन हो।
1: बस मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि ये जो हम लोगों को धरती मिली है,
0: जी
1: हमारे बाप दादाओं से जो मिली है, मेरे पिताजी से, मेरे परदादाओं को, बस इसको जरा थोड़ा सा हम लोग इसको बचा के रखें, क्योंकि ये हमारी पुस्तकों को पालेगी है।
0: जी
1: तो बेहतर है कि हम इसके साथ थोड़ा सा नरमी बरतें, केमिकल जितना कम हो सके, मैं ये नहीं कह रहा आप बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन जितना कंट्रोल्ड उसमें कर सकते हैं तो वो करिएगा। और हर्बिसाइड का तो मैं ये कहूंगा कि जब हम नलाई गुड़ाई पे हम थोड़ा सा विमुख ना होकर हर्बिसाइड का तो बहुत ही कम यूज करें तो बेहतर होगा। बस आज के लिए इतना ही मैं कहना चाहूंगा, बाकी का अगर मेरे लिए कोई आपको कोई सुझाव चाहिए तो आपके माध्यम से वो मेरे से ले सकते
0: हाँ, तो आपका नंबर, मोबाइल नंबर बता दीजिए किसान
1: हैं।
0: भाइयों को।
1: मेरा नंबर है 9756777626। मैं रिपीट कर देता हूँ, मेरा नंबर है 9756777626।
0: अच्छा, बीच में मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे
1: हाँ,
0: कि जो ये आम का बगीचा है आपका,
1: हाँ,
0: तो ये कहीं इसको जो प्राकृतिक खेती आप कर रहे हैं और कुछ आपने कहा कि मैं गन्ने में भी कुछ जो इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो इसको बेचने का भी आपका आपने कहीं कुछ सोच रखी है कि ऐसा कोई बेचने का जुगाड़ है या कहीं आसपास मंडी है कि आपका जैविक उत्पाद बिकेगा? और जैसे आपके ये आम के पेड़ खड़े हैं, नींबू हैं, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत भारी नींबू और आम आपके आम के पेड़ों पर आ रहा है और नींबूओं पर, तो इनको आप जैसे जैविक तरीके से आप पैदा कर रहे हैं इनको, तो कहीं इनका एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है या कोई ऐसी चीज?
1: हाँ, मिलता है, मार्केट से थोड़ा सा ज्यादा मिलता है मुझे,
0: जी
1: क्योंकि इसके लिए एक अलग कुछ लोग हैं जो इधर अब वो भी जागरूक हो गए हैं, तो वो नेचुरल प्रोडक्ट्स खाना चाह रहे हैं, तो वो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। वो हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पर हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं जो भी मेरे पास सामान होता है, चाहे वो नींबू होता है, आम होता है, या कुछ मेरा गेहूं भी होता है, हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। गन्ना मैंने पहली बार किया है तो गन्ने के लिए भी डिमांड मेरे पास आ रही है, उनके गुड़ के लिए डिमांड आ रही है, तो हम लोगों ने मार्केट धीरे धीरे क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग अपनी मार्केट अलग से।
0: अच्छा, जैसे आजकल FPO,
1: FPO
0: हाँ, जो FPO आजकल बहुत जोर सरकार का भी जोर है और किसान भाई भी अपने FPO बनाकर जो है अपने उत्पाद को FPO के माध्यम से देश में या अपने स्थानीय जगह में नहीं कि विदेश में भी जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आसपास आपके कोई FPO है नहीं है?
1: FPO, मैंने ऑनेस्टली मैं ये कहूंगा, मैं बहुत ज्यादा लोगों से नहीं जुड़ा हुआ FPO टाइप से
0: जी,
1: तो मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं आपको इसके बारे में कोई

0: अधिक जानकारी दे पाऊंगा।
1: हाँ,
0: मैं अभी किसी एफपीओ से नहीं जुड़ा हुआ, अभी जो भी चैनल है वो मेरा खुद का चैनल है जिस पर हम लोग बेच रहे हैं इसको।
1: अच्छा, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ फिल्में कुछ वीडियो वगैरह डालते रहते हैं?
0: हाँ, मैंने एक चैनल बनाया है, मैंने 2 मिनट्स अनफिल्टर्ड के नाम से बनाया है, जहाँ पर मैं अपनी खेती में जो भी काम कर रहा होता हूँ वो छोटे छोटे क्लिप्स बना के मैं डाल देता हूँ।
1: अच्छा अच्छा तो उस यूट्यूब चैनल का नाम
0: हाँ, यूट्यूब चैनल का नाम मेरा 2 मिनट्स अनफिल्टर्ड, 2 मिनट्स अनफिल्टर्ड है मेरा, तो आप जाके देखिएगा और अगर कोई सुझाव देना है तो वहाँ पर दे सकते हैं मुझे।
1: जी जी
0: और कभी मिलना चाहेंगे तो प्लीज हाँ मिलिएगा।
1: जी जी आपने फोन नंबर हमारे किसान भाई को
0: प्लीज
1: बता ही
0: प्लीज।
1: दिया है। तो पवन सिंह जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी,
0: धन्यवाद,
1: इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों ने अभी ये हमारी बातचीत सुनी श्री पवन सिंह से, और इसमें विषय था परंपरागत और आधुनिक कृषि का समावेश। तो किस प्रकार से पवन जी ने अपने अनुभव हमें बताया, हमारे किसान भाइयों को बताया कि परंपरागत के साथ साथ हम आधुनिक कृषि भी अपना कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, और ऐसा ही नहीं है कि हम परंपरागत छोड़ के आधुनिक कृषि अपनाएं तो उसमें भी किसान भाइयों का नुकसान है, उससे हमारी जो है ज़मीन को नुकसान हो सकता है और हमारे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, बल्कि फ़ायदा इसी चीज़ में है जैसा कि आज की बातचीत का निष्कर्ष निकल के सामने आया कि आधुनिक खेती को यदि हम परंपरागत जो विधियां हैं उसमें हम समाहित करके, जैसे परंपरागत में आपने देखा होगा कि देशी खाद के रूप में हम गोबर की खाद खूब डालते थे, सनई ढैंचा अपनी ज़मीनों में गलाते थे, और भदवाड़ के रूप में जो है हम अपनी ज़मीन को जोत जोत कर तैयार करते थे, तो इस प्रकार से हमारे खेतों में केंचुआ भी पैदा होता है और दूसरे जो बैक्टीरिया हैं, लाभदायक जीव हैं, एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं, तो ये सब चीज़ हमारे खेतों में होनी चाहिए, और एक लाभदायक फंगस भी हमारे खेतों में तभी रहती है जब हम अपने खेतों में परंपरागत रूप से कार्बनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई किसान भाई इस बातचीत का भरपूर लाभ उठाएंगे, और भैया लाभ एक और चीज़ से होता है जिसका नाम है मनोरंजन, लेकिन भैया जाइएगा कहीं नहीं, आपका मनोरंजन भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये ज़रूरी संदेश।
3: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
4: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
3: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
4: खुशहाली का नया प्रयोग।
5: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: किसान भाइयों ने सुने जरूरी संदेश, और संदेश के बाद भैया कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। और भाई देखिए कार्यक्रम में अब हमारा कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की ओर है, और अंतिम पड़ाव में हम आपको अपने किसान भाइयों को जरूर ही मनोरंजन से अभिभूत कराते हैं। तो किसान भाइयों ज़्यादा देर न करते हुए आइए ले चलते हैं आपकी थकान उतारने के लिए आपको गीत संगीत की ओर, और सुनते हैं ये श्रवण कुमार के किस्से से प्यारी सी रागनी।

किसान भाइयों ने सुनी रागनी भीम सिंह की आवाज में, और भैया आपका मनोरंजन भी हुआ होगा, लेकिन भाई आपको हमारा कार्यक्रम और रागनी कैसी लगी यह आप हमें बताएंगे अपने पत्रों के माध्यम से या व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से। और भैया व्हाट्सएप संदेश आप हमें भेजना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर जाना पहचाना है, इसको नोट कर लीजिए, हमारा फ़ोन नंबर है 9457072288। जी हाँ, 9457072288। और हमारा जो पत्र लिखने का पता है वही जो कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 246763। तो भैया हमें इस पत्रे पर आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी। और अब अगले कार्यक्रम तक अपने साथी नरेश पाल सिंह को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए रश्मि कुमारी से वार्ता। विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय महिलाओं का योगदान।
1: भारतीय महिलाओं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान का इतिहास नवाचार, दृढ़ता और संघर्ष से बुना हुआ है। जबकि वेदों और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में महिला विद्वानों के संदर्भ मिलते हैं जो काफी हद तक अस्पष्ट हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण गार्गी का है, जो एक प्राचीन दार्शनिक और विदुषी थी। उन्होंने वैदिक काल में राजा जनक के समय आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों पर होने वाले बहसों में भाग लिया। उनकी बौद्धिक क्षमता ने उन्हें प्राचीन काल में विशेष स्थान दिलाया। गणित के क्षेत्र में गणितज्ञ और खगोल शास्त्री लीलावती ने अपनी कृति लीलावती के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। सदियों बाद मुगल काल में नूरजहां, जो मुगल साम्राज्य की महारानी थी, की कहानी भी उल्लेखनीय है। उन्हें खगोल विज्ञान में गहरी रुचि थी और कहा जाता है कि उन्होंने आकाशीय घटनाओं का अवलोकन किया, जिससे उस समय के वैज्ञानिक ज्ञान में योगदान हुआ। भारतीय महिलाओं ने चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सक और विद्वान दोनों के रूप में उत्कृष्ट योगदान दिया है। 16वीं शताब्दी में प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक सुश्रुत ने महिला शल्य चिकित्सकों के योगदान को स्वीकार किया, जो यह दर्शाता है कि प्राचीन समय में भी चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति थी। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, जो 19वीं शताब्दी में जन्मी थी, ने बाधाओं को तोड़ते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका से चिकित्सा की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ। बाद में भारत लौटकर चिकित्सक के रूप में सेवा करने लगी और अन्य महिलाओं को प्रेरित किया। उपयुक्त आधारों पर कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में महिलाओं की वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान में गहरी जड़ें रही हैं और हमें इसे दोबारा पहचानने और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आधुनिक काल में महिलाओं ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भले ही शुरुआती दौर में उनके लिए यह राह आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और लगन से इस क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। जैसे कमल रणदीवे, कोशिका अनुवांशिक और कैंसर अध्ययन। 1963 में कमल रणदीवे ने भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र की बागडोर संभाली, जो भारत के प्रमुख कैंसर अनुसंधान संस्थानों में से एक है। उन्होंने कैंसर के पशु मॉडल विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाई, जो कैंसर के रोगजनक को समझने में महत्वपूर्ण साबित हुए। उनकी टीम द्वारा विकसित मॉडलों का उपयोग ल्यूकेमिया, स्तन कैंसर और ग्रास नली कैंसर के रोग क्रिया विज्ञान में अध्ययन के लिए किया गया था। अन्ना मानी, 1950 के दशक में भारत में राष्ट्रीय नीति आयात प्रतिस्थापना को प्रबल रूप से बढ़ावा देती थी। इसी संदर्भ में मौसम विज्ञानी अन्ना मणि, जिन्होंने 1948 में महाराष्ट्र के पुणे स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में कार्यभार संभाला, ने वायुमंडलीय विकिरण मापने के लिए उपकरण विकसित करने की जिम्मेदारी ग्रहण की। मणि द्वारा डिजाइन किए गए कई उपकरणों में से एक पहला निर्मित ओजोनोसोंड था। इसका व्यापक रूप से भारतीय मौसम वैज्ञानिकों द्वारा वायुमंडलीय ओजोन सांद्रता की निगरानी के लिए उपयोग किया गया था, और इससे प्राप्त डेटा ने 1985 में अंटार्कटिक ओजोन छिद्र की पहचान में सहायक भूमिका निभाई थी। हवा के पैटर्न और गति पर उनके अध्ययनों ने पूरे भारत में पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में मदद की। जानकी अम्माल, उन्होंने गन्ने की एक नई किस्म विकसित की और उन्हीं की वजह से आज हमारी चीनी अधिक मीठी है। जानकी अम्माल एक उच्च कोटि की पादप विज्ञानी थी। उन्होंने गन्ने की एक विशेष रूप से मीठी किस्म को विकसित किया, जो कोई कई तरह की बीमारियों और सूखे की स्थिति में पनप सके। उन्होंने हिमाचल क्षेत्र में पेड़ पौधों के संकरण का गहन अध्ययन किया। उन्हें 1957 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। यह सम्मान पाने वाली वह देश की पहली महिला वैज्ञानिक थी। उन्हें सम्मान देते हुए मैगोनोलिया नाम के पौधे की एक प्रजाति मैगोनोलिया कोबस जानकी अम्माल का नामकरण उनके नाम पर किया गया। वह बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक भी रही। वनस्पति शास्त्र की फाइटोबायोलॉजी, फाइटोजियोग्राफी और क्रम विकास अध्ययन में उनके योगदान को याद किया जाता है। शकुंतला देवी, उन्हें मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनमें कुछ ही सेकंडों में कई जटिल गणनाएं करने की असाधारण प्रतिभा थी। आज उनका नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सबसे तेज मानव गणना का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, जिसके कारण उन्हें मानव कंप्यूटर कहा जाने लगा। उन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज के मात्र 28 सेकंड में 213 अंकों की संख्याओं की सफलतापूर्वक गणना की थी। संख्याओं में उनकी महारत और दक्षता ने उन्हें ज्योतिष में भी हाथ आजमाने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें इस क्षेत्र में भी अच्छी ख्याति मिली। उन्होंने गणितीय युक्तियों और पहेलियों, असाधारण स्मृति और गणनीय क्षमताओं से संबंधित पुस्तकें भी लिखी। असीमा चटर्जी, 40 वर्षों के शोध के बाद उन्होंने मिर्गी और मलेरिया के लिए दवाएं विकसित की। वर्ष 1917 में कलकत्ता के एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी असीमा चटर्जी ने विंका एल्कलॉइड्स पर उल्लेखनीय काम किया, जिसका उपयोग मौजूदा दौर में कैंसर की दवाएं बनाने में किया जाता है। उन्होंने कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फाइटोमेडिसिन के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां हासिल की। अपने शोधों के जरिए उन्होंने मिर्गी और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए कारगर नुस्खे विकसित किए, जिन्हें आज भी दवा कंपनियां बेच रही हैं। वर्ष 1975 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। अदिति पंत, अंटार्कटिक की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला। बीएससी की पढ़ाई के दौरान अदिति को एलिस्टर हार्डी की पुस्तक द ओपन सी मिली, जिसे उन्हें समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1983 में वह और एक और साथी वैज्ञानिक अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों पर कदम रखने वाली पहली महिला बनी। अंटार्कटिका की यात्रा से पहले अदिति को हवाई विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिली और फिर उन्होंने लंदन के वेस्टफील्ड कॉलेज से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान में शोध कार्य शुरू किया। यह अंटार्कटिका के तीसरे और पांचवे भारतीय शोध अभियानों का हिस्सा थी। टेसी थॉमस, जिन्हें भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है, अग्निपुत्री के नाम से भी जानी जाने वाली यह एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक हैं और भारत में मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि परियोजना के लिए डॉक्टर टेली थॉमस को नियुक्त किया था। उन्हें अग्नि 3 मिसाइल परियोजना की सहायक परियोजना निदेशक और 2011 में मिसाइल परियोजना की परियोजना निदेशक बनाया गया था। उन्होंने 2009 में अग्नि 5 मिसाइल परियोजना की निदेशक के रूप में भी कार्य किया था। 2018 में उन्हें DRDO का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठोस प्रणोदक प्रणालियों के क्षेत्र में असाधारण विशेषज्ञता के साथ उन्होंने मिसाइल के लिए पुनः प्रवेश प्रणाली के विकास में योगदान दिया, जो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च तापमान को सहन करने में सक्षम है। इंदिरा हिंदुजा, भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देने वाली पहली महिला ने देश के पहले गिफ्ट बेबी के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया। मुंबई स्थित स्त्री रोग विशेषज्ञ मां बनने की इच्छुक भारतीय महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। उन्होंने GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर तकनीक में भी अग्रणी भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप 1988 में भारत में पहला गिफ्ट शिशु का जन्म हुआ। उन्होंने अंडाणु दान तकनीक भी विकसित की, जिससे एक महिला अपने अंडे दान करती है ताकि दूसरी महिला गर्भ धारण कर सके। इससे भारत में समय से पहले डिम ग्रंथि विफलता से पीड़ित महिलाओं को गर्भ धारण करने का अवसर मिला। विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिसमें 2011 में मिला पद्मश्री पुरस्कार भी शामिल है। राजेश्वरी चटर्जी, श्रीमती राजेश्वरी चटर्जी गणितज्ञ और विद्युत अभियंता थी, जो भारत की प्रारंभिक अभियंताओं में से एक थी। उनके विशेष विषय विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, माइक्रोवेव प्रौद्योगिकी और रेडियो अभियंत्रिकी थे। वह कर्नाटक की पहली अभियंता थी जिन्होंने PhD पूरी की। उन्होंने विमान और अंतरिक्ष यान में एंटीना डिजाइन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। IISc में विद्युत संचार विभाग में व्याख्याता के रूप में कार्यरत भार संभाला। उन्होंने एक प्रयोगशाला भी स्थापित की, जो भारत की पहली माइक्रोवेव प्रयोगशाला थी। परमजीत खुराना को हर मौसम में उगने वाले बीजों के आविष्कार के लिए जाना जाता है। उन्होंने शहतूत, गेहूं और चावल की ऐसी संकर किस्में विकसित की जो सूखा प्रतिरोधी हैं, गर्मी सहन कर सकती हैं और उच्च पराबैंगनी विकिरण क्षमता रखती हैं। इससे उन किसानों को मदद मिलती है जो अपनी फसलों के लिए मौसम पर निर्भर रहते हैं। भारतीय कृषि उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे में उनका यह कदम समाज के लिए और भी उपयोगी साबित हुआ है। ऋतु कड़ीधल, भारत की रॉकेट वुमन व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में कार्यरत एक भारतीय वैज्ञानिक और एयरोस्पेस इंजीनियर हैं। वह भारत के मंगल ग्रह कक्षीय मिशन मंगलयान की उप संचालन निदेशक थी। मंगलयान मिशन में उत्कृष्टता को सम्मान देते हुए बॉलीवुड फिल्म मिशन मंगल बनाई गई, जिसमें भारतीय अभिनेत्री विद्या बालन ने उनकी भूमिका निभाई। मंगलयान इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। इसने भारत को मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बना दिया। उन्होंने मिशन निदेशक के रूप में चंद्रयान 2 मिशन की देखरेख की। 2023 में भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के लिए लक्ष्य रखा और अंततः भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। ऋतु करिधल ने इस मिशन में काम किया और भारत को इस बड़ी सफलता तक पहुंचाया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी केवल लैंगिक समानता से जुड़ा मुद्दा नहीं है, यह समाज और देश की समग्र प्रगति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को गति देने वाली थीम ने विकसित भारत के निर्माण में महिला वैज्ञानिकों और उनके योगदान पर जोर दिया तथा अनुसंधान प्रौद्योगिकी स्टेम क्षेत्रों में उनके प्रयासों को मान्यता दी। इसके साथ परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थान और शासन को भी सुनिश्चित करना होगा कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ें।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया रश्मि कुमारी से वार्ता। विषय था विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय महिलाओं का योगदान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम छाया गीत में। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म संगम से।

0: मुकेश की आवाज़ में भी आपने सुना फिल्म संगम से ये गीत। संगीत शंकर जयकिशन का था और गीत लिखा था शैलेंद्र ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाने से पहले लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाजों में फिल्म महल से। इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म प्रेम पुजारी से ये गीत। इस गीत को संगीत दिया था SD बर्मन ने और गीत लिखा था नीरज ने। इसी के साथ कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज और कल के कार्यक्रम। पहले सुनिए आज के कार्यक्रम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। यह कार्यक्रम हम अपने लखनऊ दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:00 और आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। आइए आपको बता दें कल के कार्यक्रमों के विषय में। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत खेल दर्पण कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात्रि 10:00। ये इस कार्यक्रम में प्रस्तुति होगी आकाशवाणी देहरादून की। आपकी फरमाइश कार्यक्रम कल रात्रि 10:30 पर। आर्काइव से सुनिएगा नाटक बंदी, ये नाटक हम आपको सुनवाएंगे कल रात्रि 9:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव आप सुनेंगे कल शाम 7:32 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री हरि संकीर्तन मंडल नजीबाबाद बिजनौर। वाचन स्वर और संकलन होगा राजवीर का। श्री हरि संकीर्तन मंडल नजीबाबाद द्वारा आयोजित श्री जगन्नाथ छप्पन भोग महोत्सव पर आधारित रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे कल शाम 6:45 पर। छाया गीत कल शाम 6:55 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर सुनिएगा बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला के अंतर्गत प्रायोजित कार्यक्रम। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज और कल के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 हुए हैं। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: I know na.
4: RBI कहता है,
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। महात्मा गांधी के अनुसार, युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार, अयोध्या के श्री राम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई आज अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर रही है।
8: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
7: इस मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि बार एसोसिएशन मामले की CBI की जांच की मांग भी करेगा।
9: हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता ये राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। वकालतनामा दाखिल करने, अब जो की भीड़ है तो इस करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा।
7: सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शील नागो की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में आज 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देकर न सिर्फ उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है बल्कि विरासत को भी संरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीलीभीत समेत प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
10: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक

0: पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
1: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं का यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही।
0: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, साथ ही लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क और पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि ये निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: स्टाम्प विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीव जारी किए गए 4/6/2026 को इस जियो में थोड़ी सी क्रिएटिव न होने के कारण से एक भ्रम किस्ती बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि साथ हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को से हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था जियो उसको हम निरस्त करते हैं।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन देशभर से आए ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदी डैशबोर्ड और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए शी लीप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारम्भ भी किया। इस आयोजन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना देश भर में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। इसके लिए 95,682 करोड़ की अंतरिम राशि स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे समय पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से लागू करते हुए ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। कार्यक्रम में डिजाइन प्रतियोगिता में प्रदेश के अभय गुप्ता और झील गौतम को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कल से UPTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 15,99,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंटरस्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रोहित यादव के भाई राहुल ने कहा कि ये उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स के लिए चुने जाने पर उनके पूरे गाँव में खुशी का माहौल है।
3: इस वाले गेम में क्वालिफाई मार्क था 77 पॉइंट कुछ था एशियन गेम्स के लिए, और वहाँ अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो करके 87.05 किए और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी किए हैं, जिसमें 2 लोग जाते हैं। वहाँ एक नीरज चोपड़ा, उनका ऑलरेडी क्वालिफाई हुआ था डायमंड लीग से, 85 पॉइंट कुछ किए थे, तो यहाँ से रोहित यादव, 2 लोग जाएंगे एशियन गेम्स। हम तो खुश है, पूरा परिवार पहले से इंतजार कर रहा था कि हाँ अच्छा हो, अच्छा हुआ, पूरा गाँव खुश है इस चीज से, क्योंकि काफी मेहनत किए थे उसके पीछे।
0: राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी 2 दिनों में मॉनसून के

0: आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारी ना
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारी ना,
3: और ये
4: मेरी गुड़िया की ना।
5: पर दादी, आपके नाम
6: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए आदित्य कुमार शर्मा से भजन।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आदित्य कुमार शर्मा के गाए भजन, और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अगला भजन।

इसी के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे आदित्य कुमार शर्मा के गाए भजन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़ का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का पहला गीत श्रोताओं लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म दाग से।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में बने साहिर लुधियानवी का लिखा गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म दाग से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजों में फिल्म महबूबा से। संगीत आर डी बर्मन का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

मोहम्मद अजीज की आवाज में भी आपने ये गीत सुना जिसे हमने लिया था फिल्म नगीना से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शोला और शबनम से। आवाजें हैं अमित कुमार और कविता कृष्ण मूर्ति की। संगीत बप्पी लहरी का है और गीत लिखा है अनजान ने।

अभी आपने सुना फिल्म शोला और शबनम से ये गीत, और इस गीत के बाद लीजिए अब पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म सिर्फ तुमसे। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार शानू की, संगीत नदीम श्रवण का है और गीत लिखा है समीर ने।

कुमार शानू और अलका याग्निक के गाय फिल्म सिर्फ तुम के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म चांदनी से कुछ गीत। इस फिल्म के गीतों को संगीत दिया है शिव हरे ने और गीत लिखे हैं आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की युगल आवाजों में।

吃一

श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की आवाज में भी आपने सुना ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चांदनी से कुछ गीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और बबला मेहता की युगल आवाजों में।

सुरेश वाडेकर और नितिन मुकेश के गाए फिल्म चांदनी के इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं पर संपन्न होता है। एक ही फिल्म से कार्यक्रम

0: भी आपने सुने फिल्म चांदनी से कुछ गीत, संगीत शिव हरि ने दिया था और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के 8:45 हुए हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है।

0: चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हो। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: एप्लीकेशन लॉन्च इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रूपये के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद से प्रोत्साहन दिया है, ट्रैकिंग से प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट

0: दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. And now the news in detail. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of Armed Forces, were also present on the occasion. A report.
4: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishishta Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishishta Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishishta Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishishta Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
3: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, "Over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity." Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
5: On the final day of his visit, Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of Indian diaspora there. He also paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park. In a social media post, Prime Minister Modi expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermine, the government and people of Seychelles for their affection. During the visit, Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. During the visit, several MOUs and agreements in areas such as UPI, health agriculture, shipping, space cooperation, extradition and a line of credit were also exchanged between the two countries. With Aman's report, Aparajita Snatak, Akashvani News, Delhi.
3: Government's total commitment to the National Investment and Infrastructure Fund, NIIF, has now reached 60,000 crore rupees. This undertaking shows the centre's investment commitment for infrastructure and other nationally important sectors. The Union Cabinet last week approved an additional investment commitment of 30,000 crore rupees in the fund to accelerate infrastructure investment and catalyse institutional capital into the country. According to the Finance Ministry, the additional investment will be used for setting up of NIIF's second infrastructure-focused fund, which shall be the successor to its first flagship fund with this mandate. NIIF is India's sovereign anchored fund, professionally run and managed by National Investment and Infrastructure Fund Limited. The governments of Haryana and Rajasthan

0: innovation and resilient supply chains. They also explored opportunities to deepen collaboration in manufacturing, startups and emerging technologies. An Indian Army field hospital deployed in earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad has become fully operational. It is providing free round-clock medical services to the people of Venezuela. The Indian Embassy in Venezuela said an Indian medical team comprising experienced doctors has established a camp at the International La Rinconada racetrack in Caracas. The United States and Iran have agreed to pause their exchange of military strikes and allow commercial shipping to resume through the Strait of Hormuz, as President Donald Trump announced a fresh round of talks between the two sides in Qatar tomorrow. Mr. Trump posted on social media that Iran had requested a meeting and that it would take place in Doha without providing further details on the agenda or level of representation. Iran reacted by shooting down the claim, with Deputy Foreign Minister Qasim Gharibabadi saying that while Tehran's consultations with Qatar are ongoing as usual, reports of technical talks in Doha are not confirmed. Meanwhile, direct passenger flights between the UAE and Iran have resumed after a suspension of several months following the regional conflict that began on 28th of February, signaling the gradual restoration of air links between the two countries. India Meteorological Department IMD has issued an orange color warning for very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahi tomorrow. Heavy rainfall is also expected in Orissa, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Vidarbha, Chhattisgarh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. The Met Department further predicted heat wave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh for tomorrow. For Delhi, IMD has forecast a partly cloudy sky tomorrow. Europe continues to experience a record-breaking heat wave, with several countries including Italy, Germany, Poland, Hungary and the Czech Republic recording new temperature highs over the weekend. More than 191 million people in Europe have had to face temperatures of at least 35 degrees Celsius with extreme heat alerts. In Italy, the number of red alert cities in the country continues to increase, with 22 cities put on maximum alert today. Germany, the Czech Republic, Poland and Hungary have also reached record temperatures above 40 degrees Celsius. According to WHO, more than 1,300 deaths across Europe have been linked to extreme heat since June 21st. India's industrial output growth as measured by the Index of Industrial Production, IIP, expanded by 5.1% in May this year on an annual basis. As per the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, growth in the electricity and gas supply sector expanded by 9.9% during the last month. Manufacturing as well as water supply, sewerage and waste management sectors posted a 5.5% growth. Benchmark domestic equity indices ended almost half a percent down today. Sensex fell 372 points to close at 76,728. Nifty also dropped 110 points to settle at 23,946. On to sports now. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. However, the men's team will have to finish as Asia's highest ranked side in the ICC men's T20 rankings by the end of this year to secure direct qualification. The International Cricket Council today confirmed that India, alongside Australia, Great Britain and South Africa, have booked their places in the Women's T20 competition at Los Angeles 2028 Olympics. India's under-19 boys team defeated Hong Kong 3-1 in the quarterfinals of the Asian Youth Championships in Bangkok today. This win has assured team of at least a bronze medal and a direct berth in the next year's World Youth Table Tennis Championships. The Indian boys will now take on top seeds China in the semi-final. In US Open badminton, Indian shuttler Kidambi Srikanth secured the silver in the men's singles after facing defeat in the final against Su Li Yang of Chinese Taipei. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at defense investiture ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of Northeast, Sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब में बहादुरी के एजाजात अता किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकतदारी अब जिद्दत तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। मरकजी काबीना ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी लाने की खातिर सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी है। मगरबी बंगाल असेंबली ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए अवामी तहफ्फुज़ और समाज मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों, ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला में कहीं कहीं शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज शाम मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब के दूसरे मरहले में दिफाई अफवाज और भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते के अहलकारों को बहादुरी एजाजात अता किए। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन, वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा दीगर मरकजी वजरा और मुसलह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सदर जमहूरिया ने इस तकरीब में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, 30 परम वशिष्ठ सेवा मेडल्स, 12 उत्तम युद्ध सेवा मेडल्स और 56 अति वशिष्ठ सेवा मेडल्स अता किए। अति वशिष्ठ सेवा मेडल पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाशने और वाइस एडमिरल आनंद वाई सारदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल्स पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। इसी तरह वाइस एडमिरल संजय वसायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को परम विशिष्ट सेवा मेडल अता किए गए। उत्तम युद्ध सेवा मेडल पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये एजाजात मजकूरा एहलकारों को उनकी गैर मामूली और नुमाया खिदमात के एतराफ में दिए गए। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका 3 रोजा सेशल्स का दौरा निहायत कामयाब रहा और इससे दोनों मुल्कों के रिश्तों में इजाफा होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 50 बरसों से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका तरक्की पर उस्तवार रहे हैं, जबकि आइंदा 50 साल जिद्दत, पायदार तरक्की और इज्तिमाई खुशहाली से इबारत है। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से।
3: अपने दौरे के आखिरी दिन जनाब मोदी ने विक्टोरिया के नवाशक्ति विनायागार मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा की। वहां उन्होंने भारतीय बिरादरी के अरकान से भी मुलाकात की। वजीर आजम ने पीस पार्क में नस्ब महात्मा गांधी के मुजस्मे पर फूलों का नजराना भी पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने सेशल्स के 50वें योम आजादी की तकरीबात में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी, हुकूमत और अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। सेशल्स की नेशनल असेंबली को खिताब करने वाले वो भारत के पहले वजीर आजम बन गए हैं। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन UPI, ज़राअत, जहाजरानी, खलाई ताउन, मुलजमान की हवालगी और लाइन ऑफ क्रेडिट समेत मुतअद्दिद शोबों में मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। न्यूज डेस्क से उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में हुकूमत हिंद की मजमूई सरमायाकारी अब 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये इकदाम मुल्क में बुनियादी ढांचे और कौमी अहमियत के हामिल दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। पिछले हफ्ते मरकजी काबीना ने मजकूरा फंड में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी थी ताकि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में सरमायाकारी में तेजी लाई जा सके और मुल्क में घरेलू और बैन अलाक्वामी इदारा जाती सरमायाकारों को रागिब किया जा सके। वजारत खजाना के मुताबिक ये इजाफी रकम सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF के बुनियादी ढांचे पर मरकूज दूसरे फंड के क्याम के लिए इस्तेमाल की जाएगी जो साबिका अहम फंड की जगह लेगा। सनअती पैदावार के इशारिये IIP के मुताबिक मई 2026 के दौरान भारत की सनअती पैदावार में सालाना बुनियाद पर 5.1% का इजाफा हुआ। इससे कबल अप्रैल में सनअती पैदावार की शरह नमू 4.9% थी। मई के आदादोशुमार अप्रैल के आदादोशुमार के बाद जारी किए गए हैं जो कि नए बुनियादी साल 2022-23 के तहत असर नौ तश्कील शुदा IIP सीरीज के पहले आदादोशुमार थे जिसमें जदीद तरीन मसनूआत की फहरिस्त वजन और मुख्तलिफ शोबों की ज्यादा जामे शमूलियत शामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली ने आज मगरबी बंगाल अवामी तहफ़ और समाजी मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में अमन अमान कायम करने के से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दी। मजकूरा बिल की हिमायत में 176 वोट हासिल हुए जबकि मुखालफत में 41 वोट पड़े। वहीं 20 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस बिल के तहत ऐसे अफराद को जिनकी समाज मुखालिफ सरगर्मियों से आवाम की सलामती अमन अमान और नज्म व नस्क को खतरा लाहक हो सकता हो उन्हें एहतियाती तौर पर ज्यादा से ज्यादा 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। हुकूमत के मुताबिक इस कानून का मकसद समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों पर काबू पाना उन्हें सख्त सजा देना और उनकी साजिशी मंसूबा बंदी को नाकाम बनाना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान की हुकूमत ने आज नई दिल्ली में जमुना आबी प्रोजेक्ट की तामीर और उस पर अमल दरामद के लिए एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर बात करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस मफाहमत नामे से हरियाणा और राजस्थान के लोगों को तकरीबन 3 दहाइयों से दरपेश पानी के मसले का हल हो गया है। उन्होंने कहा कि ये मुआहिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उसूल मुजाकिरात के जरिए हल की एक बेहतरीन मिसाल है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस मुआहिदे के तहत अगले माह से अक्टूबर तक 3 जेर-ए-जमीन पाइपलाइंस के जरिए यमुना कनाल से राजस्थान को तकरीबन 580 मिलियन क्यूबिक पानी मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पाइपलाइन से दोनों रियासतों के आवाम को पीने का पानी मुहैया हो सकेगा। इस दौरान जल शक्ति के वजीर CR पाटिल ने कहा कि इस मुआहिदे के तहत मानसून के मौसम में राजस्थान के हिस्से का पानी हथनी कुंड बैराज से वेस्टर्न यमुना कनाल के निजाम के रास्ते बिछाई गई जेरे जमीन पाइपलाइन के जरिए फराहम किया जाएगा।
4: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बेरा से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा जिससे चुरू सीकर झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: दिल्ली काबीना ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल EV पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होने वाले 4 साला मरहलेवार रोल आउट के लिए मुकर्रर कसीर जहती फ्रेमवर्क 31 मार्च 2030 तक कौमी दारुल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर कार्बन के सिफर इखराज की तरफ मुंतकिल करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बड़े मालियाती इखराजात का अहद करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक तहकीक और तरक्याती प्रोजेक्टों की कारकर्दगी जवाबदेही और बरवक्त अमलावरी के लिए DRDO DFP 2026 को मालियाती इख्तियारात का एक वफ जारी किया। इस मौके पर जनाब सिंह ने कहा कि DFP 2026 दिफाई अफवाज में तहकीक और तरक्की के एक निजाम से निकलने वाले निजाम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी की तेज तर पैदावार और शमूलियत में सहूलत फराहम करेगा। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि हुकूमत ने बुनियादी सानवी और तीसरे दर्जे की तिब्बी सहूलती मराकज में तौसी करके

0: जनाब गोयल ने कहा कि उन्होंने वसी तर तिजारत, सरमायाकारी, सनती तआवुन और लचकदार सप्लाई चेन्स के जरिए भारत यूनान इक्तिसादी शराकतदारी को मजबूत करने पर तबादले ख्याल किया। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर फौजी हमले को आर्जी तौर पर रोकने और आबनाए हुरमुस से तिजारती बहरी जहाजों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुजाकिरात का एक नया दौर कल कतर की राजधानी दोहा में होगा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान ने मीटिंग की दरख्वास्त की थी और ये मीटिंग दोहा में होगी, ताहम उन्होंने मुजाकिरात के एजेंडे या दोनों ममालिक की नुमाइंदगी की सतह के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। ऑपरेशन एमिस्टेड के तहत जलजले के मुतासिर वेनेजुएला में तैनात भारतीय फौज का फील्ड अस्पताल मुकम्मल तौर पर फाल हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम कर रहा है। वेनेजुएला में भारतीय सिफारत खाने ने कहा कि तजुर्बेकार डॉक्टरों पर मुश्तमिल भारतीय तिब्बी टीम ने कराकस में इंटरनेशनल ला रिंकोनाडा रेस्ट्रिक पर एक कैंप कायम किया है। उसने कहा कि मेडिकल कैंप अब मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है और खिदमात 24 घंटे खुली रहती है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और माहे में कल शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले दो रोज के दौरान उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली टीमों में शामिल हो गई है। ताहम मर्दों की टीम को बराह रास्त क्वालिफाई करने के लिए रवा साल के अख्ताम तक ICC की मर्दों की T20 की रैंकिंग में एशिया की सबसे आला दर्जे की टीम बनना होगा। बैन अलावा क्रिकेट काउंसिल ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया और जनूबी अफ्रीका ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों में खवातीन T20 मुकाबलों में अपनी जगह यकीनी बना ली है। US ओपन बैडमिंटन में भारतीय सरकर्दा खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में चीनी ताइपे के सू ली यांग से हार गए और उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। इस हार में BWF के खिताब के लिए श्रीकांत के इंतजार को और बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्होंने 2017 में BWF सुपर सीरीज के दौरान फ्रेंच ओपन में अपना आखिरी बैन अलावामी खिताब जीता था। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब में बहादुरी के एजाजात अदा किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकतदारी अब जिद्दत तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। मरकजी काबीना ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी लाने की खातिर सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी है। मगरबी बंगाल असेंबली ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए अवामी तहफ्फुज़ और समाज मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों, जैली हिमालयाई बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं।

0: वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत एमएसएमई क्षेत्र है। एमएसएमई न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम भारत विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली है, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331 0481 या 2371 7117, 2371 7106 या 2331 4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और एमएसएमई क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई की है वो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एमएसएमईज के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
0: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए
0: जी।
1: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो है वहां उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है तो तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं
0: जी।
1: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने दी
0: है।
1: और 2023 में एडिशनल 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें देनी थी, और 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था हमने 3.5 साल में ही 10,00,000 करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं। तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण
0: उपलब्ध हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता है।
1: इसमें दो बातें मैं और बताना चाहूंगा, पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10,00,000 रुपए थी, तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं, इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है। तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं।
0: जी, बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
3: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है तो वो आम आदमी की होती है, पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो ग्राहक कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
0: जी।
1: आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं। पहला ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है और ये हमारे एक्ट के तहत, MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात ये है कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
0: अच्छा।
1: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपए है और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में पता नहीं होता तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं। तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी MSME एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया CGTMSC का जरूर हवाला दें ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा प्राप्त
0: कर सके, बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो CGTMSC जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहां तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है, जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉर्पोरेट कंपनीज की बात करते हैं तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
1: देखिए, जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है, ये हमारे GFR के अंदर ये चीज निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है, तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या MSMEs की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को, उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ
0: जी। हम चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
4: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
4: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: जी
4: जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है MSME के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो कितने परसेंट उसमें ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
0: जी
1: देखिए, जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, RBI की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है, वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं, और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफी कम रहती है। ये एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8-10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है, तो ये आप हमारे CGTMSC का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप प्रोसेसिंग में हैं तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा।
0: मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
5: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्कार,
5: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान
0: जी।
5: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न हैं कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी सभी लोगों को पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए, थैंक यू।
1: राशिद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये 3 श्रेणियां हैं MSME में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस है, और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगा कि ये डेफिनेशन एमएसएमई की हमने पिछले साल रिवाइज की थी और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया है। और इसका पर्पज ये है कि बहुत से हमारे एमएसएमई इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एमएसएमई का स्टेटस खो देंगे और ये जो बेनिफिट एमएसएमई के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा।
0: जी हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से विपिन जी।
6: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार
6: मैम, मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग है जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
1: देखिए आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूंगा, शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
0: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस लिहाज से?
1: जी मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 एमएसएमईज हमारे साथ पंजीकृत थे, और ऐसे बहुत से एमएसएमईज थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ, आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ही हम मानते हैं कि एमएसएमई जो है वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट है, और काफी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज थ्रू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है? तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है, तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए 0 स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है, तो वो एसएमए 1 स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया, तो वो एसएमए 2 स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया जाता
0: है। और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
1: देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स, तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफी मजबूत रही है, और उसका एक रीजन ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है, वो भी काफी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो है वो क्लीन चले। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं तो उसमें आपको सहायता दी जाती है।
0: हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
7: जी मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
7: और जो एक्सपर्ट साहब हैं उनका भी नमस्कार।
1: नमस्कार।
7: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नए और इनमें जो लोग काम करते हैं तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेज इनमें एमएसएमई में कितनी निर्धारित करी गई है जी? और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए कुछ के जो मजदूर काम करते हैं इनमें उनको और वेलफेयर स्कीम्स कैसे होती हैं?
1: देखिए जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती हैं। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड हैं आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनकी अनुपालना करनी होती है और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग की एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं 20 लोग हैं तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो हैं वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
0: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, कोई हेल्पलाइन नंबर है जहाँ?
1: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमने ये देखा मंत्रालय के पास, हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशन की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
0: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
8: जी
0: नमस्कार, सवाल पूछें।
8: जो लघु ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन्न हो चुके हैं, अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
1: जो आपने प्रश्न पूछा है मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफी संख्या इसकी बढ़ी है, 1,65,00,000 से अब 8,70,00,000 से ऊपर हुए हैं और हमारे एमएसएमईज जो है वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि एमएसएमईज की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। अभी जो हमने मेंशन किया अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है ट्रेड्स, जो कि आरबीआई रेगुलेटेड है, तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3,00,000 करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है

0: या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1-800-1806-7-63 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी
2: हेलो।
1: जी हाँ, अपना सवाल
2: हाँ
1: पूछें
2: हाँ नमस्ते मैडम।
1: जी।
2: हेलो।
1: जी हम सुन पा रहे हैं, जल्दी से सवाल।
2: अच्छा, एक्चुअली हमारा ना बुटीक है
1: जी
2: सिलाई का, तो उसमें हमारे पास दो कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है? फ्लैट्स घर का है मतलब।
0: बिल्कुल, आपको लोन मिल सकता है। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
1: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि MSME को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
0: जी बिल्कुल, MSME को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे MSMEs को मिलता है। और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सके, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये दो एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनी, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं, रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
0: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप MSME में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था, ये पोर्टल फुल्ली वॉलंटरी है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी API बैकिंग है जिसके अंदर हम GST, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है, इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी, ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं।
1: जाते जाते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था, 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था, 2.5 साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं, 17 लाख लोगों को ₹15,000 का टूल किट प्राप्त हो चुका है, 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी,
1: तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं MSME। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद, अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़ का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जैसा कि हम नाम से समझ गए हैं, कार्यक्रम है भूले बिसरे गीत। और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं वो चुनिंदा गीत जिन्हें कहीं ना कहीं हम कम सुन पाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे इस संगीत की दुनिया में कहीं गुम से हो गए हैं, कम सुने जाते हैं। और इस कार्यक्रम का मकसद ही है हमारे उन गीतों को लेकर आना जो आप कहीं ना कहीं कम सुनते हैं। जी हाँ, और भूले बिसरे गीत में आज का हमारा जो पहला गीत है, इस कार्यक्रम का पहला गीत है, वो हमने फिल्म कश्मीर की गली से लिया है। श्रोताओं, गीत कश्मीर की गली के बहुत ज़्यादा सुपरहिट हैं और सभी लोग सुनते हैं। काफ़ी सारे ऐसे गीत हैं जो बहुत ज़्यादा सुनाए जाते हैं और काफ़ी सारे ऐसे गीत हैं जो सभी को याद भी होंगे। और इसी फिल्म का ये गीत जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम सुना जाता है, जो गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। श्रोताओं, जिंदगी में वही इंसान सबसे अमीर होता है जिसके पास प्यार, अपनापन और सच्चे रिश्तों की दौलत होती है। धन दौलत तो वक्त के साथ बदल सकती है, लेकिन मोहब्बत का खजाना हमेशा साथ रहता है। ऐसी ही खूबसूरत भावना को अपने मधुर शब्दों और सुरों में पुरोता है ये खूबसूरत सा गीत। गीत है ये दुनिया उसी की, जमाना उसी का। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की जादुई आवाज में ये नगमा।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और अगला गीत हमारा हमने लिया है फिल्म राजकुमार से, स्वर मोहम्मद रफ़ी का ही है। श्रोताओं, समय के साथ लोग भी बदलते हैं और रिश्तों के मायने भी बदल जाते हैं और दुनिया का रंग रूप भी, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हर दौर में अपनी सच्चाई और गहराई के कारण हमेशा दिलों में बसे रहते हैं। रंग बदलती दुनिया का यही तो दस्तूर है, रंग बदलती दुनिया का यही तो दस्तूर है, हर चेहरे के पीछे कोई ना कोई फितूर है, मगर सच्चे एहसास और बेहतरीन गीत कभी नहीं बदलते। पेश है अगला सदाबहार नगमा इस बदलती दुनिया में।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म राजकुमार से ये गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, प्यार की पहली नज़र का जादू कुछ ऐसा होता है कि दिल अनजाने ही सही किसी का हो जाता है। मुस्कुराहटों में मिठास घुल जाती है और हर धड़कन एक ही नाम गुनगुनाती है। ऐसे ही मासूम और चुलबुले एहसासों को समेटे हुए लेकर आए हैं हम अपने कार्यक्रम का अगला गीत। नजरें मिली तो दिल ने एक नई कहानी लिख दी। नजरें मिली तो दिल ने एक नई कहानी लिख दी। मुस्कुराहट ने हर खामोशी को जुबान दे दी। श्रोताओं, मोहब्बत के इसी प्यारे एहसास को लेकर हाजिर है ये अगला गीत। ओ छलिया रे छलिया, मन में हमार तेरी नजर बस गई। जी हाँ, और ये गीत गाया है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों ने। फिल्म का नाम है गंगा जमुना।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में सुना आपने ये गीत जिसे हमने लिया था फिल्म गंगा जमुना से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। और श्रोताओं, जिंदगी का सफ़र अकेले ज़रूर शुरू होता है, लेकिन रास्ते में कभी कोई अपना हमसफ़र मिल जाए तो मंजिल और भी हसीन लगती है। और जब मौसम भी जवां हो तो दिल अपने आप गुनगुनाने लगता है। मौसम ने छेड़ी है दिल की सरगम, मौसम ने छेड़ी है दिल की सरगम, हवाओं ने दिया है प्यार का पैगाम। और श्रोताओं, ऐसे ही सुहाने लम्हों को सुरों में सजाता है कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म गोपी से।

ये गीत श्रोताओं आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे हमने लिया था फिल्म गोपी से। और श्रोताओं, जिंदगी एक सफर है और हर उम्र का अपना अलग ही मजा है। जवानी वह पड़ाव है जहां सपनों की रफ्तार भी तेज होती है और दिल की धड़कनों में नई उमंगें भी शामिल हो जाती हैं। जब दिल में उमंग हो, चेहरे पर मुस्कान हो और जिंदगी हर पल नया गीत गुनगुनाए, तो समझिए जवानी अपनी पूरी रफ्तार पर है। और इसी रफ्तार और मस्ती का जश्न मनाता है ये गीत। श्रोताओं, वक्त की रेल कभी नहीं रुकती, इसलिए हर खूबसूरत पल को जी लेना ही जिंदगी की असली खूबसूरती है। और इसी संदेश के साथ पेश है मस्ती और ऊर्जा से भरपूर ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म कुली से। आवाजें हैं शब्बीर कुमार और अनुराधा पौड़वाल की।

आकाशवाणी नजीब आबाद से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म आम्रपाली से लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, इंतज़ार का हर पल अपने साथ ढेर सारी यादें लेकर आता है। जब कोई अपना दिल के बहुत करीब हो तो रातें भी उसी की यादों में कट जाती हैं और हर धड़कन उसी का नाम दोहराती है। ऐसे ही प्यार और इंतजार के खूबसूरत एहसास को सुरों में पिरोता है ये अगला गीत। यादों की शमा जब दिल में जलती है, यादों की शमा जब दिल में जलती है, हर रात चुपचाप करवटे बदलती है। और श्रोताओं, इस मोहब्बत की इसी मीठी तड़प को बयां करता है ये हमारा अगला गीत।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म आम्रपाली के इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है पत्र और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़ का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म सड़क से।

0: अनुराधा पौड़वाल और मनहर उदास की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म सड़क से ये गीत, और इस गीत को सुनना चाहते थे हमारे ये सभी श्रोता। गांव उगाला, जिला अम्बाला, हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनने की फरमाइश भेजी थी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध ने इसी गीत को सुनना चाहते थे। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की थी। जिला अमृताबाद, ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी ने। मोहल्ला हरवायान, शेरकोट जिला बिजनौर से ये मैसेज हमें किया था मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सास दरानी और हिना कौसर ने। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी थी नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहम और इन्हीं के साथ में मोहम्मद आलम हाशमी ने इसी गीत को सुनना चाहते थे। धनोरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा भी यही गीत सुनना चाहते थे। और इसी गीत के लिए हमें मैसेज किया था मोहल्ला बरादरी महमूद खा रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोज मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी ने। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव और अंशिका यादव, इन्हीं के साथ यूनुस खान और सोफिया खान भी यही गीत सुनना चाहते थे। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से ये गीत सुनना चाहा था मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू श्रेयस, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवीर, अक्षय सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। और इसी गीत को सुनना चाहते थे कोटली कालन से यजविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, राजविंदर सिंह, मनजीत सिंह और गुरजोत सिंह। और रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शुभ नायक और समस्त डागला परिवार के सदस्य।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें,
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और अभिजीत की युगल आवाजों में फिल्म जुदाई से। इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने, गीत लिखा है समीर ने। सुनने की फरमाइश है आप सभी श्रोताओं की। जिला मुरादाबाद, ग्राम धूलापुर, उत्तर प्रदेश से ये मैसेज हमें किया है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान इरफान और मोहम्मद इसरार, इन्हीं के साथ नरगिस खातून ने इसी गीत को सुनना चाहते हैं। छत्तीसगढ़, चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा ने इसी गीत को सुनने के लिए हमें ये मैसेज किया है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही महराज जहां ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें की है। सहारनपुर से पथिक, सोनाली, अनु, मोना, अलका, विक्की, आशा आशा ने और ये गीत सुनना चाहते हैं। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग, पिलैरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनल और आशीष विश्वकर्मा और इसी गीत को सुनने के लिए हमें मैसेज किया है। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवा

और आर के राजा ने। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। ये मैसेज इन्होंने किया है गंज डुंडवारा से, और इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है अनारकली बाजार जगराव से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और इनके सभी साथियों ने। और इसी गीत को सुनने के लिए हमें ये मैसेज किया है कस्बा चिलकाना जिला सहारनपुर से, भेजने वाले हैं मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, डॉक्टर अमीर मुन्ना नाजिम। और इस गीत को सुनने के लिए हमें मैसेज किया है नोहार जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, इनका बेटा हिमांशु सुथार ने। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डींगिया, नमन डींगिया और अपार डींगिया। लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जुदाई से।

आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और इस कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म जब मेरी मेट से। स्वर है मोहित चौहान का, संगीत प्रीतम का है और गीत लिखा है इरशाद कामिल ने। सुनने की फरमाइश है आप सभी की। जिला झारखंड बड़ा बॉम्बे सुपाई साई गांव से देवेंद्र ताती, राकेश ताती और प्रकाश ताती इसी गीत को सुनना चाहते हैं। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, सईद शारिक अली, महराज अंसारी और बाबू अंसारी। ग्राम जुजैला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां निषाद, आयसा साइना, महविश मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और मोहल्ला अफगानान शेरकोट से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत इसी गीत के लिए हमें फरमाइश की है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो ने इसी गीत को सुनना चाहते हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद शादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवान परवीन और अब्दुल्ला आजाद इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ग्राम सनौतिया जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल चंदेल, अरविंद अशोक, राजकुमार और प्रिंस चंदेल इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें की है। जम्मू कश्मीर जिला कपवारा से मोहम्मद असलम ने, और ये कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें किया है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया शोएब खान, सिंदौली बरेली से जीशान वारसी और इसी गीत को सुनने के लिए हमें मैसेज किया है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने इसी गीत को सुनना चाहते हैं। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें की है। वाडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। और श्रोताओं ये कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे पास आया है। हम अपने श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि जिन भी श्रोता का मैसेज शामिल हो जाता है वो हमें फिर से मैसेज ना करें। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नादेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ ने और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। हमारे ये श्रोता जिन्होंने हमें मैसेज किया है, नर्मदा पार्क मुगल वेदा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल ने। तो लीजिए श्रोताओं पेश है आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म जब वी मेट से।

और श्रोताओं लीजिए, अब पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है तेरा जादू चल गया, स्वर सोनू निगम का है, संगीत इस्माइल दरबार का और गीत लिखा है समीर ने। सुनने की फरमाइश है आप सभी की। संगाली जिले के जत शहर से अल्फाज हुजरे, सैफुल्ला सहाबत सबाहत और इन्हीं के साथ में है किरत और रेहान। इसी गीत को सुनना चाहते हैं पप्पू, श्रोता क्लब मेन रोड फार बीसगंज बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार विमल और नवरतन हाता बाड़ी हाट पूर्णिया बिहार से ममता रानी छवि अनोखी अर्पिता लाडो दीक्षा देव दिव्यांशु और डब्लू जी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी और उनके परिवार के सभी सदस्य। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन दीक्षा और कुश मूड़त। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला और आराध्य कुमारी। और श्रोताओं कार्यक्रम में हमारे पास ये अंतिम पत्र आया है जो हमें भेजा है रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय मुहाबिया, कविता मुहाबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू, रानू ईशु, बाबा सपना, शिवी सलोनी, अनय और अनाया। इन्हीं के साथ में है पेंटर बाबू का। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का अंतिम गीत सोनू निगम की आवाज में।

तेरा जादू चल गया इस फिल्म के गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। ज्योति गौड़ को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishishta Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishishta Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishishta Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshney and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor,